आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सनी, आज मंगलवार है। शक समय 1948 के जेठ महीने की 19 तारीख मुताबिक 9 जून 2026 ईस्वी सुबह के 6:33 हुए हैं। हमारी आज की नशियात का आगाज होता है।

0: सुनिए, आपको याद दिला दे, रात 9:30 पर प्रोग्राम नशर होगा हम कलम। मौजू है उर्दू अदब का हाल और इम्कान। शेरी के गुफ्तगु हैं रफीक राज, मोहम्मद यूसुफ निरंग, डॉक्टर राशिद मकबूल और डॉक्टर तनवीर ताहिर। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: लीजिए अब सुनिए संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ VSF इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महती अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः

0: च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडु च अस्यां दुर्घटनायां मृतजनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्तिसदस्यस्य कृते 2 लक्षरूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तनप्रबन्धनव्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्रिमुद्रायोजना, प्रधानमन्त्रिजनधनयोजना, प्रधानमन्त्रिजीवनज्योतिबीमायोजना, प्रधानमन्त्रिसुरक्षाबीमायोजना, अटलपेन्शनयोजना, प्रधानमन्त्रिस्वनिधियोजनादीनां नवीकृतसन्तृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उक्तवान यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विकराजदूतसम्मेलनं 26-अधिक-2000तमवर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26-अधिक-2000तमवर्षस्य फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीयमन्त्री जी किशन रेड्डीवर्यः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अङ्गारखननक्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिलाक्रिकेट्क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफनगरे 26-अधिक-2000तमवर्षस्य ICC महिलाविंशति-प्रतिविंशति विश्वचषकक्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यासक्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीजदलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में

0: भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters, their children will receive free education, and one member of each family will be provided permanent employment. Mr. Kumaraswamy said Prime Minister Narendra Modi has also announced financial assistance of 2 lakh rupees to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured through the Prime Minister's National Relief Fund. 8 people were killed in the fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited last evening. 6 people were injured, with the condition of 2 being critical. The Union Ministry of Steel said

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हर सुबह जब दरख्तों की शाखें हवा के नर्म झोंकों से सरगोशियां करती हैं और जिंदगी एक नए दिन का वर्क खोलती है, तो ऐसे ही खुशगवार लम्हों में हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं पयाम सुबह के साथ। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी परवेज मीर।
1: हम दोनों आपका दिल की गहराइयों से खैर मुकदम करते हैं और दुआगो हैं कि आज का दिन आपके लिए सेहत, सुकून और खुशियों का पैगाम लेकर आए।
0: परवेज बताइए कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुबह सुबह आप आए और जरूरी है कि आप डल झील की एक साइड से सैर करते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप बताएं कि मौसम कैसा है आज सुबह सुबह?
0: मौसम तो बड़ा सुहाना है, बड़ा शानदार है। उसके हवाले से मैं चंद लम्हों बाद बात करूंगा
1: जी,
0: लेकिन यहाँ पे ये कहूंगा कि जिंदगी की मसरूफ राहों में अक्सर हम बहुत सी अहम चीजों को परवेज नजरअंदाज कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उनमें सबसे कीमती नेमत है सेहत
1: जी।
0: चूंकि मंगलवार को हमारा थीम रहता है सेहत और तंदुरुस्ती, आज हमारा फोकस रहेगा तंदुरुस्ती और सेहत पर।
1: जी निजामी साहब, हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो जिंदगी को खुशगवार बनाती हैं, उन रवैयों की जो जहनी सुकून अता करती है और उन अकदार की जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल। आज हम सेहत को सिर्फ बीमारी और दवा के तनाजुर में नहीं देखेंगे बल्कि जिंदगी के उन छोटे छोटे रंगों की बात करेंगे जो इंसान को तंदुरुस्त, मुतमईन और खुश रखते हैं।
1: जी, बात होगी साफ सुथरे माहौल की, मुतवाजन जिंदगी की और उन मामूली सी बातों की जो बजाहिर निजामी साहब छोटी नजर आती हैं लेकिन जिंदगी में बड़ा फर्क पैदा करती हैं।
0: बिल्कुल सही है। और परवेज, आपने मौसम की बात सवेरे छेड़ी के मौसम कैसा लगा आपको
1: जी,
0: बुलवार्ड के किनारे किनारे जब मैं आ गया
1: जी,
0: मौसम आज बड़ा सुहाना है, बड़ा शानदार है। क्यों ना आज का पहला नगमा इसी मौसम के नाम करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है
1: जी,
0: हवा के नर्म झोंकों में भी शिफा रखी है।
1: वाह।
0: हवा के नर्म झोंकों में भी शिफा रखी है, खुदा ने अपने हर मौसम में दवा रखी।
1: वाह क्या बात है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रूषित सुलुन।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: तो जो प्रोग्राम वजन पाया मैं सुबह मीडियम वेव्स आ तारहट आशारी अठक मीटर यानी 107.4 किलोहर्ट्ज़ तो FM 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पर बुसुन मेजबान रशीद निजामी दी मैसेज छ परवेज मीर। परवेज के तर्ज के दुनी छ तिम आसान यम जन सेदी सोद दिल किन अजित सनी रुहस्तान वातन छ।
6: बिल्कुल निजामी सब तिम छ वनो रुहस्तान वत सथप आग दिवान तो सथप छ सु करार सु सुकून इंसानस कायम करन कि इंसान छु दपान कि अच बंद करित रोज वारियास टाइमस अति दुनि से
5: तो तवाई थिन वन दपान छी मुसीकी योजन छी या सच रोग
6: गजा
5: तो योसन सुबह इस काथिस ना इस करान जे मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम जो वारिया शानदार
6: बिल्कुल
5: तो आत्म से अक्सर उछान जे प्रत का इंसान जो कोशिश करान आमी सुबह के वक्त को लाभ फायदा बनिया रहा सुली सुबह तम पत कर थोड़ा बहुत वॉक तम पत कर थोड़ा बहुत चहलकदमी तो ये छु बड़ जरूरी अख वॉक करुन या पत कुन सर सपाट बापत कुन खास मकाम पर गुन।
6: बिल्कुल निजामी सर तो ये साथ सर सपाट खतर कुन आवरियर खतर बिल्कुल सोच एंटरटेनमेंट खतर सैर सपाट चन जायन पे वातान तो गर्ज सु कि इंसानस उस अंदर सो रचकंड छिरर कुन साथ बासान सो अख त्यूत छिरर उस ने बेस बैवित हेकान छु किहन उस वनान छ इंसान के यतुत वाद ब एक लंबी सांस ले पत सो वशा त्राओ तो अख सो सुकून सो पीस सो टेस्ट आ गच कोयम।
5: बिल्कुल सही तो बो तो खास कथ जन माहरीन जन डॉक्टर साहबान यमो जन अत फील्डस मेहनत करित मकाम हासिल कोरमुत।

0: पूरे मुआशरे से भी है, साफ गलियां, साफ पानी और साफ माहौल।
1: बिल्कुल सही परवेज, ये दरअसल इज्तिमाई सेहत की अलामत है। जब आज हम अपनी वादी का हाल देखते हैं ना, तो दिल उदास हो जाता है। साफ और शफाफ पानी के जो जखायर कुदरत ने हमें अता किए थे, हमने उनकी कदर न की। जो माहौल हमें मिला था, हमने उसको जहरीला बना दिया। ऐसे में हम कैसे बेहतर सेहत की उम्मीद रख सकते हैं?
0: दूसरी और खाने पीने की जो चीजें हैं ना निजामे साहब,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: भी कहाँ साफ या शुद्ध हैं।
1: सही
0: खाने पीने की चीजें जो है ये बिल्कुल अब जो है मानिए कि डुप्लीकेट हो गई है,
1: सही
0: चाहे साग सब्जियों में खादों का जहर और बाकी अशिया में मिलावट। नतीजा हमारी गिरती सेहत,
1: सही
0: अस्पतालों में रश, डॉक्टरों के क्लिनिक्स पर भारी भीड़।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने परवेज। चलिए हम इन बातों को भूलकर आज जहां फजा माहौल की बात करते हैं,
0: जरूर
1: क्योंकि इंसान कभी भी कहीं भी जाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है।
0: बिल्कुल
1: अपने आप में ये इरादा करें कि मुझसे जितना भी हो सके मैं माशरे के लिए बेहतर करूं, अपने लिए बेहतर करूं, भले वो माहौल की बात हो या किसी और शोबे की। जब हम इनफरादी तौर पर प्रवेश कोशिश करेंगे ना, तो हमें इज्तिमाई कामयाबी मिल सकती है।
0: निजामी साहब आपने सही फरमाया, जब हम सब कोशिश करें तो मुआशरा बेहतरी की ओर गामजन होगा, जहां सबकी सेहत बेहतर हो। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि सेहत वो दौलत है जिसकी कदर अगर इंसान उस वक्त करता है जब वो उसे महरूम होने लगता है।
1: जी जी
0: इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में चंद अच्छी आदतों को मुस्तकिल जगा दें अपनी जिंदगी में।
1: बिल्कुल सही। और ये जो दानिश्वर का कॉल आपने कहा अभी कि हमें सेहत तब याद आती है जब हमारी सेहत गिरने लगती है,
0: जी
1: बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल इसी बात के मुतरादिफ है कि जब कोई हमसे दूर चला जाता ना, तो
0: जी
1: हमें उसकी कद्र याद आती
0: कदर
1: है
0: आदि उसकी
1: ना।
0: जी सर जी
1: अगर कोई
0: वो
1: दोस्त,
0: कमी
1: हाँ,
0: महसूस होती है।
1: उसके बाद महसूस होती है। बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम तब्दील होना चाहते हैं ना, तो हम बेहतर सेहत की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं अगर हम तब्दील होना नहीं चाहेंगे? आज ज़माना परवेज बदल गया है।
0: बिल्कुल
1: हम रोज़ यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं कि हमारे तौर तरीकों से, लाइफस्टाइल से कितनी बीमारियां हमलावर हो जाती हैं। उनसे दूर रहने के लिए भी हमें कुछ आदात को अपनाना होगा ताकि हमारी सेहत बेहतर हो। क्योंकि आप देखिए, अगर हमारी सेहत बेहतर होगी, जैसा आपने कहा कि जब सेहत बेहतर होगी तभी हम बाकी काम भी अच्छे से
0: अच्छे ढंग
1: अंजाम दे सकते हैं।
0: जी
1: मैं अपने सुनने वालों को यहाँ पर ये याद दिला दूँ कि आज चूंकि हमारा थीम रहता है सेहत, और 10:30 बजे पायमसू प्रोग्राम में आज के जो हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान हैं, आप हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन बुखारी साहब। आप कंसल्टेंट एंड हेड हैं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रैनावाड़ी श्रीनगर में। किस डिपार्टमेंट के? डर्मोटोलॉजी डिपार्टमेंट के।
0: जी
1: और आज हम जिल्द की सेहत के
0: जिल्द
1: हवाले
0: की
1: से
0: सेहत के
1: उनके
0: हवाले से
1: साथ
0: बात
1: बात करेंगे। मैं अपने तमाम सुनने वालों को बता दूं कि आप हमारे साथ रहिएगा, जरूर सुनेगा वो प्रोग्राम भी। अब क्या ख्याल है परवेज आपका?
0: मुझे लगता है निजाम साहब कि हम एक नगमे के लिए जाएंगे।
1: चलिए एक नगमा सुनते हैं और उसके बाद और बात करेंगे।
0: बिल्कुल

0: प्रामिसु बाप से बात कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से, मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट रशीद निज़ामी, और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी परवेज मीर।
1: जी निज़ामी साहब, प्रोग्रामस मज़ सेहत कत कर तो यम तो सात इंसान सेहत कत कर या वनो कि बार बार इंसान सेहत की कत कर तेज मुख्तलिफ चीज मोमूली नापरहेजी कर मोमूली कह चीज तुथ खान सम सेहत जरर वातान तो यह कतस जाए अत कत कल कड़ान
0: बिल्कुल सही ना दपान वल पीथाना खेमो कह पर्व
1: बिल्कुल
0: तो यह बनान आदत त वल अख रसिना खेमो पत खा बे रसिना पत खा अगर इंसान सही मानू में परहेज कर तरक कर चीज वो अत मे खास तिम नफरन खातर हिदायत यम जन ब्लड प्रेशर पेशेंट आसान यम जन शुगर पेशेंट आसान या यमिस टी जी या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आसान तिमन पे ख्याल थान खेन चेनस मे ज्यादा तुम वो ईद मन अस बड़ ईद वनस तूकन फ्रिजन मं कुरबान माज वन
1: इस्तेमाल
0: कर ठीक तबरुक मगर डॉक्टर साहब तन दपान एतदाल सान खेमो
1: परेशानी
0: खास कर सन शुगर पेशेंट्स अत मे डॉक्टर साहब अक्सर वन दपान वन शुगर पेशेंट दपान चूंकि मैं डॉक्टर्स के साथ बहुत प्रोग्राम्स कर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तमें लिहाज तिज एक्सपीरियंस वन पान हम
1: डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल।

सुमन सुबह 10:30 पर इंटरेक्टिव लाइव शो आप सुनेंगे और इस प्रोग्राम में आपके मेज़बान हैं अब्दुल रशीद निज़ामी और सोहेला रोज़। तो इस प्रोग्राम के आज के जो मेहमान हैं वो डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन बुखारी हैं, कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी हॉस्पिटल रैनाबारी। और आज के प्रोग्राम का मौजू है सिकन हेल्थ। सूफियाना मौसीकी आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर और दिन के 2:30। फनकार हैं उस्ताद रमजान जुअर साथी, इनसे आप बिलतरतीब मकाम असावरी और मकाम नवाह सुनेंगे। सुनिंग बज में नस्वा की महफिल आरास्ता होगी दिन के 12:40 पर। NCERT का सुपन सेट प्रोग्राम दिन के 1:10 पर आप समाप्त करेंगे। सपहर 3:00 फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। पहाड़ी प्रोग्राम का वक्त रहेगा 4:00। 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम नशर होगा। शाम 5:00 गोजरी प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे।

0: सुमन घनी भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं हर रोज शाम 6:05 पर हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन नशर होता है हर रोज शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के हवाले से एक खसूसी प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे रात 8:30 पर। तो समय ये थी तफसील अब के बाद यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों की।
1: आज के बाकी प्रोग्रामों की तफसील आपने समाज की 8 बजने वाले हैं। चंद ही लम्हों में हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात नश करेंगे। बस चंद ही लम्हों का इंतजार और समाचार प्रभात सिर्फ आपके लिए है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2000

0: 40 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है दवाई।
7: काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
4: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते

0: हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज

0: तेज वर्षा की संभावना है। यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मार्वेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग।
3: अब आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
4: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
5: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो, पयामे सुबह,
4: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
5: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुबह।
6: यारो वन बाजी यारो वन।
4: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
5: मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुब।
7: सुनो सजना।
5: पयामे सुब।
8: पयामे सुब आप समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट रशीद निजामी, और मेरे साथ हैं परवेज मीर। परवेज, अब आज के दिन की तवारीखी अहमियत पर एक नजर डालते हैं।
3: जी निजामी साहब, सबसे पहले आज के दिन रूनुमा होने वाले खास वाकयात।
8: 9 जून 1815 ईस्वी यूरोप की सियासी नक्शबंदी में अहम संग मील समझे जाने वाले कांग्रेस ऑफ वियना के हतमी माहिदे पर दस्तखत हुए, जिसने नेपोलियनी जंगों के बाद यूरोप के सियासी निजाम को असर नौ तरतीब दिया।

0: 9 जून 1934 ईस्वी को दुनिया के मशहूर कार्टून किरदार डोनाल्ड डक ने पहली मर्तबा फिल्म द वाइज लिटिल हैन में अपनी अवामी जिंदगी का आगाज किया।
1: 9 जून 1946 ईस्वी थाईलैंड के बादशाह भूमिबोल अडल यादव की ताजपोशी हुई, जो बाद में दुनिया के तवील तरीन अरसे तक हुक्मरानी करने वाले सरबराहने ममलिकत में शुमार हुए।
0: 9 जून 1967 ईस्वी को अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया, जो आज भी आलमी सियासत का एक अहम मौजू है।
1: परवेज 9 जून 1983 बरतानिया की वजीर आजम मार्गरेट थेचर ने आम इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी मरतबा इकतदार संभाला। ये थे 9 जून को रोनमा होने वाले चंद अहम वाकियात।
0: जी, तो और भी जो वाकियात थे आज के दिन के हवाले से वो भी करेंगे, लेकिन पहले एक नगमा सुनते हैं।
1: जरूर।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: पारसुब आप समाप्त कर रहे हैं और 9 जून को पैदा होने वाली अहम शख्सियत का जिक्र हम करेंगे, लेकिन परवेज भी यहां पे अपने तमाम सुनने वालों को यह बता दूं कि आज 8:45 पर आप प्रोग्राम सुन सकते हैं हम सफर। ये प्रोग्राम हर मंगल और हर जुमे को नष्ट होता है सुबह 8:45 पर। आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है, क्या नाबालिग बच्चों के लिए वसी बनाना दुरुस्त है। मुकर्रर हैं हजरत मौलाना फयाज अहमद जरू साहब और ये पेशकश है सलीम एजाज कपरा की। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि आज 10:30 पर हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट होंगे डॉक्टर सईद शहाबुद्दीन बुखारी, कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रैनावाड़ी श्रीनगर। डॉक्टर साहब के साथ बात होगी स्किन हेल्थ यानी जिल्द के अमराज के हवाले से।
6: और अब 9 जून को पैदा होने वाली अहम शख्सियात का जिक्र। 9 जून 1672 ईस्वी को रूस के अजीम हुक्मरान पीटर द ग्रेट पैदा हुए।
5: 9 जून 1781 ईस्वी में रेलवे इंजन के बानियों में शुमार होने वाले मशहूर इंग्लिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीवनसन पैदा हुए। उन्हें फादर ऑफ रेलवेज भी कहा जाता है।
6: अमेरिका के मशहूर अदाकार और मौसीकार जॉनी डेप आज ही के रोज यानी 9 जून 1963 ईस्वी को पैदा हुए। जॉनी डेप ऐसे फनकार हैं जिनको द गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड हासिल हुआ है।
5: कैनेडियन एंड अमेरिकन एक्टर एंड एक्टिविस्ट माइकल जे फॉक्स पैदा हुए हैं आज ही के दिन 1961 को, जिन्होंने मिडनाइट मैडनेस, क्लास ऑफ 1984, द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस जैसी फिल्मों में लाजवाब काम किया।
6: 2 द गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 1 एकेडमी अवार्ड हासिल करने वाली अमरीकी अदाकारा नेटाले हर्शलॉग पोर्टमैन 9 जून को ही पैदा हुई।
5: जी हाँ, सन था 1981 और उनको स्टार वाज, ब्लैक स्वान और नो स्ट्रिंग्स जैसी फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
6: अंग्रेजी अदब के अजीम नावल निगार चार्ल्स डिकेंस आज ही के दिन 1870 ईस्वी को वफात पा गए। उनकी मशहूर तख्लीकात में द टेल ऑफ टू सिटीज और ओलिवर टेस्ट हैं।
5: जी जी जी जी, और भी कुछ शख्सियात हैं जो इस दिन वफात पा गई हैं। थाईलैंड के बादशाह आनंदा माहिडोल 9 जून 1946 ईस्वी को आज ही के दिन वफात पा गए।
6: अदब का नोबल इनाम हासिल करने वाले गोटमैलन शायर, डिप्लोमेट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट और जर्नलिस्ट मैगिल एंजील आस्तोरिस आज ही के रोज इंतकाल कर गए। सन था 1974।
5: इकोनॉमिक्स के पहले नोबेल याफ्तगा में शामिल नेदरलैंड के जैन टिन बर्गिन आज ही के दिन वफात पा गए 1994 ईस्वी में। तो ये था तवारीख में आज का दिन।

0: नगमा आपने सुना
1: और पयाम सुब आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। तो निजाम साहब, घड़ी का इशारा फिर से एक बार खबरों की तरफ जा रहा है,
0: जी जी
1: तो खबरों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे अपने साथियों को। हम भी खबरें सुनेंगे और अपने दोस्त जो है वो भी।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारत खाने ने आबनाए हुरमुस के जनूब में आग लगने के वाक़े के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सहमुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निज़ाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निज़ाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निज़ाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड

0: पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैन अलावा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वजराए ज़राअत आला अहदेदार और माहरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। जरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, जरी इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, जरी तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ज़रिए इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज़ भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाज़त होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के लिए अपनी ज़ेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदामात का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
3: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इक्तसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
4: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा। क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
3: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात,

0: टीकाकारी, जांच की सहूलियत और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाक़े के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाक़े की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अल्कवामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अरशद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेट पर

0: 56 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम में 268.81 मीटर और FM 101.5 MHz पर। समीन सुबह के 9 बजने वाले हैं।
1: आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां
2: पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब। आज मंगलवार है, 23 जिलहजा 1447 हिजरी, मुताबिक 9 जून 2026 ईस्वी। मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां लेकर हम हाजिर। मैं हूं परवेज मीर और मेरे साथ हैं अब्दुल रशीद निजामी।
3: जम्मू में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए सहूलियात के तहत वजीर आला क्यादत ने सरकार ने 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी।
0: 8 जून को मुकर्रर अमरनाथ यात्रा के इंतजाम का जायजा, इजलास अब 12 जून को दोबारा तय। मरकजी वजीर दाखिला लेंगे जुमला इंतजाम का जायजा। सिक्योरिटी इंतजाम के अलावा यात्रियों के लिए दस्तियाब सहूलियात का भी लिया जाएगा तफसीली जायजा। 670 नीम फौजी कंपनियों की आमद का सिलसिला शुरू। जम्मू और कश्मीर में हसास मकामात पर तैनाती।
3: मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की शान रफ्ता की बहाली का मंसूबा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दौरे मुबारक मंडी, तारीखी विरसे के तहफ्फुज पर जोर।
0: अखबारात लिखते हैं मनुष्यात नेटवर्क की बुनियादों पर पुलिस की कार्रवाई जरब, माफ कीजिए पुलिस की कारी जरब। श्रीनगर में 4 दिनों में 11.5 करोड़ मालियत के असासे क्रुक। ताजा कार्रवाइयों में मुलजमान की 4 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त।
3: मुल्क ने आलमी इक्तिसादी मंजरनामे में मजबूत मकाम हासिल किया, राजनाथ सिंह। चैलेंजेस के दौरान मोदी की क्यादत ने मुल्क को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया।
0: जम्मू श्रीनगर शहरा पर हादसा, ड्राइवर जाम भाग। राजौरी के तंदवाल इलाके में सड़क हादसा, 15 अफराद जख्मी। जम्मू राजौरी पूंछ कौमिशारा पर कनेक्टर बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी।
3: रामसू में मालगाड़ी खाई में गिरने से ड्राइवर जाम बहक। मुतवफी की शिनाख्त मोहम्मद जफर वलद मोहम्मद कासिम साकिन पांपोर के तौर पर की गई है।
0: अखबारात लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा, महरमुल हराम के इंतजाम का मौके पर जायजा, महकमों को हिदायत।
3: दिल्ली में गर्मी की लहर से निजात पाने के लिए बांस का कूलिंग जोन, गर्मी और थकन के दरमियान आराम की एक महफूज जगह बनकर उभरा है माहिरीन।
0: दुनिया का सबसे तवील हाई आल्टीट्यूड बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल ब्रेक थ्रू के करीब 13.15 किलोमीटर तवील टनल कश्मीर और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी फराहम करेगी। वजीर सड़क व ट्रांसपोर्ट

0: नितिन गडकरी 9 जून को ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करेंगे।
1: एक और उर्दू अखबार की सुर्खी है, 3000 से जायद स्कूल जहां तलबा की तादाद ना होने के बराबर है आदाद शुमार। जम्मू कश्मीर में इन कम इदराज स्कूलों में मजमूई तौर पर 2518 तैनात हैं।
0: इंतजाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चीफ सेक्रेटरी का वाजिया ऐलान।
1: अनंतनाग में मुनशियात का आदि मुजरिम औरंगजेब गिरफ्तार, हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल जम्मू में रखा गया।
0: मकामी अखबारात से लेगी आज की सुर्खियां, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं और अखबारों से सुर्खियां आप सुनेंगे एक वक्फे के बाद।
2: जमीन खात सग
3: नह प्रोन आब मोटर अम लगानी सगवनस
2: दफा तथ तगन तम सिर वनमे मसान बेन कंपनी हूं आब मोटर जमींदार पत् डोख सिर्फ होंडा वह पख ते जे के स्टेशन मौलाना आजाद रोड श्रीनगर तथा वर्स एक्सचेंज सकीम चलान
3: सा गयो ठीक मगर ये प्रोनस आब मोटर क्या सा कर
2: नो तू तम दिन अम बदल अस बदल नो आब मोटर बाकी पोस अतस क्या।
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान एक नई पहचान।
5: शिबिर सुबह ऐसी क्या सा जाल लगा
2: कारा गोम गम आयालो का छुम गम
5: वत लगस मे सज गो कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर ताती दाना वे बु पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो 40,000 कैश बैक ऑफर सो त्रो डाउन पेमेंट 60 किलोमीटर अकिस चार्जस पे दिवान।
6: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
7: माहिरीन की आरा तजुर्बा और रहनुमाई,
8: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
6: सेहत के मशवरे,
9: ऑर्थोपेडिक कुंत तकलीफस मंज छै इस ब्रॉडली करनिम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
6: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुक्कात
7: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
6: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह
7: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह
6: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह।
0: वक्फे के बाद सुर्खियों में आपका दोबारा खैर मुकदम करते हैं।
1: एक अंग्रेजी रोजनामे की खबर है, गडकरी टू अटेंड जोजिला ब्रेक थ्रू टुडे, 13.15 किलोमीटर ऑल वेदर टनल टू कनेक्ट जे एंड के लद्दाख ओपनिंग बाय फेब 2028।
0: जी एक और अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, बाबा नगरी उर्स कंक्लूड्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिवोटीज अटेंड 130th उर्स ऑफ हजरत मियां निजामुद्दीन क्यानी रहमतुल्लाह अलैह वांगत।
1: इंडिया विटनेस्ड मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लास्ट 12 इयर्स प्राइम मिनिस्टर।
0: ग्रैंड मुफ्ती मीट्स एलजी डिस्कसेस सोशल डेवलपमेंट इश्यूज।
1: एक और अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, ड्रग पेडलर्स ₹4 करोड़ प्रॉपर्टीज अटैच्ड अंडर NDPS एक्ट इन श्रीनगर।
0: एक उर्दू रोजनामे की खबर है, जम्मू कश्मीर में तालीमी निजाम को दो बड़े चैलेंजों का सामना, 3192 कम इंदराज स्कूल, हजारों में बुनियादी सहूलियात की कमी, 1732 स्कूल बंद या जम, सेकेंडरी सतह पर ड्रॉप आउट की शरह कौमी औसत से ज्यादा।
1: एक उर्दू रोजनामे की खबर है, बुलेवार्ड 4 गलियारों बनाने का मंसूबा कागजों तक महदूद, ट्रैफिक अफरातफरी में इजाफा, सयाहों की आमद, सड़क के किनारे

0: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है पायम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं परवेज मीर। परवेज, वक्त है कि हम एक गजल सुने
1: जी।
0: लेकिन ये जो गजल हमने क्यों करके रखी है अपने तमाम सुनने वालों के लिए, इसके बारे में बता दूं कि ये गजल अमीर खनफी की है और आवाज है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन से, उन्हीं की तर्ज है। और इस गजल के हवाले से मैं एक इन्फॉर्मेशन अपने सुनने वालों को दूं, हालांकि बहुत सारे हमारे सुनने वाले करम फरमा ऐसे हैं जिनको ये पता होगा कि इस गजल का कश्मीरी तर्जमा किया है फरूख नासकी साहब ने, और उस गजल को उसके बाद गाया मुनीर अहमद मीर साहब और काजी रफी साहब ने। कभी पेश करेंगे तब अमीर खनफी की गजल का और तज़किरा करेंगे जब वो गजल हम पेश करेंगे।
1: यकीन माने निजाम साहब की ये मुझे अब वो किरास्ती सी जाग गई है कि वो तर्जुमा हम भी सुने और दोस्तों को भी कभी सुनाएंगे।
0: जरूर इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे। इस वक्त हम सुनते हैं अमीर खनफी की गजल अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

0: आकाशवाणी श्रीनगर प्रस्तुत भोजन लाइव शो प्याम सुब निजाम सब यम गजल ब्रो अम गजल हिंद तम तर्जम कन यु इश्तियाक दिलस मज निजाम इनायत करू कैंसा तम
1: तथ इत मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा तथ यूज गोड गोडन वन बह ये गजलस उर्दू गजलस तर्जम करशिर मा मुश्किल तेज सो कैफियत बरकरार थविन उर्दू शायरस मे सो बरकरार थविन बड़ मुश्किल तम कथ सो मतलब आकार अनहार ग शेर आसुन तो नाजकी सबन सठा फारूक नाजकी सबन सठा मेहनत करमस तो तमु गोडन शार हवा शाये कथ वतन मोन शाठ मोन तो पोशवन मोन तो इंशाल्लाह करो कुन दो पन्न बोजवन हिंद खदमत मज पेश
0: तो गोड से गारि इशार यप 9 बजे तो 20 मिनट हेतन सब दिन इस बोजो खबर गोड कशर पर तम पत उर्दू पर
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए तो देर किस बात की राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान एक नई पहचान
3: आदाब ये आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:20 सपदे खबरन बुलेटिन हूँ बहुत मंजूर अहमद श्रीनगर लह कौमी वत पे जेर तमीर जोजीला टनल हज ब्रेक थ्रू तकरीब आज मुनद सपदान अत तकरीब मे रोड ट्रांसपोर्ट तो हाईवेज हंद मरकजी वजीर नितिन गडकरी शामिल सपदान ये टनल 14 किलोमीटर जेठ तो अत पे 6,800 करोड़ रोपये खर्चा पेट्रोलियम तो कुदरती गैस च वजारत वोनमुत मगरबी एशिया की जारी सूरत हाल बावजूद मुल्कस मं खाम तील एल पी जी तो कुदरती गैस फराहमी मुकम्मल पट डंज नवी दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग दौरान वोन वजारत एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण खनूजा सरकार से तील तो गैस कुन रुकावट वर फराहमी तो तवानई हिफाजत यकीनी बनाने बापत कदम तुलम अत मौक पे वोन कैमिकल्स को फर्टिलाइजर वजारत एडिशनल सेक्रेटरी अपारना शर्मा मीडिया सत कर दुरुस् मुल्कस मे खादन स्टाक कुल पटमान बख्श जम्मू कश्मीर नशच लानस निश पाक कर बापत जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान तहत मनशियात मुखालिफ सरगर्मी वसान जारी अभियान शुरू सपदन किस मौक पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नशा खिलाफ अकिस टाकार पैगाम मोनमुत
4: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार आधार नंबर उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा
3: मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लामन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सत मुलाकात कर्मुत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जम्मू कश्मीर हामिद बुखारी तो जम्मू कश्मीर सोलेस एम्प्लॉज वर्किंग वुमेन एसोसिएशन चेयरपर्सन डॉक्टर आबिदा वारन तर लेफ्टिनेंट गवर्नर सत मुलाकात भारतीय किसान यूनियन एक वफदन कौर तंजीम हंदिस कौमी तर्जमान चौधरी राकेश टकेत सिंह सरबराही में नायब वजीर अला सुरेंद्र चौधरी सत मुलाकात वफदन कौर जम्मू कश्मीर कन कुमिलन दरपेश मुख्तलिफ मसलन पे नायब वजीर अला सत तफसीली तबादुल ख्याल वफदन कर नायब वजीर अला यादाश्त पेश यथ मज जम्मू कश्मीर किस जरी बागबानी तो दुम शोबन हंद हिफाजत तो वतबो दिन बापत अहम मुतालब शामिल सुरेंद्र चौधरी दुत यकीन तमाम जायज मुतालब इन तरजीह बुनियादन पे मुतलक महकमन सुलन जिसमस मज आब तो नून वेसई हे बुजर्गन बापत तिबी मसल पैद कर अमि सूरत हाल निश बचन बापत वोन मारूफ मालिज तो बुजर्गन हंद मर्जन हंद माहिर डॉक्टर डॉक्टर जुबैर सलीमन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत करान
5: गर्मी मज बुजर्गन हज त्रेश कम चेन छन सिर्फ डिहाइड्रेशन तान महदूद आ

0: नया वेंचर, नई एक्टिविटी होती है विच इज प्रोबेबली हाईली प्रॉफिटेबल एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डेंजरस इन स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप, क्योंकि ये एक अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो एक्टिविटी होती है दिस इज द स्टार्टअप इन द प्रेजेंट टाइम्स।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात, कितना इंपॉर्टेंस है? जैसे हम ग्लोबल लेवल पे भी देखते हैं, हमारी कंट्री लेवल पे, और फिर जम्मू एंड कश्मीर पे फिर हम बाद में आ जाएंगे। ग्लोबल लेवल और कंट्री लेवल पे किस तरह का इकोसिस्टम आप देखते हैं, क्या किया जाता है और क्या किया जाना चाहिए?
0: तारिक साहब, अगर हम ग्लोबल लेवल की बात कर लें, एक फोर्ब्स का रिपोर्ट 2025-26 का अगर मैं आपसे शेयर कर लूं, तो इसमें ग्लोबल लेवल पे जो टॉप कंट्रीज, जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में जो डेवलप नेशंस हैं हमारे सामने, वहां पे अगर हम बात कर लें तो क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सक्सेस रेट है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ, मेनली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम कल्चर जो वहां पे डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन पे भी जो कंटिन्यूअसली रैंक कर रहा है, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे अभी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1.72 मिलियन स्टार्टअप कंपनीज हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलेंगे तो 64% जो वर्ल्ड का पोर्शन है स्टार्टअप्स का, दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके बाद अगर हम देखें, सिंगापुर इज देयर, और थर्ड पे हम एज इंडिया वी रैंक एट द सीरियल थर्ड, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारा पूरे वर्ल्ड में। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 2.23 लाख गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है हमारे पास। तो उसके बाद जो कंट्रीज है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, हमारे पास एस्टोनिया है, जो कि एक बहुत स्मॉल कंट्री है बट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स बहुत आगे है। तो लिस्ट बहुत बड़ा है, बट तारिक साहब मैं ये यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा, ग्लोबल लेवल की अगर हम बात कर लें तो मेजरली जो डेवलप नेशंस हैं हमारे सामने, दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन सच कंट्रीज। अगर हम 2016 की बात कर लें, जब से स्टार्टअप पॉलिसी जो हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट हुई, तो अगर हम सिंपल कंपैरिजन करें तो वहां तक हमारे पास, 2016 तक हमारे पास जो फिगर थी, मेयरली वी हैड 450 to 1,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज, बट ये नंबर जो है ट्रिमेंडसली ग्रो हो चुका है। आजकल की फिगर जो अगर मैं 2024 के आपसे शेयर करूं, दिस फिगर हैज क्रॉस 2.23 लाख ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स। तो एवरेज ईयर टू ईयर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 51% ग्रोथ हो रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। दिस इज द सिनेरियो एट द ग्लोबल लेवल इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तारिक साहब,
1: डॉक्टर आबिद साहब, आपने अब इकोसिस्टम की बात की, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ग्लोबल लेवल की बात, कंट्री लेवल की बात भी हो गई, तो हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में किस तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त एस्टैब्लिश्ड है या क्या काम हो रहा है?
0: तारिक साहब, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लें तो ये, इसमें मुझे लग रहा है कोई नई बात नहीं है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं अपने यूटी की, तो दिस इज अ वेरी रिसोर्सफुल यूनियन टेरिटरी। तो पूरे जो हमारे पास है रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास काफी पोटेंशियल है कि जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टार्टअप्स में। बेशक कुछ पीछे अगर हम 5-6 साल से बात कर लें, जब से स्टार्टअप कल्चर में बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, बिकॉज अभी हमारे पास जो लेटेस्ट स्कीम स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो 2024 से 2027 में है, जिसका नोडल ऑफिस JKEDI है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कल्चर इस टाइम ये इंक्रीज हो चुका है इसका स्टार्टअप का, कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कोई 1300 स्टार्टअप हमारे पास रजिस्टर्ड हैं JK स्टार्टअप पोर्टल पे, जो ऑफिशियल फिगर है। यस, इफ वी टॉक अबाउट दिस यूटी तारिक साहब, तो यहाँ पे हमारे पास काफी पोटेंशियल है, क्योंकि अगर मैं आपसे एक फिगर शेयर करूं, 69% जो हमारी पॉपुलेशन है JNK में, दैट इज बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो वो, दिस इज अ वेरी यंग यू नो यूटी, जहां पे स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, बिकॉज एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी है, 6.7%। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.4 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है, गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी हमारे पास 4.5 लाख है। तो ये एक एनालाइज करने वाली चीज है यूथ के लिए कि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, एट द सेम टाइम देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेशक इंक्रीज हो रही है हमारी ट्रेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके, बट लॉट मोर नीड्स टू बी डन। तारिक साहब,
1: डॉक्टर आबिद साहब, जैसे आपने बात की कि जम्मू कश्मीर में एक पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, और भी बहुत इनपुट्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या जो भी इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें किस तरह का काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए? क्या क्या स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं इसको देखने के लिए? जी
0: इसमें दो चीजों पे मैं

0: सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा तारिक साहब। एक तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज, अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले, कहाँ कहाँ पे स्टार्टअप हो सकते हैं, कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी वेरी फेमस स्कीम गोइंग ऑन एट द नेशनल लेवल ऑल्सो, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी देखेंगे तो J&K इज द रिचेस्ट प्लेस, जहां पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लें तो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल, एजुकेशनल कंपनीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्कोप है, अभी रिसेंटली हमने देखा प्राइवेट सेक्टर इज ओपनिंग अप सो फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे पास ओपन हो रही है। हैंडीक्राफ्ट जो हमारा एक लग्जूरियस सेगमेंट रहा है, आइडेंटिटी रही है हमारे कल्चर की पहले से, काफी पोटेंशियल है इस एरिया में। अगेन फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, वॉलनट इंडस्ट्री, सैफरॉन, लोकलाइज कॉमर्स, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बट येस, जो आपका सेकंड पॉइंट था, स्कीम्स क्या है अब इनके लिए, तो जो हमारी, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी है 2024-27, विच इज बींग लुक्ड आफ्टर एज अ नोडल ऑफिस विद JKEDI, जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इस पॉलिसी में हमारे पास मेजरली अगर हम देखेंगे तो चार ऐसी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं टू स्टार्ट दिस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, जिसमें यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख जो है इस स्कीम में एप्लीकेंट को दिया जाता है विद ए सिंपल और लो इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। सेकेंड इज सीड कैपिटल फंड स्कीम, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज गिवन। देन J&K बैंक स्टार्टअप फाइनेंस स्कीम, 2 to 10 लाख के रेंज में दिया जाता है। देन फोर्थ वी हैव J&K वेंचर कैपिटल फंड। अगर हम इन चार के हट के बात कर ले तो इस पॉलिसी के बाद में रिसेंटली अभी जो काफी सक्सेस रेट में चल रही है वो है हमारी मिशन युवा की स्कीम, जो कि काफी जोरों शोर से इस टाइम यूटी में काम कर रही है टू बूस्ट द स्टार्टअप कल्चर ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस तारिक साहब।
1: डॉक्टर साहब, आपने मिशन युवा की बात की और भी कई स्कीमों की बात की। J&K एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का जो नोडल या वो वाइटल रोल है, या नोडल एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से J&K EDI जो है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, किस तरह का राबिता है ओवरऑल जो बिजनेस स्कूल्स है, यहाँ बिजनेस जो पढ़ाया जाता है, स्टार्टअप के हवाले से बहुत सारे काम हो रहे हैं, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो J&K का है वो इसमें अपना रोल निभा रहा है?
0: पर्सनली इफ आई से, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनली कनेक्टेड हूँ, मिशन युवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके प्रोग्राम्स में जाके जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आई गो। देयरफॉर जो एविडेंस के बेस पे आपसे मैं फैक्ट शेयर करूँ, ये जो स्कीम है मिशन युवा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल या जिसको हम ब्रेक थ्रू स्कीम बोलेंगे। बिकॉज नॉर्मली क्या होता था तारिक साहब, कि कोई भी स्कीम का गलत फायदा उठा के यूथ उसका सब्सिडी लेके गलत इस्तेमाल करते थे और खाली उस सब्सिडी का फायदा उठाते थे। लेकिन इस मिशन युवा के अंडर ये इंश्योर किया जा रहा है कि इस यूथ को जो इसका बेनिफिशरी बन जाए वो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स पहले इक्विप कर ले। दैट्स वाई इनका जो कनेक्शन है मिशन युवा का, दैट इज विद मेंटर्स। वो मेंटर्स जो हैं हायर एजुकेशन से हैं, ITI से हैं, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो साथ साथ में काफी अकाउंटेबिलिटी है कि खाली फंडिंग का मिसयूज ना किया जाए। यू नो, टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ JKEDI, ऑफ कोर्स JKEDI इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट इट क्रिएट्स इन दिस पार्ट ऑफ यू नो कंट्री। क्योंकि इनकी JKEDI की अगर हम बात कर ले तारिक साहब, तो ये तो पहले मिशन युवा के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सेकेंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हर जगह इस JKEDI की प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स। इनके जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट एवरी हायर एजुकेशन या बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मुनक्कद है। सेकेंड, अगर हम बात कर लें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, इस JKEDI का हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक ऑफिस है जो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे यूथ के साथ या कंसर्न जो इंटरेस्ट रखता है एंटरप्रेन्योरशिप में उनके साथ कनेक्ट होके दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग ए ट्रिमेंडस जॉब इन दिस पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। और जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी में जो JKEDI का टारगेट है तारिक साहब, मैं आपसे वो शेयर करूं कि कोई 2000 न्यू स्टार्टअप ये ख्वाब देख रहे हैं टू बी एस्टेब्लिश बाय द एंड ऑफ 2027। सो इफ आई कंक्लूड JKEDI कंट्रीब्यूशन, इट्स प्लेइंग अ यू नो वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस यूटी।
1: डॉक्टर परेश साहब, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल हैं ओवरऑल, जो इनोवेटिव काम करना चाहिए, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहेंगे, जो भी यूथ होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे? मेरा सवाल डायरेक्टली यह है कि

0: क्या कोई खास एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए?
1: देखिए तारिक साहब, अगर हम इस स्टार्टअप की बात कर ले तो बहुत ज्यादा एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यस अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है तो शायद वो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। जब तक माइंड्स को शिफ्ट करने पे हम काम नहीं करें, तब तक यहाँ पे चेंज लाना या कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप के परस्पेक्टिव से चेंज लाना मुश्किल है। तो जो एलिजिबिलिटी मैं बताऊं, एज सच कोई मुश्किल जॉब नहीं है, बिकॉज फंडिंग है, सब कुछ है, बट यहाँ पे तारिक साहब इस यूथ को मोबिलाइज करने के लिए और मेन स्ट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए देयर इज अ नीड टू शिफ्ट द माइंडसेट। दिस इज व्हाट दीज पॉलिसीज आर टारगेटेड एट। जो कुछ भी गवर्नमेंट इतना कुछ इन्वेस्ट कर रही है, मेन काम इसलिए यही किया जा रहा है कि यूथ का माइंड सेट जो है वो शिफ्ट किया जाए। बिकॉज मैंने आपसे कुछ फैक्ट्स फिगर्स शेयर किए, एक और इंटरेस्टिंग चीज तारिक साहब, कोई अप्रोक्सीमेटली 68,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो एनरोल होते हैं हमारे हायर एजुकेशन में अलोन।

0: कि यूथ का माइंड सेट जो है वो शिफ्ट किया जाए। बिकॉज मैंने आपसे कुछ फैक्ट्स फिगर्स शेयर किए, एक और इंटरेस्टिंग चीज तारिक साहब, कोई अप्रोक्सीमेटली 68,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो एनरोल होते हैं हमारे हायर एजुकेशन में अलोन। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 68,000 इज अ बिग नंबर। अगर हम इतनी एनरोलमेंट में देखें कि एम्प्लॉय कितने हो रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी आई थिंक डिस्करेजिंग फिगर अगर हम निकालेंगे। तो ये एक एनालाइज करने वाली बात है यूज करने के लिए कि अगर इतना मैसिव परसेंटेज पास आउट हो रहा है तो व्हाट इज द फ्यूचर। फ्यूचर लाइज इन यू नो क्रिएटिंग जॉब्स रादर देन सीक जॉब्स इन दिस पार्ट ऑफ यूटी तारिक साहब। तो आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत कुछ किया जा सकता है, बिकॉज वो हमारा एक सक्सेसफुल सेक्टर पहले से ही रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने वो खत्म ही कर दिया है, जो उसके आर्टिजन थे, जो भी इसमें कारीगर थे। इसको हम अगर इस सिंगल सेक्टर को रिवाइव कर लेंगे तो हजारों और शायद लाखों में भी नंबर जा सकता है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर अलोन में हो सकती है। तो आई थिंक अगेन टूरिज्म जहां हम बात कर रहे हैं, आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो काफी स्कोप है इन चीजों को भी लेके जेएनके में, बिकॉज इंडस्ट्रीज भी हमारे पास इतनी सारी अभी प्रोमिनेंट नहीं है। हाउ टू ब्रिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज एंड हाउ टू एनहेंस जो हमारे पास ऑलरेडी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सब चीजों को अगर हम ब्रॉडली इन पे बात कर लें तो आई कैन अगेन सी अ वेरी पॉजिटिव यू नो स्कोप ऑफ दिस स्टार्टअप कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टार्टअप मीन, जैसे आपने कहा, नया वेंचर है। इट मीन्स दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो एक तरह का, जैसे आप इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम, इसके लिए क्या अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर में, या जम्मू एंड कश्मीर के पास बाहर से कंट्री लेवल पे जितना भी एक्सपर्टीज है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंटरेक्शन होना चाहिए, जिस तरह का भी एक इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ, या ऐसा कुछ अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर में?
0: तारिक साहब, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्कोप बहुत ज्यादा है, बेशक काम हो रहा है, बट एज आई सेड लॉट मोर नीड्स टू बी डन। बिकॉज अभी अगर हम देख लेंगे तो काफी एक अच्छी परसेंटेज है जो कंट्री को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के बाहर कहीं सेटल हो रहे हैं, जिसको हम लिटरल टर्म्स में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो हमारे पास जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको हमें कहीं ना कहीं तारिक साहब यू नो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड कि उनको हम मोटिवेट करें, यहाँ पे रिटेन करें और अपने यूटी में हम काम करें, बिकॉज पोटेंशियल काफी है, अपॉर्चुनिटीज काफी है। अगेन एज यू सेड एक्सपोर्ट, इस चीज में जरूर हमें यू नो दोबारा से कुछ रिवाइव करने की, मेहनत करने की जरूरत है कि हम ये जो एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन है, बिकॉज एज आई सेड माइंड शिफ्ट होना है तभी काम हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली हमें इस पे काम करना है, माइंड्स पे काम करना है, और हम एज अ फैमिली अपने यूथ को हमने सपोर्ट करना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, रादर देन उनको छोटी नजर से देखा जाए कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ के कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। लकीली देयर आर गुड साइंस जहां पे एक पीजी करके, पीएचडी करके, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो आगे आ रहे हैं और अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है रादर देन उनको डिस्करेज करें, वी नीड टू एनकरेज सच पॉपुलेशन सो दैट एक कल्चरल शिफ्ट जब बन जाएगा, दैट शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दिस इकोसिस्टम इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री।
1: डॉक्टर आबिद साहब, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, या जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कितना काम करना है, और किस तरह का अवेयरनेस, जैसे आपने कहा माइंडसेट शिफ्ट करना है, कल्चरल शिफ्ट होना है, तो ये कैसे होगा पॉसिबल जब तक हम, एक तरह का मोमेंटम होना चाहिए एक कैंपेन में, अवेयरनेस कैंपेन में, सेंसिटाइजेशन कैंपेन में, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
0: तारिक साहब, बिल्कुल हाईली रेलेवेंट पॉइंट आपने बोला, एंड मुझे लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे यही एक कंसर्न है कि कैसे इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनहेंस किया जाए। पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इवन यू नो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, तो हमारा जो मेन काम अभी होना है दैट इज कि हमें एक एक्चुअल जो इस फील्ड में इन्वॉल्व है, एक्सपर्ट है, मेंटर है, उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाके इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मेजरली जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, तो नॉर्मली एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम ऐसा रिसर्च कर लें, ऐसा ब्रेनस्टॉर्म कर लें वी हैव लॉट ऑफ यू नो कॉन्सेप्ट्स लाइक लैंड टू लैब. जैसे लैंड में एक फॉर्मर रहता है, तो हम कैसे

0: को मेन स्ट्रीम में लाके लैब वर्क करा लें, यूनिवर्सिटीज में लाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाएं, सो दैट उनके जो ग्राउंड लेवल के इनपुट्स हैं वो हमें पॉलिसी मेकिंग और जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें काम आ जाए, रादर देन हम कुछ भी पास आउट कर लें। इट इज बेटर हम एक्सपर्ट सेशन करा लें, हम इस यूथ को आइडेंटिफाई कर लें। और आई थिंक जो मेन चीज पे काम करना है, जब तक मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया, वो हमें करना है ट्रेनिंग अवेयरनेस पे। वंस वी क्रिएट दिस अवेयरनेस एंड वंस वी ट्रेन दिस यूथ, जो भी इसमें पोटेंशियल परसेंटेज है, जब तक हम इनको, चाहे उनका सिलेबस हो, पढ़ाने का तरीका हो, चाहे उस्ताद का काम हो, जो भी, चाहे इवन पॉलिसी मिनिस्टर्स का काम हो, जब तक हम एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क पॉलिसी को लेके, सिविल सोसाइटी को लेके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके, जब तक हम इन सब को एक ही अम्ब्रेला में ब्रेनस्टॉर्म करके काम नहीं करेंगे, तो शायद ये स्टोरी जो है अधूरी है और सक्सेस की तो बात की दूर दूर की बात है।
1: डॉक्टर आबिद साहब, इसमें एक रेफरेंस आपने दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, क्या आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या क्यूरिकुलम में क्या आपको लगता है होना चाहिए? जिस तरह से आजकल जो नेक्स्ट, आज जो लेटेस्ट बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसी तरह क्या आप समझते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए, इसको स्ट्रेंथन के लिए, या स्टार्टअप का कल्चर या स्टार्टअप का कंसेप्ट कंसेप्चुअलाइजेशन लेवल पे क्या हमें प्राइमरी लेवल से एजुकेशन सिस्टम में इसको लाना चाहिए थ्रू करिकुलम?
0: बिल्कुल आई एग्री जो आप कह रहे हैं तारिक साहब कि बिल्कुल हमें लाना चाहिए। आप डिपेंड करता है कि मे बी बहुत छोटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम शायद नहीं ला सकते हैं, जब तक कि एक स्टूडेंट को इतनी मेच्योरिटी ना हो, इतना डिसीजन मेकिंग का असेसमेंट ना हो कि मुझे आगे क्या करना है। बट ऑफकोर्स 10th 12th तक भी बच्चे को थोड़ा सा ओरिएंटेशन बन जाता है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अपनी लिटिल नॉलेज और एक्सपीरियंस के व्यू पॉइंट से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर हमने इस चीज को टारगेट किया 10th और 12th से लेके ही ऑनवर्ड्स, तभी शायद एक मोमेंटम में जो है हम शिफ्ट देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी कर लेंगे, मैं आपको स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ तारिक साहब, दो कंट्रीज का, एस्टोनिया बहुत ही स्मॉल कंट्री है एंड सिंगापुर। एस्टोनिया में इस टाइम 1400 स्टार्टअप्स हैं एंड ए हायर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। अगर इसकी सक्सेस स्टोरी हम देखेंगे, रिसर्च कह रही है और वहां का डेटा कह रहा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिजिटल कल्चर, ग्लोबल माइंडसेट एंड सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन, जो इनके इंस्टीट्यूशन है। सिंगापुर लाइकवाइज, जो भी इनका सक्सेस रेट है स्टार्टअप्स को लेके तारिक साहब, दैट इज इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट प्लस इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। इसका मतलब है अगर हम कंक्लूड करेंगे, इतनी छोटी कंट्रीज, इतना, आई कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टोनिया, जैसे मैंने बोला एस्टोनिया में अगर 1400 यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन में इसका मेरे हिसाब से 1/5 या 1/6 भी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि देर इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि डिजिटल कल्चर, ग्लोबल माइंडसेट और जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव अ बिग रोल टू प्ले, बिकॉज यहाँ से ही ये यूथ जो है पास आउट होता है, एनरोल होता है, और यहाँ पे जब तक हम अपने करिकुलम को, अपने मेथोडोलॉजी को आउटकम बेस्ड नहीं बनाएंगे, तब तक देयर इज अ टर्म तारिक साहब, वी से गार्बेज इन गार्बेज आउट, तब तक तो स्टोरी वही रहेगी, देर विल बी नो इम्पैक्ट। सो दिस मैकेनिज्म हैज टू बी चैनलाइज्ड, हैज टू बी लिंक्ड, हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड थ्रू दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
1: डॉक्टर साहब, स्टार्टअप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप किस तरह से आप देखते हैं इसका रिलेशनशिप? व्हाट वी आर मेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप?
0: बिल्कुल तारिक साहब, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये, एक सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं। लाइकवाइज हम बात करते हैं चेन रिएक्शन की, ये जो एक चेन बनती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट की भी हम बात करते हैं। तो अगर हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टार्टअप कल्चर की बात कर लें, एक इंडिकेशन तारिक साहब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि अगर हमारे पास 5-6 एडवांस कंट्रीज का नाम है, दैट इज देयर नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, वो वहां पे वो लिस्ट है कंटिन्यूअसली यूएसए नंबर वन रैंक कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इको सिस्टम। दैट मीन्स अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी हाई ट्रेजेक्ट्री की ओर है, तो उसके लिए पीछे रीजन क्या है? स्टार्टअप्स। लाइकवाइज अगर हम अपने इंडिया की यहाँ बात कर लें, देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी बंदा जॉब में नहीं है, कमा नहीं रहा है, अब जब हम स्टार्टअप के बाद वो बंदा कमाने लग रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो वो खर्चा हुआ पैसा गोज टू सम पर्सन, उस पर्सन के बाद गोज टू नेक्स्ट पर्सन, तो ये मल्टीप्लायर चेन बनता है। तो एक रीजनल, जिसको हम इन अदर वर्ड्स बैलेंस

0: ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये पैसा जब सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का तरीका है, वो एनहेंस होता है। और कुल मिला के जब हम एंड की बात कर लें तो इट हैज अ डायरेक्ट लिंकेज, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स देयर इज अ टर्म व्हाट वी कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये चीजें जब बेस में होंगी तो फाइनली इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
1: डॉक्टर साहब, इंक्यूबेशन का एक आइडिया इसमें है, जैसे आपने इससे पहले भी बात की, इंक्यूबेशन का टर्म आपने यूज किया, ये इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग का क्या मतलब है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप कल्चर में?
0: तारिक
1: जी
0: साहब, ये जैसे मैंने हायर एजुकेशन की बात कर ली, यहाँ पे एक जब ये फील किया गया कि जैसे हम कहते हैं कैच देम यंग, अर्ली स्टेज जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको हम कैसे कैच करें, बिकॉज जो प्रोडक्टिव यू नो स्टेज होती है काम करने की लाइफ में, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो दैट इज 20 to 40। इन्हीं 15-20 साल में हम बहुत एक्टिव होते हैं सो फार एज अवर जॉब्स एक्टिविटीज आर कंसर्न। तो इसीलिए इसी एज में अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉलिसी डिजाइन की गई जिसका नाम रखा गया इंक्यूबेशन। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है प्राइमरली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ऑलमोस्ट हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनका ऑफिस है, या जिसको आप कह सकते हैं एक सेंटर है जो क्लोजली काम करता है JKEDI से, या कोई भी फंडिंग एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रही है, वो इस सेंटर के साथ लिंक्ड है। और फाइनली इस सेंटर का टारगेट जो है दैट इज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इनमें एनरोल्ड है। और अगेन प्राइमरली इनका जॉब जो है दैट इज टू कैच अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स एंड एनहेंस देयर एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन टू बूस्ट द स्टार्टअप कल्चर ऑफ द स्टेट।
1: डॉक्टर साहब, व्हाट आर द सक्सेस मंत्रास फॉर स्टार्टअप? किस तरह से आप इसको बताना चाहेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं, जो यंगस्टर्स होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे, उनके लिए भी कोई ना कोई बात है? कौन से मंत्रास आप समझते हैं कि स्टार्टअप कल्चर में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में कामयाब होने के लिए?
0: तारिक साहब, जैसे हम कहते हैं हमारा परिवार बहुत मैटर करता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई हो। तो अच्छी फैमिली से अगर हम आते हैं तो हम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि अच्छे परिवार से आता है। लाइकवाइज जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है, जब तक ये कल्चर यू नो डेवलप नहीं होगा हमारे JNK में, तब तक इस कल्चर में मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है। अब क्वेश्चन है ये कल्चर आएगा कहाँ से। यहाँ पे हमारा जो सक्सेस मंत्रा रहना चाहिए कि मेहनत के बाद जो है, मेहनत के बगैर कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं है। तो वो मेहनत जो है होमवर्क हमें करनी पड़ेगी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेंचर जो है, कोई भी स्टार्टअप जो है, वो मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च के बगैर इम्पॉसिबल है। जैसे हम कोई भी यू नो काम करते हैं तो फर्स्ट थिंग रिमेन्स कि हमें एक और चीज यहाँ पे तारिक साहब कहना चाहूंगा मार्केट रिसर्च के रिलेटेड, इस यूथ से मैसेज है कि इन्हें लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर को समझना है कि आजकल का जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, इसको क्या चाहिए, इसको किस चीज की डिमांड है जो इसको हम फुलफिल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उस लाइफस्टाइल को समझने के बाद वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इनोवेटिव तरीके से प्रोड्यूस करना इज इटसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर इनोवेशन। तो मार्केट रिसर्च की जरूरत है, फिजिबिलिटी एनालिसिस की जरूरत है कि क्या मैं जो सोच रहा हूं बिजनेस या सोच रही हूं क्या वो फिजिबल है। फिजिबिलिटी प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कि अगर मैं ये प्रपोजल डेवलप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इट हैज, क्या ये पॉसिबल है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तारिक साहब, हमें इस मार्केट सर्वे के रिलेटेड सक्सेस मंत्रा में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है कि मैं जो आइडिया जनरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या है, व्हाट आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, क्या ये सच में किसी के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ तारिक साहब, रिसर्च सेज कि अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। तो वो फेलियर इसीलिए है शायद हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते। तो यूथ के लिए क्लियर मैसेज है कि अगर जो भी आपको ये बिजनेस आइडिया है आपके पास, तो एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें, मार्केट सर्वे करें, फिजिबिलिटी चेक करें, फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, और प्राइमरली लास्ट नॉट द लीस्ट सोशल फैक्टर्स पे बात करें, काम करें कि सोसाइटी के लिए हम एक्चुअली इस एंटरप्रेन्योरशिप से क्या बेनिफिट दे रहे हैं। अगर बेनिफिट है तो सक्सेसफुल एंटरप्राइज है, अगर नहीं तो इट डाइज वेरी सून।
1: डॉक्टर आबिद हुसैन परेश साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप मैनेजमेंट से हैं, बिजनेस से हैं, एकेडमिक, तो स्वॉट एनालिसिस की बुनियाद पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, और हमारे जो सारे ऑटोनोमस

0: इंस्टीट्यूशंस हैं या सरकार इस पे बात कर रही है, इस स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से आप उनकी क्या जिम्मेदारी, उनको कितना काम करना है?
1: तारिक साहब, इसमें मैं दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो इस स्वॉट एनालिसिस के बेस पे जो पहले दो कंपोनेंट है SW, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ तो मैंने बात कर ली, इस पे बार बार हम जितनी बार बात कर ले उतनी कम होगी, बिकॉज अगर हमने सच में एक रेवोल्यूशन लाना है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्टार्टअप को लेके, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी। साथ में ही इसका जो वीकनेस है, वीकनेस हमारी बहुत एरियाज में है। अभी आप देख लीजिए, स्मॉल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, टूरिज्म के लिए देर इज नो स्ट्रक्चर्ड यू नो प्रोसेस फॉर दिस टूरिज्म। गाइड कहाँ से है, ऑनलाइन कहाँ से क्या बुकिंग करनी है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है चीजों का। तो इन चीजों में चेक्स एंड बैलेंसेस हमें करनी पड़ेंगी पूरी इकोनॉमी में, सो दैट हमारा वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव ना जाए। तो वीकनेस पे हमें काम करना है।
0: डॉक्टर अब्दुल हुसैन परे साहब, आपने हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए आपने जो अपना कीमती वक्त सर्व किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए।
0: सामईन, इसके साथ ही आज का ये खुसूसी प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपना फीडबैक जो है वो हमारे ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर्स इश्फाक शाह और कौशिकी कश्यप के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: सुनील शोभे खबर का तैयार करता ये खुसूसी प्रोग्राम आप सुन रहे थे। एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल मुकम्मल होने पर स्टार्टअप्स इंडिया। आज के मेहमान थे डॉक्टर आबिद हुसैन परे, असिस्टेंट प्रोफेसर द बिजनेस स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी। इनसे हम कलाम थे शोभे खबर के सरबरा तारिक राथर। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। सुनील, आपको याद दिला दें आज सुबह 10:30 पर आप लाइव इंटरेक्टिव शो समाप्त करेंगे। आज के मेहमान हैं डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन बुखारी, कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी JLNM हॉस्पिटल रैनाबारी श्रीनगर। आज के प्रोग्राम का मौजू है स्किन हेल्थ और इनसे हम कलाम है अब्दुल रशीद निजामी। ये थे आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया वेव 78.8 तो FM 83.5 MHz पे। सुबह 10 बजे वो बोझो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छ प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नशर सब्दान।

0: ये हमारी एक एक्सटर्नल जो हमारा जो जो हमारी ये बाहर की जो लेयर है ये हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने जिस्म के अंदर नहीं झांक सकते, तो
1: सही
0: ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम अगर इस जिल्द पे हमें दिखे तो इसका सीधा सा सीधा असर हमारे जहन पे भी पड़ सकता है। तो
1: सही
0: इस हिसाब से, और जो आपने पहले ही फरमाया कि ये एक आईना जैसा है,
1: बिल्कुल सही
0: तो ये जो जिल्द हमारा है, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए मिरर टू द इंटरनल ऑर्गन्स।
1: अंदर क्या कुछ
0: अंदर क्या
1: अगर
0: हो रहा है तो
1: अगर
0: वो
1: कुछ
0: हमारे
1: गलत होगा तो
0: जिल्द पे
1: जिल्द
0: भी
1: नुमाया होगा।
0: नुमाया होता है, चाहे वो हमारे जहन में होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि जो अगर हमारे जहन में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे चेहरे पे दिखता है।
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही
0: चेहरे से कैसे दिखता है, तो वो हमारी एक्सप्रेशन से दिखता है।
1: हाँ
0: तो इस उन एक्सप्रेशन में, चूंकि हमारे फेशियल मसल्स जो होते हैं, तो उनका रोल है, तो और हमारे स्किन का रोल है।
1: डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग जिल्द की देखभाल को सिर्फ खूबसूरती से जोड़ते हैं, क्या जिल्द की सेहत इसे कहीं ज्यादा अहमियत रखती है?
0: एब्सोल्युटली, जो हमारा जिल्द है, मैंने आपके साथ पहले ही ये बयान किया कि ये हमारा हमारे एक्सटर्नल एक अपियरेंस है, तो या हम इसको बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन टुवर्ड्स द आउटसाइड एनवायरनमेंट में इसी जिल्द से हो रही है। तो इसका सिर्फ इसकी बहुत सारी फंक्शंस है, ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए, ऑल दो इट्स ए प्राइम पार्ट ऑफ द ब्यूटी, ये हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी फंक्शंस भी है जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा सबसे पहले हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है,
1: सही
0: क्योंकि अगर हमारी बॉडी ओवर हीट हो जाती है तो स्किन इसको आउटसाइड ये भेजता है इस हीट को। अगर ठंडी हो तो ये स्किन कोशिश करता है कि हमारी जो इंटरनल बॉडी हीट है वो कंजर्व हो जाए, अंदर ही हो जाए, तो ये एक इसका अहम है।
1: यानी
0: दूसरा,
1: हिफाजती परत इसको कहते हैं ना,
0: एब्सोल्युटली,
1: हिफाजती परत इसीलिए कहते
0: यस
1: हैं।
0: यस यस, इट्स दिस इज बैरियर प्रोटेक्शन।
1: सही सही सही
0: दूसरी बात, जो हमारी जो वाटर बैलेंस है या मिनरल बैलेंस
1: जी
0: जो है, तो वो उसको बरकरार रखता है। जैसे हमारी मतलब गर्मी होगी तो स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी,
1: सही
0: तो एक्सेसिव जो भी वाटर है या मिनरल्स है तो उनको बाहर निकालता है या उनको कंजर्व कर
1: बहुत
0: सकता
1: काम
0: है,
1: है स्किन का है।
0: एब्सोल्युटली। तीसरा, हमारी इम्यूनिटी देता है,
1: अच्छा
0: ठीक है, एक तो ये प्रोटेक्ट करता ही करता है आउटसाइड पैथोजेंस का। सेकंड, जो इसकी अपनी लेयर में जो इम्यून सेल्स होती है,
1: जी
0: तो उनका एक अहम रोल होता है। एक तो हमारी प्रोटेक्शन देता है, तो जो ये फिजिकल बैरियर बनाता है, दूसरा जो इसका इम्यूनोलॉजिकल बैरियर होता है।
1: सही
0: तो उस हिसाब से ये बिल्कुल एक परत है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी
1: जरूरी
0: है।
1: है डॉक्टर साहब। तशे भाई, आज क्या ऐसी छून ऐसी ये सेमी मौजू आ चु वजह जी अक्सर छे इस विचान लोग छे ये अवॉइड करना स्किन बेशन अत्यू सजान सनान के अगर कैसे खुदा दी नजा ताफ खासी कैसे शुगर आसी कैसे ब्लड प्रेशर आसी तक फटोफट इलाज करान, मगर इस स्किनुक मामलो छु ये छु ऐसी एहसास जी अत कचा काम छे तो स्किन कोता जरूरी छु इंसान से दिखद रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यम साथ वाने इस वचान छे कशीर में से ऐसे मुख्तलिफ मौसम आसान, मौसम की तब्दीली खसूसन गर्मी है सर्दी है यहां पर खुश्की है, तो इसके असरात स्किन पर कैसे मुरतब होते हैं?
0: बिल्कुल, आपने बजा फरमाया जो हमारे सीजनल चेंजेस है, क्योंकि यहाँ हमारे बिल्कुल बराबर चार सीजन होते हैं, एक हमारा स्प्रिंग होता है, समर होता है, ऑटम होता है, विंटर होता है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारा स्किन इन चार मौसम्स में अपने आप को अडेप्ट करता है। तो उस अडेप्शन में कभी कभार ये थोड़ा कमज़ोर भी पड़ सकता है, तो उन मौसमों में हमें अकॉर्डिंगली हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है,
1: सही
0: ठीक है। और पहले मैं आपके पहले सवाल पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे लोग इसको बहुत इजी लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही फरमाया कि सबसे बड़ा ये एक ऑर्गन जो है, तो इसकी देखभाल भी करना ज़रूरी है। लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, आपने भी फरमाया कि इसको बहुत इजी लेते हैं, जो कि हम बहुत गलत बात है, क्योंकि इसकी इसके

0: जो असरात है वो बिल्कुल मनफी हमारे बॉडी पे भी पड़ते हैं और हमारे जहन पे भी पड़ते हैं, क्योंकि इसकी जो ये एक क्योंकि यही एक तारुफ हमारी बॉडी की तरफ है,
1: सही बात,
0: क्योंकि इसी पे हमारी हमारी नज़र, अपनी नज़र भी पड़ती है
1: सही
0: सबसे
1: है,
0: पहले,
1: दूसरों की भी
0: अब
1: पड़ती है,
0: दूसरों की भी पड़ती है,
1: सबसे पहले
0: तो
1: स्किन पे ही नजर
0: स्किन पे
1: पड़ती
0: ही पड़ती है। तो पहली बात यही है कि अगर कोई भी दाग हो, कुछ हो,
1: है, दबा
0: तो
1: हो।
0: दब्बा हो,
1: हाँ
0: दिस विल बी
1: हाँ
0: नोटिस्ड एंड यू विल
1: हाँ
0: बी आस्क्ड कि ये क्या है।
1: ये क्या है, बिल्कुल सही,
0: तो जो कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसी बिना पे ट्रीटमेंट करने आते हैं कि जी हमें यहाँ पे दाग है, तो हम हमें सब बोलते हैं, दे आर
1: यानी
0: कॉन्शियस
1: खूबसूरती
0: अबाउट
1: के लिहाज से ही,
0: खूबसूरती के
1: वो
0: लिहाज
1: सिर्फ
0: से,
1: खूबसूरती के लिहाज से हैं।
0: खूबसूरती के लिहाज से। लेकिन
1: हाँ
0: कुछ दाग मेडिकली भी ज़रूरी ट्रीट करने हैं, क्योंकि उनके कुछ खतरनाक
1: मुजिर
0: असरात,
1: असरात हो
0: मुजिर
1: सकते
0: असरात
1: हैं, हो
0: हमारे
1: सकते
0: जिस्म
1: हैं,
0: पे हो सकते हैं।
1: सही, बिल्कुल बिल्कुल।
0: कोई मैलिग्नेंसीज होती है जो कि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत देर तक इग्नोर की गई है।
1: अच्छा,
0: रिसेंटली हमने एक केस देखा कि उसका बिल्कुल आँख के नज़दीक एक वो लोकली इन्वेसिव ट्यूमर होता है जिसको हम BCC बोलते हैं, बेजल सेल कार्सिनोमा।
1: ठीक,
0: तो बहुत देर के 2-4 साल की हिस्ट्री थी, तो उसने किसने, तो अब उस
1: इग्नोर
0: स्टेज
1: किया
0: पे
1: था।
0: वो इग्नोर किया। अब उस अगर वो इनिशियली आ जाते तो वो हम इजीली ट्रीट कर सकते थे, दवाई से भी कभी ठीक, मतलब अगर छोटा ही होगा तो कभी कभार दवाई से भी वो अच्छे से ठीक हो जाए, तो अगर दवाई नहीं तो मिनिमल सर्जरी से वो ठीक हो
1: ठीक हो
0: जाता।
1: सकता है।
0: लेकिन अब वो उस स्टेज पे पहुंचा था कि एक तो अब उसकी डिसफिगरमेंट यानी कि वहाँ पे ये चेहरा खराब हो जाएगा, और दूसरे अब एक्सटेंसिव सर्जरी करनी है,
1: ओहो,
0: स्पेशलाइज्ड सर्जरी करनी है,
1: सही सही सही सही,
0: ठीक है। तो उस लिहाज से हमें इस स्किन की बहुत केयर करनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ठीक है।
1: सही।
0: तो अब हम आते हैं मौसमों के लिहाज से।
1: हाँ
0: जैसे हमारा ये अभी समर चल रहा है, हम
1: सही,
0: इसी लिहाज से फिलहाल बात करेंगे, गर्मी चल रही है, तो गर्मी में क्या होता है, तो हमारी स्वेटिंग हो जाती है, स्किन टेंड्स टू गेट ड्राइड, उतना ड्राई भी नहीं, लेकिन अब इसी लिहाज से या पोल्यूशन बहुत है तो उस हिसाब से हमें प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए, हमें
1: सही,
0: प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए इस स्किन की,
1: पानी बहुत
0: और
1: जरूरी है
0: पानी बहुत
1: क्या?
0: ज़रूरी है, और साथ साथ में हमारा स्किन धूप की वजह से जो मुजिर असरात जो पड़ते हैं उससे भी हमें बचना
1: बचना
0: है,
1: है,
0: ठीक है।
1: बिल्कुल सही है
0: तो फिर हम जाएंगे थोड़ा सा खुश्की के मौसम में,
1: जी,
0: तो उस खुश्की के मौसम में हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, तो
1: सही,
0: चूंकि एयर ड्राई होता है तो हमारा मॉइस्चर जो स्किन में होता है वो भी
1: नमी नहीं
0: काफ़ी
1: होती है
0: लिहाज
1: उस
0: तक,
1: वक्त।
0: हाँ नमी, वो भी काफ़ी लिहाज तक खुश्क हो जाता है। तो उसके साथ साथ हमें वैसे ही तदाबीर अपनाने हैं ताकि ये हमारा स्किन जो है बैलेंस में रहे, ना ये ज़्यादा ड्राई हो ना ये ज़्यादा ऑयली हो जाए। तो उसी हिसाब से हमारे विंटर में चूँकि हम बहुत सारे मतलब वुलन कपड़े पहनते हैं या हीटिंग गैजेट्स यूज़ करते
1: यूज करते
0: हैं,
1: हैं, बिल्कुल
0: तो उनके उनसे भी जो जो असरात होते हैं, जैसे स्किन ड्राई हो जाता है या बर्न्स के चांसेस होते हैं, या जिसको हम कश्मीरी में बोलते थे नार्दिक, हमारी कांगड़ी से होते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो एडवांस स्टेज नार्दिक जो होते हैं उनसे भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम, फिर उसमें मैलिग्नेंसी के भी चांसेस होते हैं,
1: जी,
0: तो उनका भी हमें ख्याल
1: ख्याल रखना
0: रखना
1: पड़ता है,
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हमने सर्दियों का जिक्र किया, हालांकि इस वक्त
0: सर्दियाँ
1: मुनासिब नहीं है कि हम
0: बिल्कुल
1: अभी सर्दियों की बात
0: बिल्कुल
1: करें,
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये बात याद आई मुझे, कुछ लोग गर्मी के जो गैजेट्स हैं इस्तेमाल नहीं कर पाते, कहते हैं हमें खुजली आती है जी
0: खुजली
1: स्किन पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के लिहाज से मैंने बोला कि जो वूलन कपड़े हैं उसके साथ भी कोई मतलब किसी ये एक किस्म की हम एलर्जी बोल सकते हैं,
1: सही,
0: तो वो चीज़ें होती है या इन हीटिंग से वही जो हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, तो ड्राई स्किन यूजुअली टेंड्स टू इच, जो हमारा हीटिंग गैजेट जो ये मॉइस्चर ड्रॉ ये करता है ड्राई करता है, तो उसमें हमें उसी से ये इचिंग हो जाती है।
1: और उसके बाद जनाब एक और स्टेज है, वो है स्प्रिंग का मौसम,
0: बिल्कुल
1: उसमें मुख्तलिफ एलर्जीज लग जाती हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो उन सब पे बात हम करेंगे डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल
1: यहां से आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए ये नगमा पेश करते हैं, उसके बाद बात करते हैं।

0: आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं पयाम शुभ। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सईद शहाबुद्दीन बुखारी साहब से। आप हैं कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रैनवाड़ी श्रीनगर और बात हो रही है जिल्द के हवाले से और जिल्द की जो अमराज हैं उनके हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब खास कत कर तो ऐसे शेयर सो ये वनकस सोशल मीडिया जमान
1: बिल्कुल
0: लोग वुछान फलन क्रीम हसा सिकन खातर वारिया असल तिम अनान तो रिसर्च ये ऑनलाइन शॉपिंग जो कॉस्मेटिक शॉपिंग सो सारी खुद ज्यादा गसा तथ वजह लोग झांसे में आ जाते हैं कि इसे रंग गोरा हो जाता है इसे फलानी चीज ठीक हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप
1: इसके? ये बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये बहुत इम्पोर्टेंट विश्व बार वक्त एब्सोल्युटली क्योंकि आपकी जो ये है सोशल मीडिया एक हिसाब से अब एक कर्स बन गया है। इट हैज पुट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस नाउ टू फॉर पेशेंट्स एज वेल एज फॉर डॉक्टर्स आल्सो। ठीक है तो इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना है सोशल मीडिया में। एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक आदमी को या एक पेशेंट को सबसे पहले अपना स्किन आइडेंटिफाई करना है। इसको अपनी स्किन की जो खूबियां है या जो कमियां है इसको पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करनी है।
0: ठीक है
1: ठीक है। दूसरा जो प्रेशर्स बनते हैं जो सोशल मीडिया से जो प्रेशर बने हैं जैसे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं। जैसे मतलब हमारे फोन्स वगैरह में जो फिल्टर्स आते हैं जो रील्स बनती है तो उनके जासे में नहीं आना है।
0: सही सही।
1: लाइक कि आपने कुछ फेस पे लगाया फिल्टर लगाया एंड योर स्किन बिकम्स फ्लॉलेस। तो जब ये कोई टीनेजर या कोई आदमी देखता है तो उसके दिमाग में यही एक पिक्चर बनती है।
0: सही
1: कि ये स्टैंडर्ड है।
0: बिल्कुल सही। हालांकि स्टैंडर्ड नहीं
1: ये बिल्कुल गलत है। ये मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप रियलिटी पे आ जाइए जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। हमारे जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ रंग के लोग होते हैं कोई ज्यादा ब्लैक होगा कोई ज्यादा फेयर होगा तो ये आपकी देन है। इसके साथ हमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हमें अपना स्किन प्रोटेक्ट करना है और इसको जरूरी एक जो जैसे हमारी एक मशीन की जो मेंटेनेंस है उतना बेसिक मेंटेनेंस हमें चाहिए होता है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आप जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं जैसे वी आर केमिकली लोडिंग द स्किन एंड केमिकली लोडिंग आवर बॉडी तो इसके बहुत सारे मुजर असरात पढ़ते हैं। तो जो हमारी बेसिक जो मेंटेनेंस है तो उसमें हमारा जैसे मॉइस्चराइजर आ सकता है ताकि किसी का ड्राई स्किन है तो वो मॉइस्चराइजर लगा सकता है या किसी का हाँ और उसमें एक सन प्रोटेक्शन का रोल है तो उसमें बहुत सारे फिर सन प्रोटेक्शन में हम जा सकते हैं फिजिकल है केमिकल है या एज सच फिजिकल क्लोदिंग प्रोटेक्शन है तो वो सारी चीजें इसमें है। ठीक है।
0: तो एक डॉक्टर साहब भी बता सकता है ना कि हमें हमारी स्किन को क्या दरकार है।
1: बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इस पे हमें एक प्रॉपर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत है जो कि हम इस वक्त देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है जो कॉपी कर करके एक मतलब अपनी रील्स बना के लोगों को इम्प्रेस करते हैं तो वो बहुत एक गलत ट्रेंड है। तो अगर कोई भी ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम है या कोई बेसिक मेंटेनेंस या व्हाटएवर जो भी जरूरत है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए क्योंकि आप डर्मेटोलॉजी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है।
0: सही।
1: आपको बहुत मिनिमम चार्जेस पे आपको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मिलते हैं तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: डॉक्टर साहब एक और बार मैं ये कहूंगा कि क्या होता है कि किसी को एक्नेज होते हैं
1: बिल्कुल
0: दान
1: खास
0: कर दान

0: तो इन्फेक्शन हो जाते हैं और एट्रोफी तनाज मसल।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो मैं ये बार बार मैं अभी फिर भी ये आपके ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूं, मेहरबानी करके ये ओवर द काउंटर स्टीराइड प्रेपरेशंस मत लगाएं।
1: और ओवर द काउंटर क्यों बेची जाती है ये?
0: क्योंकि इस पे
1: जब हम ओवर द काउंटर नाम लिखते हैं ना किसी दवाई का, दैट मीन्स ये किसी कहीं भी अवेलेबल है और आसानी से अवेलेबल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि ये ओवरऑल अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो हमारे इस कंट्री में है, यहाँ पे इजिली मेडिसन अवेलेबल है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पेशेंट्स इजीली इनको मिलता है। ठीक, तो ये तो एक प्रैक्टिकल, ये आपने भी देखा होगा, हम सबको पता है
1: नहीं होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए कम से कम। अगर कोई उसको उसे कहे जो दुकानदार है दवाई बेचने वाला है,
0: उनके उनके पास भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, जो हमारे मेडिकल स्टोर्स के भाई है जो चलाते हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये चीजें इन पेशेंट्स को मत दिया।
1: हाँ, नुस्खे के बगैर मत दें, उनसे कहें ओवर द काउंटर ट्यूब नहीं है ये,
0: नहीं है ये,
1: बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आप नुस्खा ले आइए,
0: नुस्खा ले।
1: हाँ, अगर आप कोई ऐसी ओटीसी कोई ट्यूब मांगते हैं, क्रीम मांगते हैं, वो आप ले सकते हैं। हाँ,
0: मेहरबानी करके स्टीरॉइड
1: मत ले लीजिए, ये तो जबरदस्त बात है,
0: इसको आप भी एम्पलीफाई कीजिए।
1: नहीं, जरूर,
0: इससे वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तो इसके क्या हो जाता है फिर लास्ट में, वो पेशेंट्स आते हैं एंड देन दे रिग्रेट,
1: क्या किया है उनको
0: भी पता नहीं होता हम क्या लगा रहे।
1: तो डॉक्टर साहब, आते हैं आज के सीजन की तरफ। हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, इनका जो स्किन है ये सेंसिटिव स्किन होता है, फीमेल्स का सेंसिटिव स्किन होता है, और हर एक फीमेल चाहती है कि वो अच्छी दिखे, उसका स्किन अच्छा हो, और नेचुरली हक भी हमारा है कि हम अच्छे दिखे, है ना। अब जब गर्मी का सीजन होता है तो क्या सनस्क्रीन लगा के निकलना या क्या कुछ करना चाहिए आजकल के सीजन में, ताकि हमारी माताओं बहनों का जो स्किन है, इवन मेल्स का भी अच्छा रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें दो तीन चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी एक अच्छी हाइड्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, पानी वानी हम खुला पिए, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके लिहाज से क्योंकि पानी का बहुत रोल है, हाइड्रेशन का रोल है, हमारी सेल्स को बिल्कुल हाइड्रेशन चाहिए, तो उसे उनका फंक्शन जो होता है ठीक रहता है। दूसरा, चूंकि समर चल रहा है, धूप बहुत होती है, तो इसमें हमें सन प्रोटेक्शन चाहिए
1: जी।
0: तो उस सन प्रोटेक्शन के हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ कि सन प्रोटेक्शन के दो तीन तरीके
1: जी।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो क्लोदिंग है, फिजिकल क्लोथिंग,
1: ठीक,
0: हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम कुछ क्रीम्स लगा सकते हैं। तीसरा, कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स हम ले सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला है या बलाक्लावाज होते हैं, जो हमारा मुंह ढकते हैं, जो बाइकर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूटियाँ चलाते, ग्लव्स जो हम लगा सकते हैं जैसे हम ड्राइविंग वाइविंग करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और तीसरी बात, सनस्क्रीन्स, और चौथी बात, और हमारा स्किन भी क्लीन रखना है। अच्छा। क्लीनिंग प्रोसेस भी हमें साथ साथ में रखनी है, क्योंकि डस्ट है वगैरह, स्वेटिंग, ऑयली फेसेस एंड ऑल दैट, वी हैव टू क्लीन इट। अब इसमें आता है कि कैसे करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: सही,
0: अब ये नहीं कि एग्रेसिव नहीं होना है, सबसे पहली बात यही है। मैंने पहले भी जो बोला कि आपने स्किन को आइडेंटिफाई करो, ये ड्राई स्किन है, ऑयली है या बैलेंस्ड है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, अगर ड्राई स्किन है तो उसको इस समर में भी उसको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फेस वॉश जो वो यूज करेगा तो ड्राई स्किन के लिहाज से ही करेगा, ठीक है। तो अगर किसी का ऑयली स्किन है तो उसको उस हिसाब से सनस्क्रीन्स भी यूज करने हैं और फेस वॉश भी यूज करने हैं। तो तीसरी बात, मैं सनस्क्रीन्स के लिहाज से बोलना चाहता हूँ, सनस्क्रीन्स, ये हमने जो देखा है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: कैसे लगाना और कितनी बार लगाना, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
1: ठीक।
0: और दूसरा ट्रेंड में जो अभी ट्रेंडिंग में है कि SPF, पेशेंट आता है, जी मैंने 50 SPF या 80 SPF, क्योंकि अब 100 से ऊपर भी SPF, जिसको SPF जो हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये मार्केट में आए हैं कि 100 से ऊपर भी अब सनस्क्रीन है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि SPF उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि सनस्क्रीन का फ्रीक्वेंसी,
1: ओके,
0: कितनी बार हम लगाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और अमाउंट कितना लगाते हैं, वो ज्यादा जरूरी है।
1: और ये जो आपने टाइप का कहा ना कि किस टाइप की स्किन आपकी है,
0: जी जी जी,

0: ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है.
1: पॉइंट
0: कौन आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी स्किन,
1: ये पेशेंट को ही आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि उतना बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होता है, और बेसिक नॉलेज भी नहीं चाहिए, वो खुद दिखेगा किसी को बिल्कुल एक मतलब या फिर कि तील छोड़ने ऑयली
0: स्किन बिल्कुल सही
1: सुनानी पड़ा नहीं
0: सही.
1: और किसी को स्किन खुशक हो जाता है नॉर्मली भी, जैसे चार आदमी है उसका स्किन ड्राई है.
0: फेयर स्किन वाले अक्सर ड्राई स्किन वाले होते हैं.
1: नहीं, नॉट
0: नेसेसरी, नॉट नेसेसरी,
1: नॉट नेसेसरी. ठीक है. तो और दूसरी ट्रेंड जो अब जो हम देख रहे हैं, जो अब बढ़ रही है, जिसको हम अपनी जबान में एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं. तो जो आपने बोला कि ड्राई स्किन, जो आंख पर टाइमिक ड्राई स्किन,
0: ठीक ठीक,
1: और ये बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में, ये पहले नहीं होता था. ठीक है,
0: क्या वजह हो सकती है
1: इसमें? एक एक रोल आता है हाइजीन हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, जो हमने हाइजीन ज्यादा किया.
0: ओके,
1: ठीक है.
0: ओके,
1: बार बार हम स्किन सोप लगाते हैं, बाकी धोते हैं, साबुन लगाते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा एक्सपोज नहीं करते
0: हैं. अच्छा,
1: बचपन में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उसके साथ आपको इंटरेक्ट करना है बचपन से, ताकि आपका स्किन बचपन से ही अडेप्ट हो जाता है.
0: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है.
1: ठीक है. तो और जो हम मतलब उसमें बहुत सारी ब्रेस्ट फीडिंग का रोल है, बाकी एनवायरनमेंट का रोल है, खाने पीने का रोल है, तो जो हमारी लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज हो गई है, तो या ओवरऑल उसमें मतलब जो हमारी कारपेट ये फ्लोरिंग मैटिंग वगैरह है, इसका रोल है, क्योंकि जो अब नया ट्रेंड जो कारपेटिंग वगैरह ये वो उसका हो गया, तो उसका भी उसमें रोल है. और जो आप पहले भी पूछ रहे थे कि इचिंग, तो उसका बहुत बड़ा सिम्टम इचिंग है, इची स्किन.
0: सही,
1: सबसे इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट यही है, डायग्नोजिंग पॉइंट है कि इची स्किन, नॉर्मल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, विंटर एग्रीवेशन हो जाती है, या एक्सट्रीम टेम्परेचर समर एग्रीवेशन इसकी हो जाएगी, गर्मी में भी वो एग्रीवेट हो जाता है.
0: कुछ लोग करते हैं शिकायत, वो कहते हैं कि थोड़ी सी गर्मी आ गई, पसीना आ गया, तो हमें खुजली आ जाती है.
1: तो उनका यही उसका इसी में ज़्यादा एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक उनको हम बोलते हैं, तो उनमें ये बढ़ जाता है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, सर्दी में ज़्यादा हो जाता है, वूलन क्लोदिंग वगैरह इससे ज़्यादा.
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो स्क्रीन लगाने की बात है, आपने कहा कि कितनी बार लगाना है और कौन सा लगाना है, ये तो डॉक्टर साहब ही कहेंगे ना.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो हमें इन जनरल हमें ज़्यादा SPF 30 तक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है. SPF आप 18 गिव्स 98.5% ऑफ प्रोटेक्शन. तो और जो फिर हम SPF बढ़ाते हैं, तो अगर हम एक SPF बढ़ाएंगे जैसे 1, तो ये लॉगरिथमिकली इंक्रीज हो जाता है इसकी प्रोटेक्शन.
0: ओके,
1: ठीक है.
0: ओके,
1: तो इसलिए ज़्यादा SPF हमें जरूरत नहीं है. SPF 30 40 इज एनफ.
0: प्लेयर्स हमारे बहुत हैं जो
1: बिल्कुल हाँ
0: ऐसे
1: के फिर हमें एक्सपोजर लेवल भी देखना है कि किसका कितना एक्सपोजर है.
0: जी
1: ठीक
0: जी.
1: है. तो उस हिसाब से भी हमें सन प्रोटेक्शन लेना है.
0: बिल्कुल. आपके साथ और भी कुछ बातें करनी है, क्योंकि ये जो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, उस पर जितनी भी बात हो कम है, और आज की नशस्त में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपसे पूछें और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश,
1: और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए जो हो, जो पर्टिकुलर इसी टाइम के लिए.
0: बिल्कुल, ये तो लोगों के लिए प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जुड़ जाएं हमारे साथ, आकाशवाणी श्रीनगर के साथ जुड़ जाएं और ये प्रोग्राम सुने. एक नगमा किशोर कुमार की आवाज में, उसके बाद आपके साथ और बात करेंगे. मोहम्मद अजीज की आवाज में नगमा, फिल्म आखिर क्यों से है.

0: मोहम्मद अजीज की आवाज में आपने ये नगमा सुना और इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने आज के मेहमान आज के गेस्ट के साथ। आप हैं डॉक्टर सईद शहाबुद्दीन बुखारी, कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, रैनावाड़ी, श्रीनगर। आज हम जिल्द की बात यानी स्किन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने अभी बात सनस्क्रीन की कि आजकल अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, हिफाजती परत होनी चाहिए हमारे स्किन पे। अगर हम न सनस्क्रीन लगाएं, कोई कपड़ा न पहने या छतरी का इस्तेमाल ना करें तो क्या हो सकता है इन शुआओं से?
1: इन शुआओं से एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। एक क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा स्किन काला पड़ेगा,
0: ठीक,
1: या सनबर्न्स की जो कि ज़्यादा धूप में रहते हैं सनबर्न्स का खतरा होता है, ठीक है। तो फिर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? कुछ फोटो एजिंग जिसको हम बोलते हैं, हमारा स्किन वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है। तो उसका वो हमें

0: प्रिवेंट करना है। दूसरा कि कुछ मेडिकली जो अलार्मिंग कंडीशंस हो सकती है जिसमें कुछ मैलिग्नेंसीज डेवलप हो सकती है
1: ठीक
0: बहुत दो, हाँ, हमारे क्रॉनिक सन एक्सपोजर से। तो अगर हम ये तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो इन चीज़ों का हमें सामना कर पड़
1: डॉक्टर साहब,
0: सकता है।
1: अक्सर लोग कहते हैं कि हमें एज से पहले ही रिंकल्स पड़ने लगी हैं।
0: तो उसमें बहुत रोल है ना इसी सन का। एक तो हमारा जो फिजियोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी है उसका भी है, लेकिन जो हमारी सनलाइट है इसका भी रोल है। जो मैंने पहले अर्ज किया कि फोटो एजिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसे स्किन पहले ही बूढ़ा हो जाता है वक्त से पहले ही।
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए उन चीज़ों का हमें इसके ये जो रिंकलिंग वगैरह ये प्रिवेंट करने के लिए सनस्क्रीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
1: अच्छा, कुछ चीजें हैं, कुछ अलामत ऐसी हैं जिनको इंसान नजरअंदाज ना करें। आपके मुताबिक
0: बिल्कुल
1: क्या कंडीशन हो सकती है ऐसी स्किन की कि आप तमाम अपने सुनने वालों को कहें कि अगर ऐसा कभी हो तो आप इसको मामूली ना हांके, आप डॉक्टर साहब के पास जाएं जाएं।
0: जाए जाए। बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जैसे कुछ धब्बे हैं
1: अच्छा
0: और ये धब्बा अचानक आ गया। ठीक है, और इसमें आपको खुजली भी है, इसमें कभी कभार खून भी आता है।
1: अच्छा
0: ठीक है, और ये बढ़ बढ़ रहा है।
1: ठीक
0: ये तो एक, ये तो अलार्मिंग साइन है। दूसरा, जो भी कुछ आपके दाग है, जैसे पहले भी ये रेडियोज पे भी वगैरह टीवीज पे तांबे के दाग या वो, उन चीज़ों का भी जैसे कोई भी स्किन पे, ये तो एक तो मैंने पहले अर्ज किया कि उनसे ज़्यादा अलार्मिंग, जो मैंने बोला कि अचानक कोई दबा आया
1: सही सही सही
0: ये कागज। दूसरा, ओवरऑल जो आपकी स्किन पे कुछ रेडनेस आ गई और नहीं जा रही है,
1: सही
0: ठीक है, तो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो वो हमें, वो उनको डॉक्टर के साथ उसके बारे में मशवरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, हम कहते हैं ना कि इंसान को अपना चेकअप करना चाहिए साल में एक बार या 6 महीने में एक बार। एक USG कराइए, एक ब्लड टेस्ट कराइए ताकि आपको पता चले, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए। स्किन के लिए भी कम से कम एक या दो बार डॉक्टर को दिखाना है ना।
0: बिल्कुल, ईयरली या वो तो एक स्किन का एडवांटेज एक तो ये है कि आपको खुद देख सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको बोल सकते हैं।
1: जी
0: ठीक है, तो स्किन की खूबी यही है कि आप खुद देख सकते हैं कि कुछ है तो नहीं,
1: हाँ, चेंज मत आ रहा है,
0: चेंज मत आई,
1: कलर मत चेंज,
0: कलर मत चेंज हो गया, या कुछ दाग तो नहीं आ गया, धब्बा तो नहीं आ गया, कुछ निशान तो नहीं आ गया। तो ये एडवांटेज है इंसान के पास कि स्किन को ये खुद देख सकता है। तो इसको डॉक्टर के पास आपको इसलिए नहीं जाना है। अगर हाँ, अगर आपके पास कुछ चेंज आ गई है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ मशवरा करना पड़ेगा।
1: और कुछ फीमेल्स का ये भी रहता है कि वो शिकायत करती हैं कि हमें जी चेहरे पे बाल आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अब रिसेंट ट्रेंड है, ये पहले नहीं होता था। जो कि मैंने पहले भी बोला कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अब जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो गए, हमारे काम करने का तरीका चेंज हो गया, बिल्कुल हम काम एक्सरसाइज बिल्कुल कम कर रहे हैं, कोई काम हम फिजिकल वर्क हम कर ही नहीं रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो अंदर का जो बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस, वो बिगड़ गया।
1: अच्छा
0: ठीक है, उसकी वजह से जिसको हम अनवांटेड हेयर्स या जिन जगहों पे बाल नहीं आने चाहिए वहीं पे आ जाते हैं।
1: सही।
0: और पैराडॉक्स क्या होता है कि जहां पे बाल होने चाहिए वहां
1: निकल
0: निकल
1: जाते हैं। सही सही।
0: तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक सिंड्रोम है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और जिसको हम PCOS के साथ जोड़ते हैं।
1: जोड़ते हैं बिल्कुल।
0: तो ये जो उसमें अनवांटेड हेयर्स है या उसमें एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा हो
1: जी
0: जाते हैं,
1: जी
0: दाने और हेयर फॉल, जो स्कैल्प
1: स्पेशली
0: हेयर है, स्पेशली इन फीमेल्स हेयर फॉल हो जाता है।
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो ये एक रीसेंट ट्रेंड है।
1: ये इनको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है और
0: बिल्कुल
1: अच्छे से
0: बिल्कुल।
1: इलाज
0: और जो
1: करना
0: मैंने पहले भी अर्ज किया कि स्टेरॉइड क्रीम्स,
1: है।
0: उनसे भी ये
1: हो
0: एक्सेसिव
1: सकता है,
0: हेयर ग्रोथ होती है
1: हो
0: फेस
1: सकता
0: पे।
1: है,
0: यस यस।
1: हो सकता है। अच्छा,
0: तो
1: मर्दों में क्या है कि मर्द शिकायत करते हैं कि उनको ना, मान लीजिए एक सिक्के की मानिंद, एक कॉइन की मानिंद, दाढ़ी खराब हो गई,
0: हाँ,
1: खस्ता हो गई, वहां से बाल निकल आए, या बालों में वो एक कॉइन की मानिंद वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बाल्डनेस आ गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको हम मेडिकल टर्म में एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं।
1: अच्छा
0: इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी इम्यून सेल्स है, जो हमारी डिफेंस है, वही डिफेंस कभी हमारी अगेनिस्ट हो जाता है,
1: ठीक,
0: अपना ही डिफेंस अपनी बॉडी के अगेनिस्ट हो जाता है। वो क्या करता है कि वो इसकी सेल्स खा जाता है जो

0: हमारे हेयर की सेल्स है, रूट की सेल्स, वो इसको खा जाता है तो वहाँ पे हमें पैच दिखता है। तो डेफिनेटली दिस इज अ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये एक डिजीज है और इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है अगर आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो आपको देखे कि
1: 100% ठीक होता है
0: एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये रिकर भी हो सकता है और उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त इलाज अवेलेबल है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पानी जो है हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, तो कौन कौन सी खुराक वो है जो हमारी स्किन को, हमारी जिल्द को सेहतमंद रख सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे हमारे कुछ फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल्स है, जैसे हमारा कुकम्बर है, टोमेटो है, कीवीज है, जिनमें वाइटमिन सी बहुत होता है, तो वाइटमिन सी हमारे स्किन के लिए, खासकर जिनमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उनमें बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और जिनमें जो वाटरी जो फ्रूट्स है जिनमें पानी ज़्यादा हो तो वो हम खा सकते हैं, जैसे या हम मतलब जो एग्जॉटिक कुछ फ्रूट्स है और कोडोज वगैरह, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे बेनिफिशियल है। ठीक,
1: कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन पे वाइट दाग निकलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, तो कुछ का ये भी ख्याल है कि दपान ऐसा क्यों यमोवस क्यों जाऊँ तो तगाड यमन गोता मिसी दिन।
0: हाँ, जो ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है ये बहुत एक पुरानी ही हम बोलेंगे बहुत पहले से ये डिजीज चल रही
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम मेडिकल टर्म में जिसको हम विटलाइगो बोलते हैं। ठीक है, सफ़ेद दाग, तो जो ये शाख मतलब ये बहुत मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये शाक मतलब उल्टा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो पेशेंट की जो डिग्निटी पे इसका असर पड़ता है,
1: सही से
0: उसकी कॉन्फिडेंस लेवल पे असर पड़ता है।
1: बिल्कुल सही,
0: तो इसको हाँ, लेकिन दिस इज अ ट्रीटेबल डिजीज, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट ट्रीटेड एंड गेट ट्रीटेड वेल, बहुत अच्छे तरीके से उनकी फर्क भी हो जाती है। ये नहीं है कि हम बाहर देखते हैं कुछ पेशेंट्स आपने देखे जिनका सारा स्किन सफेद हुआ होगा या कुछ बहुत देर के लिए उनका फर्क नहीं पड़ा है, तो लेकिन दे आर वेरी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ पेशेंट्स। जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स गेट ट्रीटेड। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं जिनकी जिनको ट्रीटमेंट फेल हो जाता है।
1: ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं,
0: और जो हम आपकी बात थोड़ा मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इनिशियल जो होता है कि इनिशियल जो ये डिजीज है इनिशियली ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट हो सकती है, मतलब जो शुरुआती टाइम पे, फिर लेटर ऑन अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मुश्किल हो जाता है फिर इसको ट्रीट करना।
1: यानी आपका कहना है और आपका मानना है कि अगर सफेद दाग निकल भी गए तो ये 100% ठीक हो सकते हैं। यही हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि हमारे जितने भी दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं वो एक उम्मीद रखें कि स्किन में अगर खुदा न खास्ता कोई कोई प्रॉब्लम आ गया, वो परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, इनसे मिलें तो ज़रूर इंशाल्लाह अफाका होगा, आप ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कई दोस्तों ने मुझसे किया था कि डॉक्टर साहब से ये भी पूछना कि क्या डिफरेंस है फंगल इन्फेक्शन और सोरियसिस में, दोनों में खुजली बहुत आती है और क्या दोनों ट्रीटेबल हैं? लोग कहते हैं कि सोरियसिस आसानी से जाता नहीं है जबकि फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है।
0: बिल्कुल, आपने वजह फरमाई, फंगल इन्फेक्शन और सोरियसिस कभी कभार ये मिक्स हो सकते हैं, इनकी शक्ल एक दूसरे से मिल सकती है, हमेशा नहीं कभी कभार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ट्रीटेबल है, ये एक शॉर्ट टर्म डिजीज है, इसको एंटी फंगल्स दिया तो खत्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सोरायसिस एक क्रॉनिक डिजीज है जिसको हम रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग, ये कभी आ भी सकती है और कभी खत्म भी हो सकती है।
1: अच्छा,
0: तो उसके लिए पेशेंट को तैयार रहना पड़ता है।
1: क्या
0: ये मतलब कभी दो साल के लिए खत्म हो गया, दो साल के बाद वापस
1: डिजीज कह सकते हैं क्या?
0: ऑटो इम्यून भी नहीं, हाँ इम्यून, ये हम इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड डिजीज।
1: ओके,
0: ठीक है, प्रॉपर ऑटो इम्यून नहीं है,
1: प्रॉपर ऑटो इम्यून नहीं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऑटो इम्यूनिटी होती है, इसमें ऑटो इम्यूनिटी नहीं होती, लेकिन ये मेजरली ये इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड होती है। ठीक है, सोरायसिस चूंकि ये क्रॉनिक है और पेशेंट्स को ये बहुत तंग करती है, क्रॉनिक डिजीज है, इसलिए पेशेंट को भी एक प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए कि ये डिजीज है क्या, वो डॉक्टर साहब का फर्ज है उनको पहले बोले

0: कि ये डिज़ीज़ ऐसे है, कभी आ भी सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी शुगर की बीमारियां है, प्रेशर की बीमारियां है, उसके लिए पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं और कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सोराइसिस के लिए भी ऐसे ही कभी कभार आपको बार बार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है।
1: बिल्कुल सही। और ये जो पेशेंट्स हैं ना, जो कुछ खास सीजन में जिनका स्किन या तो खुजली पैदा होती है या रंग चेंज होता है या दाने निकलते, किसी खास सीजन में, सपोज कोई गर्मी की शिकायत करता है, कोई सर्दी की शिकायत करता है, कोई स्प्रिंग सीजन की शिकायत करता है, उनके लिए क्या आपके पास बात है और क्या इलाज है?
0: जैसे मतलब ये डिफरेंट सिम्टम्स है जो आपने अर्ज किया कि खुजली होती है या दाने निकलते हैं या रंग चेंज हो जाता है, तो ये डिफरेंट सीजन्स में हो सकता है और डिफरेंट डिजीज हो सकती है। जैसे खुजली जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि खुजली से वास्ट मतलब ये किसी भी चीज़ से हो सकती है, इनके कपड़ों से हो सकती है, मौसम की तब्दीली से हो सकती है, तो उसमें हमने यही एक तो मॉइस्चराइजेशन करनी है अच्छे से और बिल्कुल हमें कॉटन कपड़ा यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एक्सेसिव सोप्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो खुजली तो वो ठीक हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने रंग की तब्दीली यूजुअली धूप की वजह से होती है,
1: सही,
0: तो वो हमें इस मौसम में रेलिवेंट है, तो इसमें हमें प्रोटेक्शन लेनी है, सनस्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन चीज़ों से हम बचें।
1: बिल्कुल सही। डॉक्टर सईद शहाबुद्दीन बुखारी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने जिल्द की सेहत से मुतल्लिक नहायत अहम और मुफीद मालूमात हमारे सामने तक पहुंचाई।
0: आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया ताकि हम भी लोगों तक अपनी जो कुछ हमें मैसेजेस है वो पहुंचाए। जैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैं देना चाहता हूँ,
1: जरूर
0: आप अगर हमें इजाजत दें।
1: जरूर।
0: जैसे सबसे पहले आप मेहरबानी करके ये स्टीरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल बंद कीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दूसरा कि आप सोशल मीडिया का के प्रेशर में मत आ जाइए।
1: सही,
0: ठीक है। तीसरा, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, और जो कि आजकल ट्रेंड बन गया है, हर कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन बन गया है, इनसे मेहरबानी करके बचिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बेनिफिट से ज्यादा आपका स्किन या आपको स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और मेहरबानी करके स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल मत कीजिए, और इस सीजन में सनस्क्रीन, प्रोटेक्टिव गियर्स यूज कीजिए, पानी
1: खूब
0: पीजिए और अपने जिल्द का खास ख्याल रखें।
1: और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूंगा डॉक्टर साहब कि अगर आपको, तमाम सुनने वालों से कहता हूँ कि कोई भी चेंज नजर आता है स्किन पे, अगर मामूली खुजली भी आती है, तो उसको नजरअंदाज मत करें, डॉक्टर साहब के पास जरूर जाएं। अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आज हमारे मेहमान थे डॉक्टर सईद शहाबुद्दीन बुखारी साहब, कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, रैनावारी, सिटीगर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर।
1: एक नगमे की चंद लाइन्स आपके लिए और बाकी दोस्तों के लिए पेश करते हैं, आपका करते हैं शुक्रिया और मिलते हैं नगमे के उस पार। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।

बहुत बहुत शुक्रिया रशीद निज़ामी साहब। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम भी 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम में 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। बारह बजकर 10 मिनट हुए हैं। आई समाप्त करें चंद फिल्मी नगमें।

जी समीन, आपने राहत फतेह अली खान और श्रिया घोषाल को सुना। फिल्म का नाम था दबंग। अब आइए सोनू निगम को सुनते हैं, यह फिल्म खुद्दार।

जी समय मैं आपको बताते चले फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए आखिर पे अलका याग्निक और उदित नारायण को सुनते हैं। यह है फिल्म कयामत से कयामत तक।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ अख्तर। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज श्रीनगर लह कौमी शाहरा पर ज़ेर तामीर जोजिला टनल की ब्रेक थ्रू तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। ये टनल 14 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 6,800 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे कबल श्रीनगर पहुंचने पर LG मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निज़ाम का आगाज करेंगे। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शिफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनुष्यात के खिलाफ एक वाजह पैगाम में कहा,
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा की बरसी पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी समाजी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक्कद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और ज़रई माहरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस, जनूबी अफ्रीका वगैरह मुल्क शामिल हैं। समाज बहबूद महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमत हफीज ने कल कुनन पोशपुरा कुफवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दोयम के तहत चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने बाद में मकामी लोगों के साथ मुलाकात की, जिस दौरान लोगों ने उनको दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी दी। सरमत हफीज ने इस मौके पर बच्चों में PMMVY किट्स भी तकसीम किए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आइंदा मानसून के दौरान इम्कानी बारिशों के पेश नज़र वादी कश्मीर के तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों के साथ एक मीटिंग में सैलाब से बचाव के इकदाम, कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों और हंगामी रद्द अमल के बुनियादी ढांचे की सूरत हाल का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने पेश की तैयारियों की अहमियत पर जोर देते हुए तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो जरूरी वसाइल की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी की आमद के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने शहर के मुख्तलिफ अहम इमाम बारगाहों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के पुरमन और मुनज़म इनेकाद के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामिया और मकामी कमेटियों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर देते हुए यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया तैयारों की मुसलसल निगरानी करेगी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने जिला अफसरान की एक मीटिंग में जिला भर में मिशन युवा की अमलावरी और पेशरफ्त का जायजा लिया। जिले के असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड मिशन युवा के मुख्तलिफ अज्जा के तहत हुसूलियाबियों का खाका पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अहल नौजवानों और ख्वाहिशमंद कारखानादारों तक स्कीम के फवायद पहुंचाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा इंदु कंवल चिब ने कल डाक बंगला संबल में एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतलका महकमों के दरमियान मुअसर राबते पर जोर दिया। उन्होंने यात्रियों की सहूलत, हिफाजत और आराम को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिला अनंतनाग के इंतजामी जज जस्टिस रजनीश ओसवाल ने जिला अदालती कॉम्प्लेक्स अनंतनाग का दौरा करके वकला के लिए नए चैम्बर्स की तामीर का संगे बुनियाद रखा। अदालती कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर जस्टिस ओसवाल को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने खिताब में जस्टिस रजनीश ओसवाल ने कहा कि मुजवजा चैम्बर्स वकला और साइलिन के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे, जिससे इंसाफ की फराहमी के अमल को मजीद मुअसर बनाया जा सकेगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर ने कल हरवन से मामनेट तक एक ट्रैकिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया, जिसका मकसद तलबा को सेहतमंद रखने के अलावा इनमें माहौलियाती बेदारी पैदा करना था। कुपवाड़ा जिले के चौकीबल मंजपथरा गांव में कल तेंदुए ने एक स्कूली बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इलाके में वाकई के बाद खौफ हिरास फैल गया है और मकामी बाशिंदों ने वाइल्ड लाइफ महकमे से अपील की है कि वो इस तेंदुए को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाइयां तेज कर दें। पेट्रोलियम कुदरती गैस की वजारत ने कहा कि मगरबी एशिया में जारी सूरत हाल के बावजूद मुल्क में खाम तेल, LPG और कुदरती गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। नई दिल्ली में वजारती मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नकमी आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम भी 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दोस्त के फौरन बाद कश्मीरी में।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity.

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
3: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
3: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
3: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
3: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
3: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
3: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
3: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
3: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
3: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
3: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
3: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
3: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
3: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
3: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय

0: पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर यह चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।

0: हर गोविंद भाई, हाँ? तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया,

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हर गोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए, मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं।
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें।
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा।

0: किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
1: माँ माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
2: पाए लागू माँ जी।
3: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
2: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
3: मेरी बेटी का कोई संवाद?
2: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
3: हाँ?
2: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
3: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
2: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
3: सो तो है।
2: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
3: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
3: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
3: अरे हरगोबिंद क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
3: अरे
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पान लागू।
3: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
2: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
2: अच्छा राम राम
4: राम राम
2: राम, राम।

हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को

नहीं, कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह दे रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी।
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter.

आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेशरो का।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निज़ाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजीला टनल में पेशरफ्त हुई है और वादी कश्मीर नीम लद्दाख के दरमियान फासला कम हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर

आज नई दिल्ली में मुल्की सतह पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। और मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के शहर दम्बोला में तीन मुल्कों की ए सीरीज का पहला मैच भारत ए और श्रीलंका ए के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद के तहत अहदबस्ता है। वजीर आजम ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकल व हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की सम्त एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में काम काज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तय मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगम मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिन्दुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवेज़ नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसके फौजी बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुकाम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के सरहद पार की फौजी सरगर्मी की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैनुल अक़वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजिला टनल में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख में आमदोरफ्त से फासला काफी कम हो गया है। इस तरह 10 साल से जारी ये ख्वाब पूरा हो दबाकर इस पेशरफ्त का आगाज किया। ये तकरीब लद्दाख में मिनीमर्ग में टनल के मशरक

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

ईशाकाशवाणी श्रीनगर जबरजित त्रह मिनट शब्द बोल समय सोफियान मौसी बोजू सदा कर्ज उस्ताद रमजान जो तुम सी इन बोजो मकामी नवा

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म जांबाज के इस नगमे से, जिसे गाया है किशोर कुमार और सपना ने। इंडीवर का लिखा नगमा है और कल्याण जी आनंद जी की मौसिकी।

जी दोस्तों, अब आइए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को सुनता है। यह है फिल्म प्यार झुकता नहीं। गीतकार है SH बिहारी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से संवाद कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में।

जी दोस्तों, अब आइए आरडी बावन की मौसीकी में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये नगमा सुनते हैं। ये है फिल्म समाधि, आवाज आशा भोसले की।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जा रही हैं पहले वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बताते चले आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें डीटीएच या एआर लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म याराना से, आवाज किशोर कुमार की।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को सुनते हैं। यह फिल्म शिकारी।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 3:50 हो रहे हैं। अब आइए उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं। आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सुपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पिछले 12 वर्षों के दौरान हुकूमत ने नौजवानों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई भी दकीका नहीं किया। फरोगुजाश, श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर तामीर हो रही जोजिला टनल की हतमी ब्रेक थ्रू आज। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेशरफ को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए दिया कलीदी अहमियत का करार। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मनशियात मुखालिफ सरगर्मियां शुद्धमत से जारी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत ने पिछले 12 वर्षों के दौरान मुल्क के नौजवानों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि 1.4 बिलियन शहरियों की दुआओं की बदौलत और नेशन फर्स्ट जज्बे के तहत हुकूमत एतमाद, तरक्की और अवामी बहबूद के मंत्र पर कारबंद है। वजीर आज़म ने कहा कि इन बेलोस काविशों के नतीजे में भारत ने आलमी सतह पर अपनी एक नई शनाख्त कायम की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खिदमात, बेहतर हुक्मरानी और तरक्की के नए मनाजिल तय करती रहेगी। दरियासना वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली 12 साल की हुकूमत की सताइश करते हुए कहा है कि वजीर आजम की बेमिसाल काविशों की बदौलत भारत तरक्की की एक नई राह पर गामसन है और इस मुद्दत के दौरान तरक्याती अमल मयार की नई मंजिलों को छूने के साथ साथ लोगों के मयारी हयात में काफी बेहतरी आई है। एनडीए हुकूमत की 12 वर्ष की हुकूमत के दौरान आम लोगों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों की कई स्कीमें शुरू की गई जिनसे आम लोग बड़े पैमाने पर मुस्तफीद हो रहे हैं। खास तौर से पीने के पानी और आपाशी सहूलियात की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई। एक आम शहरी के तासरात।
1: मजीद है और मैं अनंतनाग में रहता हूँ। मैं एक फार्मर हूँ और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी गवर्नमेंट में हमें काफी

0: फायदा हुआ। पीने के पानी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से जल जीवन मिशन जो है उसमें हमारे इलाके को वाटर सप्लाई स्कीम मिल गई, बल्कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन गए और नए नए जो पाइप्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए और आज हम इस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बन गया, नए नए पाइप्स जो है वो इंस्टॉल हुए, इसके अलावा जगह जगह पे हर किसी घर को जो है नल मिल गया और आज हमारे इलाके में कोई शिकायत नहीं है।
1: श्रीनगर लह कौमी शाहरा पर तामीर हो रही जुजिला टनल में आज हतमी बेर थ्रू मुकम्मल हुई और इसे इस प्रोजेक्ट की अमलावरी में संगमेल की हैसियत तस्वर किया जा रहा है। ब्रेक थ्रू का काम सड़क शाहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। अलावा अजी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि टनल की तकमील से लद्दाख के लोगों को हर मौसम में उबर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी और इस खिते की इक्तिसादी और समाजी तरक्की को भी तकवियत हासिल होगी।
2: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कम स्थितियों में यहां हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टनल की ब्रेक थ्रू को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान राबतों को मुस्तकम करने और तरक्की को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कलीदी नवियत का करार दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस टनल पर 6,800 रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये कश्मीर सूबे में गांधरबल जिले को लद्दाख के द्रास इलाके से जोड़ेगी और ये टनल तमाम जदीद सहूलियात से लैस होगी।
3: निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी।
1: टनल की ब्रेक थ्रू का मुशाहदा करने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोनों यूटीज के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि टनल के मुकम्मल होने से नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बारे में लोगों को आने जाने की सहूलियात दस्तियाब होंगी। नीज कश्मीर और लद्दाख में सियाती सरगर्मियों को फरोख हासिल होगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा होंगे।
4: यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुंचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन में हमें एहसास करना मुश्किल होगा। इस मौके पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो है वो जुड़ गए हैं, अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा।
1: इससे पहले आज सुबह श्रीनगर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़क और शहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का इस्तकबाल किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पाड़ी प्रोग्राम गेन का में हां तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारेयां को प्रोग्राम भी जी आयां को आखती हां हरकत दे आउते प्रोग्राम दी शान बदाओ। सामीन प्रोग्राम दी शुरुआत कर दे आ चना दी मेहंदी गीत नाल आवाज मसरत नाज़ोरां दी।

0: इलाके को वाटर सप्लाई स्कीम मिल गई, बल्कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन गए और नए नए जो पाइप्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए और आज हम इस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बन गया, नए नए पाइप्स जो है वो इंस्टॉल हुए। इसके अलावा जगह जगह पे हर किसी घर को जो है नल मिल गया और आज हमारे इलाके में कोई शिकायत नहीं है।
1: श्रीनगर लह कौमी शहरा ते तैमीर हो रही जोजिला टनल बिच आज खत्मी ब्रेक थ्रू पूरी हुई और इस प्रोजेक्ट की अमलावरी बिच संगे मील की हसीयत तस्वर की जुल रही है। ब्रेक थ्रू का काम सड़क और शहरावां दे मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मौजूदगी बिच पूरा किया। इस तू इलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कुछ बाकी आला अफसर भी इस मौके ते मौजूद से।
2: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कम स्थितियों में यहां हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।
1: टनल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन टनल दी ब्रेक थ्रू को जम्मू ते कश्मीर और लद्दाख के बिचकार राबतियां को मस्तकम करने और तरक्की को मियार दियां बुलंदियां तक ले जाने वास्ते जरूरी नौईयत देता करार। उन्होंने सुना कहा कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस टनल तय 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए जुल रहे हैं और ई कश्मीर सूबे बिच गांधरबल जिला को लद्दाख के दरास इलाके नाल जोड़ सी।
3: निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी।
1: टनल दी ब्रेक थ्रू दा मुशाहिदा करने तो बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन दुआ यूनिट्स दे लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने सुना के कि टनल दे पूरे होने नाल नासाजगार मौसम दी सूरतयाल बिच लोगों को आने गेने दी सहूलत होसीगी। नीस कश्मीर और लद्दाख बिच सियाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होसीगा और रोजगार दे मुश्तमुच मौके पैदा होसनगे।
4: यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन में हमें एहसास करना मुश्किल होगा। इस मौके पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो है वो जुड़ गए हैं, अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा।
1: इस तो पहला अज सुबह श्रीनगर पहुंचने तय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन सड़क और शहरावां दे मरकजी वजीर नितिन गडकरी दा इस्तकबाल कीता। जम्मू कश्मीर को मनशियात दी लानत छुटकारा दिलाने वास्ते सो तैयारियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हर तरीके नाल कोशिशां कर रहा है और इस को जड़ तो मिटाने वास्ते भी मुझ सारे तरीके नाल कोशिशां चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गोनी मनु इससे ना आप मनशियात मुखालिफ प्रोग्राम और कदम की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें सुन हाल ही यूटी दिया सारिया जिलों में पादरी यात्रावां का सिलसिला पूरा किया। अभियान के तहत अजे तक मुझ सारी पेशरफ्त हासिल की गई है। मनशियात

0: खिलाफ अलजीदा इसनिया।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह ते इस बिदत ते काबू करने वास्ते मुसारे कदम और लोकां दी जिम्मेदारियां दे बारे विच वादी दे एक मशहूर गुलकार गुलजार अहमद गनाई सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या,
2: हर एक बच्चा एक कीमती जान होता है। अगर ये ड्रग्स में मुब्तला होगा, ये खुद ही एक अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा परिवार होता है। ये सारा परिवार दर दर के ठोकरे खाते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस उस पे काम करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ भी आपको लगे कि कोई बच्चा ड्रग्स के साथ मुलव्वस है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि वो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि समाज में ऐसा नासूर पैदा ना हो।
0: सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन सुन आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर विच मनशियात ते मंदे असर दे बारे विच एक बेदारी प्रोग्राम दा इनकाद कीता। इस मौके ते एसोसिएशन दे सदर किफायत रिजवी सुन नौजवान नस्ल को इस बिदत तो दूर रखने और मापे और समाज दियां जिम्मेदारियां को उजागर कीता। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन मुजाहिद आजादी भगवान बिरसा मंडा को इन्हां दी शहीद दिवस ते हराज अकीदत अदा कीता। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन आखे कि बिरसा मंडा सुन गैर मुल्की हकूमत दे खिलाफ मुझ सारे जदोजहद करने दे नाल नाल पानी जंगल और जमीन को तहफुज देने वास्ते भी बेमिसाल काम कीते। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन भी बड़ी कबायली शख्सियत और फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मंडा जी को इन्हां दी पुणे तिथि ते हराज अकीदत अदा कीता। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच एलजी सुन कबायली तबके दे हकूक दी पासदारी करने वास्ते भगवान बिरसा मंडे दे रोल को उजागर कीता। इस दे नाल ही पाड़ी खबरनामा मुकिया। अस्ता अगला बुलेटिन शाम 5:50 ते गोजरी जबान विच नशर होगा। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।
3: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे के अलावा FM 103.5 MHz पर समय समाप्त करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: समीना पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समीन समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम इस वक्फे के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जी सामिन, तम नगमो सुन रहे थे गल हो रही थी मरदमशुमारी की। मरदमशुमारी हिंद 2027 कई हवालों से तारीखी अहमियत की हामिल है, या आज़ादी के बाद 8वीं और मजमूई तौर पर 16वीं मरदमशुमारी वहगी। इस मरदमशुमारी की सब नुमाया खसूसियत यह है कि भारत की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी वहगी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन खुद इंदराज यानी कि सेल्फ इनुमरेशन जैसी सहूलियात शामिल हैं। सामीन, अगर मरदमशुमारी की मंजरनामा की गल करां, पस मंजर की गल करां, तो हिंदुस्तान में बाकायदा और अहम आहंग मरदमशुमारी को आगाज 1881 में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान हुआ। इसके बाद हर 10 साल बाद मरदमशुमारी को इनकाद कियो जाते रहो। आज़ादी के बाद भी यह सिलसिला जारी रहो और आखिरी मरदमशुमारी 2011 में मुनक्कद हुई थी। 2021 की मरदमशुमारी कोविड-19 वबा के बायस मुलतवी कर दी गई, जिसका नतीजा में हूँ 2027 में नई मरदमशुमारी की जा रही है। सामीन, अगे हम नगमो सुन लिया, फिर गल अगे इस हवाला ना होर की जाएंगी।

जी सामिन, तमने नगमो सुनियो, गल हो रही है मरदमशुमारी का वाला ना। सामिन, मरदमशुमारी किसी भी मुल्क के वास्ते एक बुनियादी और नागजेर कौमी सरगर्मी वे। ये सिर्फ आबादी की गिनती को अमल नहीं होता, बल्कि मुल्क की समाजी, माशी, तालीमी और तरक्याती सूरत हाल को जामिया आयन हो। मरदमशुमारी 2027 भारत के वास्ते गैर मामूली अहमियत रखे, क्योंकि यह एक तवील वक्फा के बाद मनाकद की हो रही है और जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दी जाएगी। इस मरदमशुमारी ते आसन होने वाला एदाद शुमार आने वाला कई सालों तक, कई बरसों तक कौमी मनसूबाबंदी और पालसी साजी की बुनियाद फराहम करेगा। किसी भी हकूमत ना मुआसर पालसी बनाने के वास्ते दुरुस्त और ताज़ा मालूमात दरकार वे। मरदमशुमारी हकूमत ना यू जानने में मदद देगी कि मुल्क में कितना लोग रहें, इनकी उम्र के हैं, इनकी तालीमी और माशी हालत की है और इन्हें किन सहूलियात की ज़रूरत है। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर हकूमत तालीम, सेहत, रोज़गार, रिहाइश, पीने का पानी, बिजली और दीगर शोबों के वास्ते पॉलिसी मुरतब करे। सामीन, मरकजी और रियासती हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों की आबादी का तनासब नाल फंड्स और वसाइल फराहम करे। अगर किसी इलाका की आबादी में बाद हो तो उत मजीद स्कूल, अस्पताल, सड़क और दीगर सहूलियात की ज़रूरत है। मरदमशुमारी 2027 हकूमत ना वसाइल की मुनसफाना और मौसर तकसीम में मदद फराहम करेगी, ताकि हर शहरी तरक्की का समरात मुस्तफीद हो सके। सामीन, आगे एक नगमो सुन लिया।

0: ये किस तरीके नाल तावन कर सकें, या कार में कोई एक आदमी रहे, या एन्यूमरेटर नाल राबतो करके ताकि वे अपनी सही जड़ी जानकारी भी दे सकें।
1: बेहतर है कि अगर एक बंदो अगर कार के बीच रहे थे, वो एक एनोमिनेटर ना आपड़ो बेसिक जो
0: जी
1: अपनी मुश्किलात है
0: जी ठीक
1: जो कुछ है उनको जी कमी है
0: जी
1: वे अगर है और जी चीज़ है वे सारी चीज़ दसें थे बेहतर रह को।
0: ठीक
1: तो उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई मजबूरी है जो कोई बंदो कार में नहीं रह सकतो,
0: जी
1: मकान चाहे बंद है या के है,
0: जी
1: जो इस वक्त को जो जून में जो मारो जो चल लगो
0: ठीक
1: मारो, तो इसके बीच है कि हर एक बंदो जो अगर है भी या नहीं भी,
0: जी
1: चलो कोई अगर बंदों को आए नहीं मजबूरी की वजह से लॉक है,
0: जी
1: अलबत्त उसको स्ट्रक्चर को जी है वो सेंसेस
0: ओ
1: मुकम्मल रहेगी,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: ठीक
1: नहीं हो
0: या
1: सके।
0: खाली जरा अमारता की या
1: ये
0: सेंसेस
1: अमारत
0: है
1: नहीं जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद इंसान की वैगी
1: हाँ जी हाँ, इसके
0: जी
1: बाद जो है जो इंसान की जो मरदमशुमारी है
0: जी
1: एनुमरेशन जी है
0: ठीक
1: वह फरवरी का महीना के बीच में होने लगी
0: जी
1: है।
0: आपने ये भी सुने थे ना कि जिन इलाका में ज्यादा बर्फ है तो शायद भी सितंबर में करें इसी साल
1: वे ऐसा इलाका लगे जैसे टंगडार आवे लगा, गुरेज आवे लगा,
0: जी
1: या ये द्रास
0: मच्छल है
1: मच्छल है, ये द्रास
0: जी
1: का इलाका, ये ऐसा इलाका जरा बालाई इलाके जिनके
0: जी
1: पूरा मतलब कट के रह जाए,
0: जी
1: तो
0: ठीक
1: ऐसा इलाके के बीच हो सके
0: अच्छा
1: कि सितंबर के बीच होगी। तो
0: अगर
1: बाकी
0: एक
1: जो
0: भी कराए तो उसमें बाजाबते गवर्नमेंट इश्तेहार कर दिएगी ना
1: बिल्कुल एक
0: जी
1: इश्तिहार उसके
0: जी
1: बीच
0: जी जी
1: जी
0: ठीक
1: मुकम्मल
0: मुहिम चलाएगी कि अथारो आ जाए
1: ना जनाब
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: सितंबर के बीच हो तो सितंबर के बीच भी जैसे, क्योंकि हमारा लोग जरा टोकन दे वापस आ जाएगा तहाँ
0: जी
1: तक चलना
0: जी
1: उस
0: जी
1: वक्त मरदमशुमारी हर एक चाहे कार के बीच कितना बच्चा है कितना बुजुर्ग है वे
0: जी
1: सारे मरदमशुमारी मरदमशुमारी के बीच हिस्सों लियो,
0: जी
1: क्योंकि इसके नाम बड़ो फायदो है
0: जी
1: हमारा आने वाला वक्त
0: तो
1: में।
0: मुदिर साहब हम अक्सर अपनी बरादरी का लोग देखा चाहे भी सियासत के नाम वापसता या सामाजिक कारकुन ने भी एक शिकायत करता रहे कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है लेकिन रिजर्वेशन जुड़ी हुआ हमला काट है क्या यही वजह तो नहीं कि भी वक्त पर उनकी मरदमशुमारी सही तरीका ना होती नहीं तो उसकी वजह से यू नुकसान अपना सड़ो पाए
1: एक बड़ो जो एक बड़ी इस वक्त इम्पैक्ट जो पै लगो
0: जी
1: वह ये मरदमशुमारी है,
0: ठीक
1: मरदमशुमारी ना होने की वजह से
0: जी
1: क्योंकि असल जी फिगर है
0: जी
1: वे अगे गवर्नमेंट के सामने आया
0: जी
1: नहीं, तो कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए,
0: जी
1: कितना पोस्ट मारा निकलना चाहिए,
0: ठीक
1: किस हिसाब के ना लड़का लगना चाहिए, यू
0: जी
1: कोई अजय डाटा उनको मुकम्मल,
0: नहीं
1: तो इस वजह से थोड़े आमने इस चीज़ के बीच भी बड़ी दिक्कत आवे लगी।
0: जी मुदीर साहब अक्सर हमारा लोगों की एक यह शिकायत भी रहती कि जी मरदमशुमारी वह वह अगर सही दर्ज नहीं होती वह कागजों पर तो लिखे लेकिन वह अगर सही तरीके नाल वह पेश नहीं होती। पहली मरदमशुमारी और आज की मरदमशुमारी में क्या फर्क है कि हम ना इस दफा यूं लगना चाहिए कि नहीं या बिल्कुल रियल वहगी या सच्चाई पर मबनी वहगी तो इसमें जो असली फैक्ट है वही दसिया जाएगा
1: देखा कि जी पुरानी जी
0: जी जी
1: मरदमशुमारी है,
0: हाँ
1: पुरानी जी मरदमशुमारी है जी लिखाई के प्रति,
0: ठीक
1: ठीक है उसको तो हो सके कि नहीं, अलबत्ता मना नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला हो वैगो
0: ठीक
1: जो था वो रियलिटी के बीच उन्होंने लिखे हो वैगो
0: जी
1: जो ग्राउंड सिचुएशन थी,
0: जी
1: अलबा जी आज की जी मरदमशुमारी है
0: अच्छा
1: ऑनलाइन है यो
0: अच्छा
1: जी हाँ
0: हाँ
1: डिजिटल तरीका के ना
0: अच्छा
1: है,
0: जी
1: थारे जितनी भी मरदमशुमारी होगी इसमें कागज को कुछ
0: जी
1: है ही नहीं,
0: जी
1: जरूरत
0: जी
1: है नहीं, सारो ऑनलाइन वे लगो
0: ठीक
1: थारे जितनी डिटेल है वे ऑनलाइन चल लगी,
0: जी
1: हर एक डाटो जो वो आगे
0: जी
1: चला लगो, तो इसमें मन नहीं लगता कि
0: मतलब
1: कोई
0: इसमें गलती की
1: ऐसी
0: गुंजाइश
1: गलती की
0: नहीं
1: गुंजाइश है ही नहीं
0: जी
1: बिल्कुल,
0: जी
1: टोटल की गलती की
0: जी जी
1: गुंजाइश है ही नहीं जनाब
0: यानी जो कुछ हम लिखावांगा जो कुछ मरदमशुमारी होगी या अगर सही तरीके ना पहुंचेगी
1: बिल्कुल सही तरीका ना पहुंचेगी,
0: जी
1: इसमें कोई मतलब ऐसो हिंड्रेंस रहने की जरूरत
0: नहीं
1: है नहीं, कोई पेशानी ऐसी इंशाल्लाह।
0: जी तो एक और शिकायत अक्सर पहले भी रहती लेकिन आज का वक्त में ज़्यादा ही रहे जितना हमने जिक्र किया कि खैर यो मोबाइल को वक्त है इंटरनेट को वक्त है या मरदमशुमारी भी ऑनलाइन रहेगी कितना ना कितना क्योंकि समाज में कुछ ऐसा लोग भी हुए जो लोगों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें तो हम देखा कि वे करागे बेचारे नकली इन्यूमरेटर बन के आ जाए वे उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लिया या OTP लिया क्या ऐसा कुछ है इसमें
1: ऐसा स्कैमरा ते बचना चाहिए,
0: जी
1: ते क्योंकि इसमें
0: या इसमें तम जिस पर तो फील्ड में चले ना आजकल क्या तुम ना बैंक की डिटेल लेनी पाए या कोई OTP वगैरह जरूरत
1: ना
0: पाए
1: ना कोई भी
0: अच्छा
1: नहीं,
0: कुछ नहीं
1: कुछ भी नहीं हमने जरूरत
0: जी जी
1: इसमें,
0: जी
1: इसमें खाली हमने एक लास्ट के पर इनको मोबाइल नंबर जरूरत है,
0: जी
1: उसमें कोई OTP
0: नहीं
1: नहीं आता,
0: जी जी
1: तो ऐसा जरा फ्रॉडिस्ट है उनते बचना चाहिए,
0: जी जी
1: जरा OTP मांगी कभी भी OTP नहीं देनी चाहिए।
0: ठीक
1: जी,
0: यानी इस किस्म का भी लोग भी फील्ड में आए
1: हाँ जी बिल्कुल है
0: जी जी
1: हर, क्योंकि समाज के भी देखो जाए कि कुछ अच्छा लोग भी हैं तो कुछ
0: जी
1: ऐसा लोग भी हैं जिड़ा दूजा ना नुकसान पहुंचाने की
0: ठीक
1: कोशिश करें,
0: जी
1: ऐसा लोग भी हैं समाज के
0: जी
1: बीच
0: जी
1: जिड़ा थारा तो OTP लेके
0: जी
1: थारा बैंक अकाउंट है ना खाली कर।

0: जी
1: उस वजह से इन चीजें से बचना चाहिए।
0: यथा कहने का मतलब है कि
1: एक
0: इस
1: ऐसा
0: किस्म को कोई अगर आदमी आया जो बैंक डिटेल ले रहा हो या ओटीपी आ रहा हो, बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: वो स्कैमर है।
1: बिल्कुल स्कैमर है।
0: जी,
1: उसने का भी आप डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए।
0: ठीक
1: तो बिल्कुल अपना जो कंसर्न है, जो भी बंदो आवेगो
0: जी
1: वो तमना अपनी पहचान करावेगो पहले।
0: जी
1: वो कहेगो कि फलानो बंदो,
0: मतलब
1: और
0: आपने कहीं
1: बाद
0: पता चला को आम आदमी ने कहीं पता चला को कि यो
1: एक कार्ड
0: एसएसएस
1: वेगो
0: करने लगो। अच्छा
1: एनुमरेटर को एक कार्ड वेगो
0: ठीक
1: बाजार उसको कार्ड वेगो
0: जी
1: वो कार्ड देखेगो, कार्ड दस्यो जैसा
0: जी
1: अगर तो किसी ने शक भी आ जाए
0: जी
1: तो वैसे भी देखा जाए कि मारा जेड़ा आपड़ा एनुमरेटर जेड़ा आजकल काम करने लगा
0: जी
1: वे आपड़ा इलाके के बीच काम करने
0: ठीक
1: लगा, क्योंकि
0: लोकल बंदा
1: लोकल लोकल बंदा
0: जी
1: लोकल बंदा करने लगा काम, बाहर को कोई आगे कर दो नहीं,
0: मतलब कम से कम जरा ये
1: कम
0: हमारा एनिमेटर बस्ती में चले लोकल सेड़े
1: बिल्कुल
0: जी
1: चाहे 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर, क्योंकि हर एक बंदो ऐसा सियाने सियाने
0: ठीक
1: आपड़ा इर्द गिर्द के बीच, क्योंकि देहातों की यो एक बड़ी सिफत है
0: जी
1: कि हम 4-5 किलोमीटर के सर्कल के बीच हर एक बंदा ना सियाण जा,
0: ठीक
1: यो एक बड़ो एक
0: जी
1: मारा है। तो इस वजह से जो भी एक लोकल बंदो आवेगा थारे को एनिमिनेटर
0: जी
1: तो वो तो हम ना इसका बारा के बीच
0: उसका कार्ड वैगो या
1: कार्ड
0: आर्डर वैगो ना
1: आर्डर वैगो बाजाबता तरीका ना
0: जी
1: वो थारी सेंसस करेगा तमाम
0: जी
1: अपनी जितनी पूरी डिटेल है
0: जी
1: वे सारी डिटेल उसने परफेक्ट दी हो
0: जी। मुनीर अहमद खान साहब तमने सेंसस के हवाले ना तफसीलन जानकारी दी थी, अपनो कीमती वक्त दी तो थारो बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। शुक्रिया
2: जी। सामीन तमने इंटरव्यू सुनियो, महाराज का मेहमान मुनीर अहमद कालस और इना के ना गलबात की मोहम्मद यूनुस कालूखेल साहब हो रहा। सामीन मरदमशुमारी ते मालूम हुआ है कि मुख्तलिफ इलाका में खवानदगी की शरह की है, यानी लिटरेसी रेट की है, कितना बच्चा स्कूल जाएँ, कितना बच्चा तालीम ते महरूम है। इन मालूमात की मदद ना हुकूमत नवा स्कूल कायम कर सकें, उसातिज़ा की तादाद बढ़ा सकें और तालीमी मियार ना बेहतर बनाने के वास्ते मौसर इकदाम कर सकें। इसके अलावा आला तालीम और फ़नी तालीम का फ़रोग के वास्ते यानी सिकल एजुकेशन का फ़रोग के वास्ते भी मरदमशुमारी का इदाद शुमार इंतहाई अहम हुए। इसी तरह मरदमशुमारी ना आबादी की उम्र, सेहत की सूरत हाल, माजूरी और दीगर मुतलका मालूमात हासिल हुए। इन एदाद शुमार की बुनियाद पर हकूमत सेहत का मराकज, अस्पताल, तिबी अमला और अदवायात की ज़रूरत को तयन करे। वबाई अमराज ते निमटन और सेहत आमा का प्रोग्रामा की मनसूबाबंदी में भी मरदमशुमारी कलेदी किरदार अदा करे। मरदमशुमारी के जरिए ये मालूमात हासिल हुए कि कितना लोग मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, कितना बेरोजगार हैं और किन इलाका में रोजगार का मौका काटें। ये मालूमात हकूमत ना रोजगार पैदा करन, सनअती तरक्की ना फरोग देन और गुरबत का खात्मा के वास्ते मौसर प्रोग्राम तैयार करन में मदद दे। मरदमशुमारी कमजोर और पसमानदा जात तबकात, दर्ज फहरिस्त जात यानी कि शेड्यूल कास्ट, दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी कि शेड्यूल ट्राइब, खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और मजूर अफराद की दुरुस्त तादाद और सूरतहाल फराम करे। इन मालूमात की बुनियाद पर हकूमत खसूसी फलाई प्रोग्राम और तरक्याती मनसूबा तैयार करे ताकि समाज के तमाम तबकात ना एक जिसो मौको फराम कियो जा सके। सामीन मरदमशुमारी 2027 माह जात के मुतलक मालूमात भी जमा की जाएंगी। इस नाल मुख्तलिफ समाजी तबकात की आबादी, तालीमी हालत, माशी हैसियत और तरक्याती जरूरियात को बेहतर अंदाजों लाया जा सकेगो। ये मालूमात समाजी इंसाफ, मसावात और पसमानदा तबकात की तरक्की के वास्ते पालसी साजी में महाविन साबित होंगी। मरदमशुमारी के नतज इंतखाबी हलकों की हदबंदी यानी कि डिलिमिटेशन और अवामी नुमाइंदगी का तयन में अहम किरदार अदा करें। आबादी में तब्दीली के मुताबिक हलकों की तश्कील नौ की जाए ताकि हर शहरी ना मसावी नुमाइंदगी हासिल हो सके। इसी तरह मरदमशुमारी जमहूरी निज़ाम ना मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करें। मरदमशुमारी से मालूम हुआ है कि कितना लोग शहर में और कितना देहात में रहें। इसना शहरी आबादी में बादो नकल मकानी और बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत को अंदाजा लाया जा सके। हकूमत इन मालूमात की बुनियाद पर स्मार्ट सिटी मनसूबा, दही तरक्याती प्रोग्राम और बुनियादी ढांचा की तामीर के वास्ते मनसूबाबंदी करे। भारत का कबायली, पहाड़ी और सरहदी इलाकों की तरक्की के वास्ते दुरुस्त एदाद शुमार इंतहाई ज़रूरी हैं। मरदमशुमारी 2027 उन इलाकों की आबादी, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की सूरतहाल का बारे में मुस्तनद मालूमात फराम करेगी। इस ना हकूमत ना इन इलाकों के वास्ते खसूसी तरक्याती प्रोग्राम तरतीब देने में मदद मिलेगी। इसी तरीका पर सैलाब, जलजला, वबाई अमराज और दीगर कुदरती आफात के दौरान आबादी के मुतालिक दुरुस्त मालूमात इंतहाई अहम हुए। मरदमशुमारी हकूमत ना हंगामी सूरतहाल में इमदादी सरगर्मी, वसाइल की तकसीम और बहाली का मनसूबा का ना मुअसर अंदाज में नाफिज करने में मदद फराम करे। जम्मू कश्मीर जैसा खिता के वास्ते मरदमशुमारी 2027 की अहमियत मजीद बच जाए। इस ना آبادی کا رجحانات قبائلی برادری

0: समीन आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी। यह आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब गोजरी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।
3: सामीन आदाब, 5:50 हो गए हैं। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी खबर नाल हूं रियाज अहमद बिजाड़। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। पिछला 12 के दौरान हुकूमत ने नौजवाना कालसीरियों और जमींदारा ना बाख्तियार बनाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर तमीर हो रही जोजला सुरंग आज आर पार हो गई। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, एल जी मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेशरफ्त ना लद्दाख और जम्मू कश्मीर वस्ते दितो खासी अहमियत आलो करार। तय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुंशियात मुखालिफ सरगर्मी जोर नाल जारी। उन खबरां की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहो जे हुकूमत ने पिछले 12 के दौरान मुल्क का नौजवाना कारसीरियों और जमींदारा ना बाख्तियार बनाने की कोशिश में काई कसर नहीं रखी और जमींदारा ना बाख्तियार बनाने की कोशिश में काई कसर नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहो जे 1.4 बिलियन शहरियों की दुआना और नेशन फर्स्ट जज्बा के तहत हुकूमत एतमाद, तरक्की और अवामी बहबूद का मंत्र पुरकारबंद है। वजीर आजम ने कहो जे इन बेलोस काविशों का नतीजा में भारत ने आलमी सतह पर अपनी एक नई शिनाख्त कायम की है। उन्होंने कहो जे हुकूमत खिदमात, बेहतर हुक्मरानी और तरक्की का नया मनाजिल तय करती रहेगी। इसी दौरान वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली 12 की हुकूमत की तारीफ करता कहो जे वजीर आजम की बेमिसाल कोशिशों नाल भारत तरक्की की एक नई राह पर है और इस मुद्दत के दौरान तरक्याती अमल म्यार की नई मंजिला तक पहुंचने के नाल नाल लोगों का म्यार हयात में काफी बेहतरी आई है। एनडीए की 12 की हुकूमत के दौरान आम लोगों की बहबूद वस्ते मुख्तलिफ सेक्टर की कई स्कीम शुरू की गई जिन नाल आम लोगों ने बड़ा पैमाना पर फायदा लियो। खास तौर नाल पीने का पानी और आपाशी सहूलियात की तरफ खसूसी तवज्जा दी गई। एक आम शहरी का तासर।
4: मेरा नाम अब्बास मजीद है और मैं अनंतनाग में रहता हूँ। मैं एक फार्मर हूँ और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी गवर्नमेंट में हमें काफी फायदा हुआ। पीने के पानी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से जल जीवन मिशन जो है उसमें हमारे इलाके को वाटर सप्लाई स्कीम मिल गई, बल्कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन गए और नए नए जो पाइप्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए और आज हम इस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बन गया, नए नए पाइप्स जो है वो इंस्टॉल हुए। इसके अलावा जगह जगह पे हर किसी घर को जो है नल मिल गया और आज हमारे इलाके में कोई शिकायत नहीं है।
3: श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर तमीर हो रही जोजला सुरंग आज उरार पार हो गई। ब्रेक थ्रू को काम सिड़क शाहरा का मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुयो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और कई दूजा आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद था। मरकजी वजीर ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत उजागर करता कहो जे टनल की तकमील नाल लद्दाख का लोगों ना हर मौसम में आवाजाही की बेहतर सहूलियात होंगी और खित्ता की इकतसादी

0: समाजी तरक्की नवी बादो मिलेगो।
1: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख ले और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफ लाइन है, और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कम स्थितियों में यहां हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है, और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।
0: सुरंग की ब्रेक थ्रू देखने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उरार पार यूटीज का लोकन मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि टनल का मुकम्मल होना नासाजगार मौसमी सूरत हाल वाले लोकन आउन जाउन की सहूलियात दस्तियाब होंगी, और कश्मीर और लद्दाख में सियाहती सरगर्मी ना बाद मिलेगो और रोजगार का ज्यादा से ज्यादा मौका पैदा होगा।
2: कश्मीर और लद्दाख को सही मायने में साल के 12 महीने के लिए अब जोड़ दिया गया है। ये सपना यहाँ के लोगों ने बहुत वक्त से देखा था। इस टनल का यहाँ के लोगों पे की जिंदगियों पे कितना असर पड़ेगा, चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी से तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुंचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन में हमें एहसास करना मुश्किल होगा।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टनल की ब्रेक थ्रू ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीचकार राबता ना मजबूत करने और तरक्की ना म्यार की बुलंदियों तक पहुंचाने वास्ते जरूरी करार दितो। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस टनल पर 6,800 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहे हैं, और यह कश्मीर सूबा में गांधरबल जिला ना लद्दाख का द्रास इलाका ना जोड़ेगी, और यह टनल तमाम जदीद सहूलियात लैस होगी।
3: निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है, और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी।
0: इससे पहले आज सुबह श्रीनगर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़क और शाहरा का मरकजी वजीर नितिन गडकरी को इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर ना मुंशियात की लानत से छुटकारा दवाने वास्ते 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी जोरों नाल जारी है, और इस नासूर ना मुकाउन में का एक कसर बाकी नहीं रखी जा रही। अभियान के तहत हूं तक काफी कम किया गया है। मुंशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को पैगाम।
4: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर इस बदतना काबू करने वास्ते जरूरी इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों का ताल्लुक थे वादी का एक मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गनई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता क्यों।
5: हर एक बच्चा एक कीमती जान होता है। अगर ये ड्रग्स में मुब्तला होगा, ये खुद ही एक अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा परिवार होता है। ये सारा परिवार दर दर के ठोकरे खाते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस उस पे काम करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ भी आपको लगे कि कोई बच्चा ड्रग्स के साथ मुलव्वस है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि वो उन्हें सख्त से

0: कार्रवाई करे ताकि समाज में ऐसा नासूर पैदा ना हो।
1: सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में मुंशियात का मुजहर असरात के मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम कियो। इस मौका पर एसोसिएशन का सदर किफायत रिजवी ने नौजवान नस्ल ना इस बिदत ते दूर रखन और वालदेन और समाज की जिम्मेदारियां ना उजागर कियो। तकरीब पर मौलाना शौकत हुसैन केंग, डॉक्टर मुजफ्फर, मौलाना जी आर नूरी और आई जी पी कश्मीर वी के बर्दीवी ने भी खिताब कियो। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मुजाहिद आजादी भगवान बिरसा मुंडा ना उनका शहीद दिवस पर खराज अकीदत अदा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहो जे बिरसा मुंडा ने गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ काफी जद्दोजहद करन के नाल नाल पानी जंगलात और जमीन ना तहफुज देने वास्ते भी बेमिसाल काम किया। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अजीम कबायली शख्सियत और फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा जी ना उनकी यूनिया तिथि उनकी पुण्यतिथि पर खराज अकीदत अदा की हो। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कबायली तबका का हकूक की पासदारी करने वास्ते भगवान बिरसा मुंडा का रोल ना उजागर कियो। इसके नाली गोजरी खबरों का यू बुलेटिन मुक्यो। खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। देव इजाजत, रब रखो।
2: आकाशवाणी श्रीनगर, अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नाश होगा।

0: पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित

0: चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस आकाशवाणी श्रीनगर पेश प्रोग्राम गर्मी बाय हिंद खतर ये में वक्फ पात्र
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

خوش روی چانی خوی سوت گل گئی معطر یا رسول.

0: भारत ने भारत को आलमी इकतसादी ताकतों में मजबूत मकाम अता किया है और जामे और पायदार तरक्की की नई मिसाल कायम की है। समी वादी कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर का जमीनी राबता यकीनी बनाने की समत में आज गैर मामूली अहमियत का एक कदम उठाया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज जोजिला टनल मनसूबे में ब्रेक थ्रू को मुल्क के बुनियादी ढांचे की तरक्की का तारीखी संग मील करार देते हुए कहा कि इससे कश्मीर और लद्दाख के दरमियान साल भर बिला तातुल राबिता मुमकिन होगा। इस सिलसिले में मुनाकिद तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दिगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने मजीद कहा कि दुनिया की तवील तरीन दो तरफा सिंगल ट्यूब सुरंग लद्दाख के लिए लाइफलाइन साबित होगी, जिससे बर्फबारी के दौरान सफरी मुश्किलात कम होंगी और सियाहत, तिजारत और इलाकाई तरक्की को फरोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि मनसूबे की लागत मौसर मनसूबाबंदी के जरिए 1000 करोड़ रूपये से कम होकर 7000 करोड़ रूपये कर दी गई है, जिससे तकरीबन 5000 करोड़ रूपये की बचत हुई है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
1: 11649 फुट की बुलंदी पर हिमालय के पर्वतों के बीच एक अलामती धमाके से आज जोजिला टनल के जरिए वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने के अमल में एक अहम संग मील दर्ज किया गया है। यूं ये दिन भारत में सड़क ट्रांसपोर्ट की तारीख में गैर मामूली हैसियत रखता है। इन ख्यालात का इजहार सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज मिनी मरग में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। नितिन गडकरी ने 6800 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रही 13.153 किलोमीटर लंबी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टनल की इफाजत बयान करते हुए कहा कि इस ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने के लिए उन्होंने काफी पहल की ताकि लेह लद्दाख को साल भर जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मिलाया जाए, क्योंकि मौसमी सरमा में भारी बर्फबारी के बाईस ये खता 6 माह तक जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों से मुनकता रहता था। लिहाजा नई टेक्नोलॉजी बरोई कार लाकर सुरंग को आज बाजाबता तौर ओपन कर दिया गया। अलबत्ता उन्होंने 2028 तक जोजिला टनल को काबिल आमद रफ्त बनाने का हदफ मुकर्रर किया। नितिन गडकरी ने इंजीनियरिंग विंग, मेगा कंपनी और मकामी मजदूरों की काविशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने मनफी डिग्री दर्जे हरारत में यहाँ दिन रात काम करके इस मुश्किल काम को पाई तकमील तक पहुँचा दिया। मरकजी वजीर ने बताया कि इस टनल की तामीर से सियाहत के शोबे को फरोग मिलेगा, जिससे लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की, तजारत और माशी हालत मजीद उस्तवार होगी। नितिन गडकरी ने दर्जनों अहम तामीराती प्रोजेक्टों का तज़किरा करते हुए कहा कि उन पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा, जिससे कश्मीर में कन्याकुमारी तक सफर में आसानी होगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मुबारकबादी देते हुए कहा कि इस टनल के जरिए डिफेंस लद्दाख जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में रहने वाले लोगों को साल भर यहाँ आने जाने का मौका मिलेगा और इससे तवारीख के नए बाब दर्ज किए जाएंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मरकजी सरकार, खासकर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जोजिला टनल की तामीर वक्त की जरूरत थी, क्योंकि लेह लद्दाख के लोगों को मुल्क के दीगर हिस्सों, खासकर जम्मू कश्मीर से मुनकता होने से तकरीबन 6 माह तक तरह तरह के मुश्किल झेलने पड़ते थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब जोजिला टनल की तामीर से एक तो सफर आसान होगा और दूसरा इन लोगों को वक्त मजबूरी परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा। उन्होंने मरकजी वजीर से अपील की कि लेह लद्दाख में अब रेगुलर एयर सर्विस चालू किया जाए ताकि लोगों को मजीद दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस बीच मकामी लोगों ने मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें अब सोनमर्ग से गुमरी तक 2.5 घंटे का मुश्किल तरीन सफर तय करने में सिर्फ 45 मिनट दरकार हैं, जो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि जोजिला दर्रे के आर पार अब तक सैकड़ों इंसानी जानें जाया हुई। इस तकरीब में मेगा कंपनी के अफसर और कारगिल इंतजामिया के सिविल और पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहे।
0: रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौमी शाहरा 44 पर चिनैनी नाशरी रूट के लिए दो लेन वाली मुतवाजी टनल की मंजूरी पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई सुरंग से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी और सफर मजीद महफूज और आसान बनेगा। وہیں اس نے کشتواڑ کے لوگوں نے مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے اس اعلان

0: कर मकदम किया है कि वायलू सिंहपुरा टनल की टेंडरिंग इस साल अक्टूबर में कराई जाएगी। आबादी ने उम्मीद जाहिर की है कि मजकूरा टनल की तामीर का काम भी टेंडरिंग के बाद जल्द दरदस्त लिया जाएगा। इधर मरकजी वजीर ममलूकत बराए दिफा संजय सेठ ने आज जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में जेर तामीर एम्स प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी तवज्जो मरकूज की। एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट।
1: मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने आज जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में बन रहे एम्स का दौरा किया, जहां बीजेपी लीडरान के साथ साथ एम्स के अहदेदारों ने वजीर मौसूफ का पुरजबात इस्तकबाल किया। उन्होंने एम्स का दौरा करके जारी कामकाज की पेशरफ्त का जायजा लिया और वहां मुतलका अफसरान से तफसीली बातचीत की। इस मौके पर मुतलका अफसरान ने वजीर मौसूफ को जारी काम के मुतलिक तफसीली जानकारी फराहम की। बादशाह मीडिया के साथ बात करते हुए वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अमन इस्तेकाम और तरक्की के एक नए दौर का मुशाहिदा कर रहा है, जहां सयाहों की आमद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं वाजे कश्मीर में फिल्मी सनत की बहाली से वाजह तब्दील के आसार नजर आ रहे हैं। खत्ते के साथ अपनी तवील वापसी को याद करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि वो 70 की दहाई में कश्मीर का दौरा करके आए हैं, तहम वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कायदाना सलाहियतों से जहां मुल्क ने पिछले 12 वर्षों के दौरान नुमाया तरक्की हासिल कर ली है, वहीं जम्मू कश्मीर भी तरक्की की राह पर गामजन है और मुल्क से 30 लाख क्रिकेट बैट बरतानिया ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे ममालिक को बरामद किए जा रहे हैं। एम्स अवंतीपुरा के मामले पर बात करते हुए संजय सेठ ने कहा, अब कश्मीर के लोगों को बेहतर तबी सहूलियात के लिए चंडीगढ़ या दीगर रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एम्स चालू होने के साथ ही वादी के लोगों को बेहतर तबी सहूलियात घर की दहलीज पर फराह होंगी। सैरबिन के नुमाइंदे की जानिब से स्टेटहुड के मामले पर एक सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने बताया, रियासी दर्जे की बहाली को लेकर मरकजी हुकूमत वादा बंद है और सिर्फ मोदी हुकूमत ही स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर सकती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने नार्को टेररिज्म के हवाले से बात करते हुए कहा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क्यादत में मुल्क महफूज हाथों में है और सरहदों पर इंतहाई चौकसी बरती जा रही है और इस हवाले से तशवीश की कोई बात नहीं है। इस मौके पर बीजेपी के रियासी सदर सतपाल शर्मा, वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंदराबी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान, तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, सईद शाहबुद गुजर अंदराबी, निसार अहमद बट, मोहम्मद अजीब बट, सजाद रैना, अवतार सिंह त्राली और दीगर लीडरान भी मौजूद थे।
0: दिफा के मरकजी वजीर ममलुकत संजय सेठ का एम्स अवंतीपुरा का दौरा, शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर की जानिब से कल 10 जून से इम्यूनोकॉन 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। वाजिर है कि इम्यूनोकॉन इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी की सालाना कॉन्फ्रेंस होती है और कल से इसका 53वां शुमारा SKICC श्रीनगर में मुनाकिद किया जाएगा। इस सिलसिले में आज स्किम्स के ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस से फौरन पहले का वर्कशॉप मुनाकिद किया गया, जिसका थीम था सेहतमंद जिंदगी के लिए मुदाफती निजाम को समझना। आज सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग के बाहमी इश्तराक से स्कूल के ऑडिटोरियम में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान था इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन जेन नेक्स्ट। प्रोग्राम की सदारत एसोसिएशन के सदर किफायत हुसैन रिजवी ने की, जबकि अहम मुकर्रीन में आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी, मौलाना शौकत हुसैन केंग, डॉक्टर मुजफ्फर, मौलाना जी आर नूरी और एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जी एम वानी दिलशाद शामिल थे। मेहमानों का इस्तकबाल स्कूल की प्रिंसिपल समीना वानी ने किया, जबकि शुरका के सामने शुक्राने की तहरीक डॉक्टर रफीक मसूदी ने पेश की। शुपियां जिले से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा के वफ ने बताया कि 2023 में ATD यानी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के तहत जिले के कई असातिज़ा को दीगर जिलों में ट्रांसफर किया गया, ताहम बेशतर असातिज़ा को चंद माह के बाद ही वापस अपने जिले में लाया गया। लेकिन हैरत का मकाम है कि ट्रांसफर किए गए दीगर असातिज़ा 3 साल से वापस शुपियां जिले में तैनात किए जाने के इंतजार में है। मजकूरा असातिज़ा का कहना है कि वह अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और अपने सर्विस करियर के दौरान लद्दाख और तुलेल जैसे दुश्वार गुजारे इलाकों में भी ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें वापस शुपियां लाए जाने में लतुलाल बरता जा रहा है। असातिज़ा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उन्हें मजीद ताखीर के बिना वापस अपने जिले यानी शुपियां ट्रांसफर किया जाए। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे।

0: अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेवर एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बाबा नगरी वांगत जाकर वहां हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने आलिया पर हाजिरी दी। इस मौके पर सज्जादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद कियानवी के साथ साथ एमएलए कंगन मियां मेहर अली, एमएलए पापुर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान सज्जाद अहमद किचलू ने पंजर मड़वा के साबिक सरपंच और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक नायब सदर गुलाम हसन मलिक की वफात पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। वाजिर है कि गुलाम हसन मलिक आज इंतकाल कर गए। इधर गांधरबल से रहीम रिजवान की इतला कि आज कंगन के आरी गोरीपुरा गांव में दो कमसिन बच्चे बाबा कनाल में डूबकर जान बहक हुए। बताया जाता है कि 4 साल बच्ची आशिया दुख्तर मोहम्मद अमीन लोन और 6 साल बच्चा मोहम्मद इमरान वलद मोहम्मद इकबाल लोन नाले में फिसल कर डूब गए। मकामी लोगों ने दोनों बच्चों की लाशें बरामद की हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जिसकी सरबराही जी अनवार कर रहे हैं कि जिला यूनिट अनंतनाग के इंतखाबात आज मुनक्किद हुए। इंजीनियर महमूद अहमद वानी को सदर और एजाज अहमद वानी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने आज पुलवामा का दौरा किया और सर्किट हाउस पुलवामा में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी आबादी के मसाइल सुने और मुतालिक अफसरान को इन मसाइल का सद्देबाब करने की तलकीन की। आगा रूहुल्ला मेहदी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो दिल्ली में फकत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली नहीं बल्कि उन आईनी इख्तियारात की बहाली के लिए आवाज उठाएंगे जो जम्मू कश्मीर को हासिल रहे हैं।
3: मैं तो जाऊंगा ही और जाऊंगा 370 की बात करने के लिए, वो जाएंगे स्टेटहुड की बात करने के लिए। हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि हम 370 की लड़ाई लड़ें, अपने आईनी प्रोटेक्शंस की लड़ाई लड़ें जो आईने हमें प्रोटेक्शंस दी है। और मैं चाहूंगा, मैं तो जाऊंगा ही जरूर, मैं चाहूंगा उसके साथ साथ कि ये एक दिन का कोई स्टेटहुड के लिए कोई लोगों को खामोश करने के लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो, एक दिन का कोई इवेंट ना हो। ये एक मुनज्जम और मुसलसल एक जुदोजहद हो, न सिर्फ स्टेटहुड के बल्कि आईनी प्रोटेक्शन जो 2019 में हमें प्रोटेक्शन दिए थे उनकी वापसी के लिए एक मुनज्जम और मुसलसल जदोजहद, एक दिन का स्टेटहुड के लिए लोगों को खामोश करने के लिए कोई इवेंट ना हो। हमारे नौजवान जो विदाउट ट्रायल्स बने, 6-7 सालों से बने, जब तक वो जेलों में विदाउट ट्रायल्स बने वो बेइंसाफ है। जब उनके साथ इंसाफ होगा नतीजे में जो अमन होगा उसे अमन कहा जा सकता है और वो अमन होगा। जो जमीन के हकूक से महरूम किया जाता है, रोजगार के लोग हकूक से महरूम किया जाता है यहाँ के लोगों को, पुलवामा में ही आपने मिसाल देखी होगी कि शाली की फसल लगाने जब यहाँ के लोग निकले उनको उनके जमीन से महरूम रखने की कोशिश की। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, तो ये नाइंसाफी है। इसी तरह से रोजगार के मौके जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मखसूस थे वो रोजगार के मौके अब उनके लिए मखसूस नहीं है। रिजर्वेशन का मसला जब तक हल नहीं होगा ये नाइंसाफी है और नाइंसाफी के बुनियाद में खामोशी होती है, अमन नहीं होता। ये सब नाइंसाफियां जब खत्म ना हो, इनके अवज में जब इंसाफ ना हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तब तक परमानेंट अमन मुमकिन नहीं है। कोई भी अमन अगर परमानेंट हो चाहते हैं तो उस अमन के लिए शर्त यह है कि वो अमन जस्टिस पे कायम किया गया हो, अमन पे इंसाफ पे कायम किया गया हो और वही जो है

0: पर कूड़े करकट के ढेर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल कमेटी डोडा में मुस्तकिल बुनियाद पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है, बिल्कुल तैनात हैं, पर वो काम करने से मना कर रहे हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
1: गुज़श्ता कई हफ्तों से जिला डोडा की म्युनिसिपल कमेटियों का हाल इंतहाई अबतर है और म्युनिसिपल हुकाम की नाकिस कारकर्दगी की वजह से न सिर्फ तजारत पेशा अफराद बल्कि इन कमेटियों के वार्डो में रहाइश रखने वाली आबादी जगह जगह गंदगी के ढेर जमा रहने और सख्त तरीन अफूनत फैलने की वजह से मायूसी के शिकार हैं और बदबू और अफूनत में आए रोज इजाफे की वजह से लोग सरापा एहजाज हैं। खिताई चनाब की म्युनिसिपल कमेटी डोडा, म्युनिसिपल कमेटी बदरवा, म्युनिसिपल कमेटी ठाठी और गुंदो बलेस म्युनिसिपल कमेटी व इनके वार्डों में, बाजारों में, तजारती मराकज में, महाराजात के गली कोचों और इन इलाकों के रहायशी घरों के सामने कूड़ा किरकट गंदगी गलाजत के ढेरों से उठने वाली बदबू और फैलने वाली अफूनत इतनी ज्यादा है कि यहाँ से लोगों का गुजर बसर इंतहाई तकलीफ दह है। अब लोग यहाँ इन मुकाम से गुजरना बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ समझते हैं और लगता है कि कोरोना जैसी सूरत हाल अब यहाँ पैदा हो रही है, इसलिए कि यहाँ इन जगहों से गुजरना मास्क के बगैर महाल है क्योंकि म्युनिसिपल के आरजी सफाई कर्मचारियों ने कई हफ्ता कबल से काम छोड़ हड़ताल कर रखी है। मगर मुस्तकिल सफाई कर्मचारियों की तादाद दर्जनों में है मगर वो सफाई सुथराई का फरीजा अंजाम नहीं दे रहे हैं बल्कि म्युनिसिपल हुकाम ने उनको जमादारी व दीगर अमूर के लिए चार्ज दिया है जिसकी वजह से अब ये मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी झाड़ू उठाने और वार्डो में सेहत सफाई का फरीजा अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनकी तैनाती अभी तक सफाई कर्मचारी के तौर पर ही है। म्युनिसिपल कमेटी डोडा 17 वार्डों पर मुश्तमिल है मगर सिवाय 3-4 वार्डों को छोड़कर दिगर वार्डों में गंदगी के इंतहाई कूड़ा किरकट और आवारा माल मवेशी व जानवरों का गोबर हर बाजार में मौजूद है जिसके सबब आम लोगों, उम्र रसीदा बुजुर्गों, खवातीन, स्कूली बच्चों को वहाँ से गुजरना सख्त कौफत होती है और सिर्फ इंतजामिया के आला अफसरान के रायशी एरियाज में सफाई की जाती है। जिन इलाकों में ज्यादा गंदगी, गलाजत और उफूनत फैली हुई है उनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, नगरी तोंदवा मोहल्ला, फरीदिया मोहल्ला, अनवर आबाद आस्थान मोहल्ला, बस स्टैंड, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा मोहल्ला, शाह इरफान आबाद, शिनाल, डांडियन, मुंशी मोहल्ला, नेहरू चौक, बत्ती महला, हमदानपुर, अक्रम आबाद, बनडोडा व मंदर गली शामिल है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि म्युनिसिपल कमेटी डोडा में पिछले 3 साल से कोई मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात नहीं है। इसके
0: ये थे डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। हमारी कोशिश होगी कि हम इस मामले के ताल्लुक से डायरेक्टर लोकल बॉडीज जम्मू से कल के प्रोग्राम में बात कर लें। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर कि J&K प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि वो 1 जुलाई से आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत मरीजों को हासिल होने वाली सहूलियात फराहम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हुकूमत के पास उनके बकायाजात खासे बढ़ चुके हैं और हुकूमत उनके बकायाजात की अदायगी करने में लतलाल का मुजाहरा कर रही है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000255।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssa.gov.in।

0: तैयार बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि 1.4 बिलियन शहरियों की दुआओं की बदौलत और नेशन फर्स्ट जज्बे के तहत हुकूमत एतिमाद, तरक्की और अवामी बहबूद के मंत्र पर कारबंद है। वजीर आजम ने कहा कि इन बेलोस काविशों के नतीजे में भारत ने आलमी सतह पर अपनी एक नई शनाख्त कायम की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खिदमात, बेहतर हुक्मरानी और तरक्की के नए मनाजिल तय करती रहेगी। दरियासा वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली 12 साल की हुकूमत की सताइश करते हुए कहा है कि वजीर आजम की बेमिसाल काविशों की बदौलत भारत तरक्की की एक नई राह पर गामजन है और इस मुद्दत के दौरान तरक्याती अमल का मयार की नई मंजिलों को छूने के साथ साथ लोगों के मयार हयात में काफी बेहतरी आई है। एनडीए हुकूमत के 12 बरस की हुकूमत के दौरान आम लोगों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों की कई स्कीमें शुरू की गई हैं जिनसे आम लोग बड़े पैमाने पर मुस्तफीद हो रहे हैं। पीने के पानी और आपाशी सहूलियात की तरफ से खसूसी तवज्जो दी गई है। एक आम शहरी के तासरात।
1: मेरा नाम अब्बास मजीद है और मैं अनंतनाग में रहता हूँ। मैं एक फार्मर हूँ और हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी गवर्नमेंट में हमें काफी फायदा हुआ। पीने के पानी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से जल जीवन मिशन जो है उसमें हमारे इलाके को वाटर सप्लाई स्कीम मिल गई, बल्कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी बन गए और नए नए जो पाइप्स है वो इंस्टॉल कर दिए गए और आज हम इस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जल जीवन मिशन के तहत जो है पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन में हमारे इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बन गया, नए नए पाइप्स जो है वो इंस्टॉल हुए। इसके अलावा जगह जगह पे हर किसी घर को जो है नल मिल गया और आज हमारे इलाके में कोई शिकायत नहीं है।
0: और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समाप्त करें तबसिरा।
3: समय आदाब। आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मां। जून का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ खरीफ की फसल के लिए काश्तकारी की सरगर्मियाँ भी उरूज पर हैं। उम्मीद है कि इस साल की फसल को आने वाली कई शोबे को कई तरह की मुश्किलात का सामना है, मसलन पानी की कमी, वक्त पर दवाइयाँ न मिलना, गैर मयारी खाद का इस्तेमाल और मनफी मौसमी हालात वगैरह। मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद हमारा चंद बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है ताकि हमारी फसल खराब न हो। मसलन कीड़े मकोड़ों की वजह से फसल को नुकसान पहुँचना, जिसके लिए सही दवाइयों का इस्तेमाल जरूरी है। भरपूर फसल के लिए मयारी खाद का इस्तेमाल और नकली खाद से बचना जरूरी है, जबकि फसल की सही देखभाल भी इतनी ही जरूरी है। मुनासिब काश्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल के दौर में वक्त की अहम तरीन जरूरत बन गया है, जो एक बेहतर और भरपूर फसल हासिल करने के जिम्न में काफी मददगार साबित हुई है। हमें इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए ताकि हमारी जमीनें सोना उगलने के काबिल बन सकें। सरकार की तरफ से अगरचे जानकारी, क्रॉप इंश्योरेंस और माली मदद व तकनीकी जानकारी की सूरत में किसानों के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तियाब हैं, तहम मौसमियाती मार की सूरत में पानी की दस्तियाबी काफी अहम है। इस साल अंदाजा है कि मौसम रिवायत से हटकर काफी गर्म रह सकता है। ऐसे में महकमा आब रसानी को आज से ही मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि हंगामी सूरत हाल में किसानों को मुश्किल दरपेश न आए। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। 268 यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाप्त करें प्रोग्राम वादी की आवाज। इस वक्फे के बाद
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक

0: नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

पाकिस्तान को मौजूदा दौर में दाखिली और खारजी दोनों नवियत के चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ मौशी इस्तेहकाम के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त, सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी के तकाजे भी मुसलसल तवज्जो का मरकज है। ये दोनों अवामिल एक दूसरे को बराह रास्त मुतासर करते हैं। इलाकाई और आलमी हालात भी इस ताल्लुक़ को मज़ीद नुमाया बना रहे हैं। आलमी मौशी बहरान, जुग्राफियाई सियासी कशीदगी, तजारती तनाजात और तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव जैसे अवामिल कौमी सलामती और मौशी इस्तेकाम दोनों पर असर अंदाज हो रहे हैं। सामिन, अवामी एतमाद भी इस बाहमी ताल्लुक का एक अहम पहलू है। जब अवाम मौशी तहफ़ रोज़गार और बेहतर मयार ज़िंदगी महसूस करते हैं तो रियासती इदारों पर एतमाद में इजाफा होता है। इसके बरक्स मौशी मुश्किलात और अदम इस्तेकाम अवामी बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा सकते हैं। सामीन, कौमी सलामती और मौशी इस्तेकाम का बाहमी ताल्लुक एक ऐसी हकीकत की अकासी करता है जहां दोनों अनासिर एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं समझे जा सकते। सामीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और समाप्त करते हैं ये नगमा।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। सामिन, प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, गैर रस्मी मईशत या शेडो इकॉनमी से मुराद वो मौशी सरगर्मियां हैं जो सरकारी कवानीन, टैक्स निज़ाम और रियासती निगरानी के दायरे से बाहर अंजाम दी जाती हैं। ये सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी भी हो सकती हैं और बाज़ औकात कानूनी नवियत रखने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक में गैर रस्मी मईशत एक वसी और पेचीदा मसला बन चुकी है जो कौमी मईशत, रियासती महसूलात और हकूमती मनसूबा बंदी को मुतासर कर रही है। सामिन, पाकिस्तान में गैर रस्मी मईशत का जन्म खासा बड़ा समझा जाता है। छोटे कारोबार, गैर रजिस्टर्ड तजारती सरगर्मियाँ, नकद लेन देन और बाज़ गैर दस्तावेजी मौशी मामलात सरकारी निज़ाम से बाहर चल रहे हैं। इस सूरत हाल के बायस मईशत का एक बड़ा हिस्सा रियासती निगरानी और टैक्स नेट से दूर रहता है जिससे मालियाती निज़ाम पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। समिन, गैर रस्मी मईशत के फैलाव की एक अहम वजह टैक्स निज़ाम पर कम एतमाद और पेचीदा मालियाती जवाबित हैं। बहुत से अफराद और कारोबारी हलके रस्मी निज़ाम में शामिल होने के बजाय गैर दस्तावेजी तरीकों को तरजीह देते हैं। इस रुझान ने मईशत के एक बड़े हिस्से को रियासती रिकॉर्ड से बाहर रखा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी, इंतजामी पेचीदगियों और कारोबारी जवाबित की दुश्वारी भी इस मसले को बढ़ा रही है। जब कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन, लाइजनिंग और कानूनी तकाजे पेचीदा महसूस हो तो बहुत से अफराद गैर रस्मी जराए इख्तियार करते हैं। यूं गैर रस्मी मईशत मुसलसल वसत इख्तियार करती जा रही है। समीन, पाकिस्तान में बेरोजगारी और महदूद मौशी मवाके भी शेडो इकोनॉमी के फरोग में किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में बहुत से अफराद ऐसे शोबों में काम करते हैं जो सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होते। नतीजतन लाखों अफराद गैर रस्मी मौशी सरगर्मियों से वाबस्ता हो जाते हैं। गैर रस्मी मईशत का सबसे बड़ा असर रियासती महसूलात पर पड़ता है। जब बड़ी तादाद में कारोबारी सरगर्मियां टैक्स निज़ाम से बाहर हों तो हुकूमत को महसूलात की मद में नुकसान उठाना पड़ता है। रियासती मनसूबा बंदी भी इस सूरत हाल से मुतासर होती है। जब मईशत का बड़ा हिस्सा दस्तावेजी शक्ल में मौजूद न हो तो हकीकी मौशी सूरत हाल का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे पॉलिसियों की मौसरियत भी मुतासर होती है। गैर रस्मी मईशत मालियाती शफाफियत के लिए भी एक चैलेंज है। गैर दस्तावेजी लेन देन और नकद मईशत के फरोग के बायस मालियाती निज़ाम की निगरानी मुश्किल होती जाती है। इस सूरत हाल में मईशत के मुख्तलिफ पहलू रियासती कंट्रोल से बाहर रहते हैं। सरमायाकारी के माहौल पर भी इसके असरात मुरतब हैं। जब रस्मी और गैर रस्मी कारोबार एक ही मार्केट में काम करते हैं तो मुसाबकत का तवाजुन मुतासर होता है। टैक्स अदा करने वाले कारोबार और गैर दस्तावेजी कारोबार के दरमियान फर्क मौशी सरगर्मियों को पेचीदा बना देता है। गैर रस्मी मईशत मजदूरों के हकूक के हवाले से भी अहम मसला है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद अक्सर कानूनी तहफ़ समाजी तहफ़ और दीगर सहूलियात से महरूम रहते हैं। नतीजतन लाखों कारकुन गैर यकीनी मौशी हालात में काम करने पर मजबूर हैं। सामिन, पाकिस्तान के मौशी माहरीन के मुताबिक गैर रस्मी मईशत की मौजूदगी बाज़ औकात मौशी सरगर्मियों को जारी रखने में किरदार अदा करती है, मगर इसका मुसलसल और वसी पैमाने पर फैलाव रियासती निज़ाम, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और इक्तसादी शफाफियत के लिए पेचीदगियाँ पैदा करता है। यही वजह है कि ये मसला सिर्फ इक्तसादी नहीं बल्कि इंतज़ामी और हकूमती नवियत भी इख्तियार कर चुका है। समिन, गैर रस्मी मईशत यानी कि शेडो इकॉनमी और रियासती चैलेंजेस एक ऐसे पेचीदा ताल्लुक की अकासी करते हैं जहां मौशी सरगर्मियों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी निज़ाम से बाहर मौजूद है। इस सूरत हाल के असरात रियासती महसूलात, पॉलिसी साजी, मालियाती शफाफियत और मौशी इस्तेहकाम पर नुमाया तौर पर मुरतब हो रहे हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान में गैर रस्मी मईशत पाकिस्तान की इक्तिसादी हकीकत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जबकि रियासत

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामीन, मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात हमेशा अवामी तवज्जो का मरकज होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ सियासी क़यादत के इंतखाब का अमल होते हैं बल्कि अवाम के मसाइल, उम्मीदों और मुस्तकबिल की सिमत का तायुन भी करते हैं। हर इंतखाबी दौर में सियासी जमातें तरक्की, रोज़गार, बेहतर तर्ज हुकुमरानी और अवामी फलाह के मुख्तलिफ वादे करती हैं। ताहम इंतखाबी नारों और ज़मीनी हकाइक के दरमियान मौजूद फ़र्क अक्सर अवामी मुबाहिस का अहम मौजू बन जाता है। यही वजह है कि इंतखाबात के दौरान अवाम की तवक्कुआत और अमली सूरत हाल के दरमियान ताल्लुक का जायज़ा लेना ज़रूरी महसूस होता है। सामने इंतखाबी मुहिमात में अवामी मसाइल को नुमाया हैसियत दी जाती है। सियासी जमातें सड़कों, सेहत, तालीम, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के वादे करती है। अवाम भी इन वादों को अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली की उम्मीद के तौर पर देखते हैं। खसूसन नौजवान तबका रोज़गार, बेहतर तालीमी मवाके और तरक्याती मनसूबों से मुतलिक ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करता है। सामिन, पीओके की सियासत में तरक्याती मनसूबे हमेशा एक अहम इंतखाबी मौजू रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत, तवानाई और मकामी

तरक्की के मंसूबों को अपनी कामयाबियों या मुस्तकबिल के प्रोग्रामों के तौर पर पेश करती है। ताहम आवाम के एक हल्के में ये एहसास भी पाया जाता है कि तरक्याती वादे इंतखाबी मुहिमात तक महदूद रह जाते हैं और उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो पाता। रोजगार का मसला भी अवामी तवक्कुआत में नुमाया मकाम रखता है। नौजवान आबादी में इजाफे के साथ मुलाजमतों के मवाके की जरूरत बढ़ रही है। इंतखाबात के दौरान रोजगार के हवाले से मुख्तलिफ ऐलानात सामने आते हैं, लेकिन अमली तौर पर बेरोजगारी और महदूद मौशी मवाके अब भी एक अहम चैलेंज के तौर पर मौजूद है। सामी तालीम और सेहत के शोबे भी इंतखाबी मुबाहिस का हिस्सा बनते हैं। अवाम बेहतर तालीमी इदारों, मयारी तिब्बी सहूलियात और बुनियादी खिदमात की फराहमी की तवक्कु रखते हैं, लेकिन कई इलाकों में सहूलियात की कमी और वसाइल के मसाइल अब भी मौजूद हैं। सामीन, सियाहत मकबूजा कश्मीर की मईशत का एक अहम शोबा समझी जाती थी। इंतखाबी मुहिमात में सियाहती तरक्की, रोजगार के मवाके और मकामी मईशत को मजबूत बनाने के दावे किए गए हैं। ताहम जमीनी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मनसूबा बंदी और सहूलियात के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। जमीनी हकायक का जायजा लिया जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की की रफ्तार यकसां नहीं दिखाई देती, जबकि दीगर इलाकों में अवाम अब भी बुनियादी जरूरियात के मसाइल का सामना कर रहे हैं। ये अदम तवाजुन इंतखाबी वादों और अवामी तरजीहात के दरमियान फर्क को नुमाया करता है। समिन, सोशल मीडिया ने भी इंतखाबी माहौल को तब्दील कर दिया है। अब अवाम सियासी जमातों के वादे, कारकर्दगी और बयानात का ज्यादा करीब से जायजा लेते हैं। इसके नतीजे में अवामी शऊर में इजाफा हुआ है और सियासी कयादत पर जवाबदेही का दबाव भी बढ़ा है। नौजवान वोटर्स इस इंतखाबी अमल में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो रिवायती सियासी नारों के बजाय अमली कारकर्दगी, रोजगार, तालीम और जदीद तरक्याती मंसूबों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इस रुझान ने इंतखाबी सियासत की नवियत पर भी असर डाला है। सामिन, मौशी मुश्किलात और महंगाई के असरात भी अवामी तवक्कुआत को मुतासर कर रहे हैं। लोग ऐसे इकदामात और पॉलिसियों की उम्मीद रखते हैं जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी में आसानी पैदा कर सकें। इंतखाबी अमल के दौरान अवामी उम्मीदें अमूमन बुलंद होती हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद कारकर्दगी और नतायज की बुनियाद पर इन तवक्कुआत का जायजा लिया जाता है। जब वादों और अमली नतायज में फ़र्क महसूस हो तो अवामी एतमाद मुतासर होता है और सियासी निज़ाम के बारे में सवालात पैदा होते हैं। यही फ़र्क इंतखाबी सियासत को एक मुसलसल अवामी और सियासी बहस का मौजू बनाए हुए हैं, जहां अवाम की तवक्कुआत और अमली नतायज एक दूसरे के मुकाबल दिखाई देते हैं। सामीन, आइए अब प्रोग्राम के आखिर में समाप्त करते हैं एक और नगमा।

0: J&K मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन श्रीनगर में और जिनका ओहदा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल विद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड प्रेजेंटली एट SMC श्रीनगर वो हैं इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट। इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस खसूसी प्रोग्राम सीरीज में खैर मकदम है सर।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया है।
0: सर, इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, इस बात का इदराक है हम सभी लोगों को, हम सभी सामईन को, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इंजीनियरिंग कम्युनिटी का, जो पब्लिक वेलफेयर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हेल्थ केयर है इंजीनियरिंग का, इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट है और ट्रांसपोर्टेशन, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है, प्रोजेक्ट जो आजकल के दौर का फोकस है, क्योंकि इंजीनियर्स जो इनके बारे में कहा जाता है, हम समझते हैं कि दे आर पिवोटल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे आर सेंट्रल टू एवरीथिंग। जो हम देखते हैं, चाहे अर्बन या रिमोट हिमालयन एरियाज हों, हर जगह इंजीनियरिंग कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है रोल ऑफ इंजीनियरिंग कम्युनिटी पब्लिक वेलफेयर में, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें। सर
1: जनाब तारिक साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में हमें इस नाचीज को मधु किया, तो इसके लिए बड़ा शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो इंजीनियर्स का रोल है वो यूनिफाइड है, यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर आप इंडिया की, भारत की बात करेंगे, यहां का रोल डिफरेंट था बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री एट। तो उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ आप फोकस करेंगे जहां का हम, तो इस रीजन में इंजीनियर्स का भी डिफरेंट रोल है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट इज ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ इज क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ इज वेदर। तो स्पेशली कश्मीर रीजन में तो इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट, जैसे आपने छुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
0: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैंने बात,
1: हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंजीनियर्स का रोल चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो, हाउस हो, अर्बन प्लानिंग हो, डिजास्टर हो, देर इज नो एस्पेक्ट इन द लाइफ जहां पे इंजीनियर्स का रोल। लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी उनकी डिमांड्स बढ़ती है, उतने रोड ब्रॉडर चाहिए, उतने फ्लाईओवर चाहिए, उतनी बिल्डिंग्स चाहिए, उतने हॉस्पिटल चाहिए, उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए, उतनी उनकी वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विद पॉपुलेशन इज डिमांडिंग, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियर्स का रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर हो गया तो वो कौम बहुत पीछे रह सकती है।
0: इंजीनियर साहब, जैसे रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात है, माउंटेनियस एरियाज में टेरेन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, हम देखते हैं इसको आप कैसे देखते हैं, और जो स्मार्ट अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग है, इन दो निकात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पहला जो आपने छुआ कि जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसे टेरेन पे रहती है, पहाड़ों पे रहती है, जहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां के इंजीनियर्स ने इतना अच्छा रोल अदा किया कि नंबर वन दे वायर इन प्रोग्रेस एंड गिविंग द कनेक्टिविटी टू द पीपल। उन्होंने लोगों को कनेक्टिविटी में किया, चाहे वो आप किश्तवाड़ देखो, डोडा देखो, राजौरी देखो, कुपवाड़ा देखो, हंदवाड़ा देखो, फार फ्लंग एरियाज जो जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उसमें इंजीनियर्स का बहुत रोल रहा एज पर द रोड कनेक्टिविटी। दूसरा तारिक साहब, आप
0: स्मार्ट अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग का
1: देखो, देखिए तारिक साहब, जम्मू कश्मीर एक ब्यूटीफुल एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे टूरिस्ट की डिमांड भी फुलफिल करनी पड़ती है
0: जी।
1: उसके मतलब इंजीनियर्स का रोल, चाहे वो रोड हो, वाटर हो, केबल कार हो, बाकी चीजें हो, कनेक्टिविटी हो, उनको पूरा अट्रैक्ट करने के लिए इंजीनियर्स का भी रोल बन, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द डिप्लीटिंग द सोर्स विच आर ऑलरेडी वी हैव। सो उनको मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स का स्मार्ट सिटी अर्बन प्लानिंग में इतना बड़ा रोल कहीं नहीं है जितना टूरिस्ट स्पॉट, जैसे जम्मू कश्मीर एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द इंडिया है, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, इनका भी यहां पर रोल बनता है
0: जी। तो सर, रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो लिए जाते हैं हाथ में, या इसी तरह हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इसमें किस तरह का मतलब आप देखते हैं? इंजीनियर का बहरहाल रोल है इसमें, आम लोगों के जहन में यह होता है कि हमें मकान बनाना होता है, अब तो एक अवेयरनेस आई कि आर्किटेक्ट होना चाहिए। आप किस तरह से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और हॉस्टल और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने में किस तरह का इनपुट रहता है ओवरऑल इंजीनियर्स का, जो आपके डिफरेंट विंग्स हैं, इसको गवर्नमेंट किस तरह से लेती है, और आप एज एन एक्सपर्ट, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है?
1: एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, कि जहां पे इंजीनियर्स का रोल है जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल कनेक्टिविटी में, इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप, यहां लोगों की डिमांड जब आती है थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव में आती है, तो लेजिस्लेटिव को खाब जो है वो कन्वर्ट करता है इंजीनियरिंग अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी में। सपोज जहां पे हॉस्पिटल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, वो किस टेरियन में हम बना रहे हैं, वहां अर्थक्वेक का कितना ख्याल रखना है, फ्लड का कितना ख्याल रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें इंजीनियर एक DPR बनाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब एक प्रोसेस के तरह थ्रू जाता है, इवेल्युएट हो जाता है टेक्निकली कि ये वैलिड है, इसमें ये फीजिबल, ये ऑप्टिमल डिजाइन में, इवेल्युएशन के बाद तो उसी को चूज करके उसी DPR के باضابطہ پیپر بنتے ہیں اور آن لائن آج ٹینڈرنگ ہے, آن لائن ٹینڈر کے بعد اس

0: उसी ख्वाब को जो लोगों ने बेसिकली बुना है और लेजिस्लेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ, इंजीनियर इसको कन्वर्ट करता है ऑन द ग्राउंड इन अ टेक्नोलॉजी।
1: इंजीनियर फिरदौस साहब, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आरएनबी के हैं, जल शक्ति है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और मैकेनिकल और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग जैसे हैं, ये तो बिल्कुल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज पे हेविली डिपेंडेंट हैं। ये कैसे कोप अप किया जाता है? इतना बड़ा काम है और कितना इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, या किस तरह की, मतलब आज के इस मॉडर्न टाइम्स में एज ऑन डेट जो हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिस्पेंसिबल बन गया है कि भाई नहीं हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स एट ग्लोबल लेवल, क्लाइमेट चेंज है, बाकी चीजें हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो है या आप जहां पे काम जिस तरह से भी हो रहा है, कैसे इसको एंश्योर किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो और हमारा जो काम है वो सारे निकल रहे?
0: एग्जैक्टली, यहाँ के जो इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत ओल्ड है, दे हैव अ लेगेसी। यहाँ पे बड़े टाइकूनस निकले हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बाजाबता बना है, एक पीडब्ल्यूडी मैनुअल बना है जिसके तहत काम हो रहा है, उसमें जेई एस्टिमेशन कर रहा है, प्रॉपरली साइट पे जा रहा है, उसके बाद टेक्निकल सेक्शन उसका एवेल्युएट कर रहा है, उसके बाद टेंडरिंग हो रही है, उसके बाद टेंडरिंग के बाद एग्जीक्यूशन में पूरा सुपरवाइज मॉनिटर हो रहा है। इसमें फार फ्लंग एरियाज को भी जाना पड़ता है फ्रॉम योर ऑफिस इंजीनियर्स, वो एग्जर्ट करके 24/7 इन दिनों वो ये नहीं डिसाइड करते हैं कि 10-4 ड्यूटी है, ताकि जो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपरली ये जो ये इनका टेक्निकल रोड मैप इन्होंने बनाया फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो कोशिश करते हैं वेदर विद सम प्रोजेक्ट सक्सीड, देर आर सम लिक्यूनास आल्सो रिमेनिंग, लेकिन मेजॉरिटी में चाहे वो पावर सेक्टर हो, जैसे आपने मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग, जब कोविड आया तो मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ऑक्सीजन प्लांटों की इतनी बेहतर की जम्मू कश्मीर में कि इट वॉज द ऑनली यूटी वेर देर नॉट अ डेथ हैपन्ड बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, इट वॉज रियली अप्रिशिएबल। सो एक बाजाबते इंफ्रास्ट्रक्चर,
1: आम लोगों को इस बारे में पता नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग जी के इंजीनियरिंग डिवीजन से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, हम जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा कोविड में इतना काम हुआ या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, इस तरह की चैलेंजेस थे, और जाहिर है हर वक्त में चैलेंजेस रहते हैं। तो इसलिए जैसे अर्थक्वेक में कुछ होता है, इस तरह की खुदा ना खासा नागहानी आफात आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, फ्लड्स होते हैं, इसमें जितना रोल इंजीनियरिंग का, आवाम तक आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे?
0: मैं बेसिकली कहता हूं कि जब डिजास्टर आते हैं वी कैन नॉट प्रिवेंट देम, दे आर नेचुरल कॉलमिटीज, लेकिन हम मिटिगेट करते हैं लॉसेज। मिटिगेट करने में लॉसेज चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे वो उसके बाद रेस्टोरेशन हो, दोनों में, रेस्क्यू में भी मशीनरी एंड मैन लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है आज की पूरी दुनिया में, exactly. और जम्मू कश्मीर में भी, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स या ऐसी वाली इलेक्ट्रिकल सबों का रोल बनता है और वो रोल वो निभाते हैं बिकॉज डिजास्टर रेस्पॉन्स, इंजीनियर्स आर द डिजास्टर रेस्पॉन्स। उसके बाद जब उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, यू गिव देम हाउसेस, यू अगेन गिव देम रोड्स, जो फ्लाईओवर, इंजीनियर्स आर अगेन इन्वॉल्व। सो डिजास्टर मैनेजमेंट वी कैन नॉट थिंक विदाउट इंजीनियर्स, वी कैन नॉट थिंक विदाउट इंजीनियर्स एंड मशीनरी। मैं तो इस तनाजुर से कभी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकमेंड भी किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आप बाजाबता एस्टैब्लिश कीजिए थ्रू इंजीनियरिंग विंग्स, जो आजकल हो रहा है, इंजीनियर्स को इन्वॉल्व किया जाता है डिजास्टर में।
1: इंजीनियर फिरदौस साहब, अब वाटर और सैनिटेशन का इश्यू है, इसमें जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर जो है काफी इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जैसे हमारे जल जीवन मिशन है, रिमोट विलेजेस में काम है, वाटर सप्लाई स्कीम्स के बारे में है, फ्लड कंट्रोल है, इरिगेशन सिस्टम्स हैं, और जो हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग और पाइपलाइन डिजाइन है। पहले दो नुक्ते मैं आपसे उठाना चाहूंगा, ये जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन क्या है और जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं दूर दराज गांव में, देहात में, उनमें कैसे किया जाता है?
0: बेसिकली ये जल शक्ति जी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको पहले बोलते थे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,
1: जी
0: ये उनके डोमेन में आता है। उनके इंजीनियरों ने जो जल जीवन मिशन, जो भारत का एक मिशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन था
1: जी,
0: कि हर घर नल से पहुंचना चाहिए, इस मिशन में भी जम्मू कश्मीर के इंजीनियर पीछे नहीं रहे। देर इज ए हैवी प्रोग्रेस। आज मैक्सिमम एरियाज जहां पे पानी की बहता थी, या यहां की बात नहीं, या डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कुपवारा, टंगडार, उन एरियाज की जरूरत है जहां पे इंजीनियरों ने वाटर की कैपेसिटी भी इंक्रीज की और वाटर की अवेलेबिलिटी भी
1: सप्लाई हो गई कंप्लीट रेगुलर।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द डिपार्टमेंट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, दे आर वर्किंग सिटल ऑन इट, कि जहां पे फिर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स का ज्यादा रोल बनता है। कहीं कुबार वाटर सोर्स ग्रेविटी थ्रू नहीं चलता है तो वहां लिफ्ट सिक्यूम की जरूरत पड़ती है, जहां इलेक्ट्रो मैकेनिकल, जो मान लें कि एक लो हेड से हाई हेड को पानी चढ़ाना है,
1: exactly.
0: एक नीची लेवल से बड़े पहाड़ पे चढ़ाना है, तो मैकेनिकल मशीनरीज का इस्तेमाल होता है और वहां पे प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना डिजाइन, अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके उनको फिर डिस्ट्रीब्यूशन में फिर सिविल का रोल बनता है। कलेक्टिव एज ए टीम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इस जल जीवन मिशन में बहुत कामयाब हो चुके हैं। मैं वसूक से कह रहा हूं कि बहुत मेहनत की इंजीनियरों ने इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत इंप्रूव है वाटर स्कार्सिटी जो मंगेश।
1: तो फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन सिस्टम्स और ये जो हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग और पाइपलाइन डिजाइन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए, जैसे आपको पता है कि 2014 फ्लड हमारे आंखों के सामने है, 2014 फ्लड के बाद इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल
1: जी,
0: चाहे वो ड्रेजिंग हो, चाहे वो जैलिम हो, नालाज की हो, तो उनकी प्रोटेक्शन हो, बंड प्रोटेक्शन हो, इसमें इंजीनियर्स ने हमेशा रोल निभाया, दे बिकम एज एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट्स।

0: उन लोगों को अवेयर भी करते हैं कि आप ब्रिज नहीं होना चाहिए, कैसे करते हैं, एनक्रोचमेंट मत कीजिए, इनमें हमारे इंजीनियर जो भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है, सिविल है, मैकेनिकल है, वो लगे हुए हैं लोगों की बहबूदी के लिए कि ताकि दोबारा इन फ्यूचर ऐसा दोबारा न हो, 2014 जैसा फ्लड न हो। बट रेस्ट इट इज इन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बट इंजीनियर्स आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेल गोइंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज थिंग्स।
1: तो ये हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग और पाइपलाइन डिजाइन इसका मतलब क्या है?
0: ये एक स्कीम में होता है कि जब हम डाटा लेते हैं कि पानी कहाँ चढ़ाना है, इसकी कौन सी पाइप लगेगी, कौन सी डाया लगेगी, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, इसके ऊपर इंजीनियर बाजाबता डिजाइन के तौर पर चलता है और डिजाइन के बाद वही इंस्टॉल करता है। कि इसमें भी आज बड़ी वैरायटी आई है, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी हैज केम इन दिस इशू, कि आज बड़े मटेरियल डक्टाइल बाकी चीजें जीआई पाइप्स उनमें भी बड़ी वैरायटी आई है, उसमें भी इंजीनियर बाजाबता वर्ल्ड को और इंडिया के साथ पेज बाय पेज चल के यहां पर टेक्नोलॉजी बनकर।
1: तो इंजीनियर फिरदौस साहब, क्या आप इस नुक्ते पर ये कह सकते हैं कि ये जो काम है बहुत ही बारीक बीनी से किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है, एक प्लान के तहत, और डिजाइनिंग जो आप करते हैं एज एक्सपर्ट्स, तो इसमें वो सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है जो रिक्वायरमेंट है?
0: आज जितनी टेक्नोलॉजी सर है उतने उसके असरात भी हैं, वो डिमांड भी कर दी। आज डिजिटल जमाना है, आज हमारी जो टेंडरिंग है, बिलिंग, वो भी ऑनलाइन होती है, लोगों के जो मुश्किल है वो भी विद इन 5 मिनट, चाहे वो एलजी ग्रीवेंस सेल, सीएम ग्रीवेंस सेल, वो वहां पहुंचते हैं। तो उनके मुताबिक
1: सोशल मीडिया का जमाना है।
0: तो सोशल मीडिया के मुताबिक इंजीनियर ने भी अपने आप को अपडेट किया है अकॉर्डिंगली। दे आर लिविंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ, बट डोंट काज एनी पब्लिक इनकन्वीनियंस फॉर दिस हाइड्रोलॉजिकल और वाटर इश्यूज आर कंसर्न।
1: इंजीनियर साहब, एक असेसमेंट जो है, जनरली असेसमेंट आ रही है, एक्सपर्ट असेसमेंट भी है, पब्लिक ओपिनियन भी है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ओवर टोपोग्राफी है, टेरेन है, और डिफिकल्ट कंडीशन है, रोड, हाईवेज या पहाड़ी एरियाज हैं, मुख्तलिफ अलग अलग तरीके का टेरेन है, तो इसमें जो स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के हैं, बिकॉज जरूरत है इस बात की, क्योंकि स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, या एलिवेशन चैलेंज, या कुछ और बहुत सारी चीजें, यानी अनयूजुअल, अननेचुरल और अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, जैसे हम कैलेमिटीज आती हैं, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस चाहिए?
0: इसमें तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो हमारी है वो इस पर काम कर रही है, जैसे कि आपको स्नो क्लियरेंस का हम बताएंगे, पीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल जो हमारी विंग है, उन्होंने इतनी एडवांस्ड मशीनरी, जो मशीनरी एट पार विद जर्मनी है, यूरोप के साथ है, कि अगर पहले रोड कनेक्टिविटी जो अब स्नो फॉल होती थी तो शुपियन का या कुपवारा का बंदा श्रीनगर पहुंचने में उसको 6 घंटे लगते थे फिर रेस्टोरेशन में, आज इतनी क्विक मशीनरी अवेलेबल है, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंजीनियर्स के पास कि रोड मुझे नहीं लग रहा बंद हो रहा है। सिंपली देयर इज अ पॉज, पॉज तो होता है नेचुरल कॉलमिटीज के दौरान, उस पॉज में वो प्रिपेयर होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ रोड्स की, अगर आज खुदा ना खासा कहीं हो भी जाता है, कोई एवलेंची आ जाती है, मशीनरीज एंड इंजीनियर्स आर सो रेडी, सो फुली इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी कि वो उसी वक्त उसको रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं एंड पब्लिक डज नॉट सफर।
1: इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया।
0: शुक्रिया जनाब।
1: सामीन, इसके साथ ही इंजीनियरिंग शोबे से मुतालिक खुसूसी बातचीत का आज का पहला शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप अपना फीडबैक और अपनी आरा हमारे ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस खुसूसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
2: सामीन, ये था हमारा शोबे खबर का तैयार करदा ये खुसूसी प्रोग्राम। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार पेश होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन

0: खबरों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य की मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

0: 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलाव FM 71.5 MHz पेट समीन कशिर मौसी पेश आगाज मुश पेश कलामे मुनीर सरीबली पेश करन विजय कुमार मल्ला।

0: سمعین یہ اس کلام سمت میر پیش اس کران محمد اشرف گنائی.
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ.
2: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा.
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी.
4: सब्र रोशित सुलुम.
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में. मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए.
0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर. रात के 9:15 हो रहे हैं. अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा.

0: 42 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नज़रियात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इआदा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इआदा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल ज़ाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी इतवार के रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आज़म का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आज़म 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाज़े के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। ज़राए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। ज़राए ने यह भी कहा कि कम अज़ कम एक साल तक सोना न खरीदने की वज़ीर आज़म की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। ज़राए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की ज़मीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम ज़मीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निज़ाम को ज़मीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निज़ाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नज़रिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निज़ाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और ज़मीनी बंदरगाहों की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के क्याम को मंजूरी दे दी है। ये निज़ाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली ज़मीन पर कायम किया जाएगा। यह अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली ज़मीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तआवुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी

0: और रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की जानब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का अबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज़ रखी है। वीबीजी रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के निफाज के पेश नज़र रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूआत पर वसीतर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनक़द कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान ख्वातीन के लिए सेहत की देखभाल के निज़ाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मज़ीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सह फरीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ज़मीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निज़ाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। रात के 9:30 हुए हैं। समाप्त करें प्रोग्राम हम कलम एक वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर

0: अपने रास्ते को शिफ्ट करे, इसको सोशल मीडिया की तरफ लाए, मॉडर्न मीडिया की तरफ लाए, तो इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बेशक तश्वीशनाक है हमारे यहाँ खासकर, क्योंकि यहाँ इसको पढ़ा नहीं जाता, जैसा कि राज साहब ने कहा, सुना तो जाता है, शायरी को सुना तो जाता है, खासकर फिल्मों में इसका बहुत असर है। कितनी कोशिशों के बावजूद भी अभी जो हमारी फिल्में, चाहे उनका सर्टिफिकेट कुछ भी हो, सेंसर बोर्ड ने दिया, लेकिन होती तो वो उर्दू में ही हैं, जिसको हम उर्दू समझते हैं, और ख़ासकर गाने जो बहुत मकबूल होते हैं वो अब भी उर्दू के ही गाने हैं, चाहे आप उनको देवनागरी में लिख लीजिए या रोमन हिंदी में लिख लीजिए, रोमन उर्दू में लिख लीजिए, लेकिन वो उर्दू ही हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से इसकी सूरत हाल तश्वीशनाक तो इस हद तक है कि उर्दू की किताबें छापी भी बहुत कम जाती हैं, और जो शायर और अदीब अपनी किताबें छापते हैं वो अपना ही पैसा लगा कर छापते हैं, पब्लिशर बहुत कम मिलते हैं, और अपना पैसा लगाने के बाद भी लोग उन किताबों को खरीदते नहीं हैं, शौक ही नहीं है कि किताबों को खरीद कर पढ़ा जाए। ये सूरत हाल तो तश्वीशनाक ज़रूर है, लेकिन मेरे ख़्याल से उर्दू की नई बस्तियाँ भी बनी हैं, जैसे दुबई में भी है और कुछ और अरब मुल्कों में भी है, जहाँ उर्दू के बाकायदा मुशायरे होते हैं, इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं। एक ज़माने में जो बात होती थी, अगर हमें जज्बाती बात कहना होती थी, एहसासात की बात कहना होती थी, या पुरजोर तरीके से तकरीर करना होती थी, तो उर्दू का सहारा लेते थे। जब तक इसको सरकारी सरपरस्ती भी ना मिले, और जब तक लोगों का कम से कम एक तबका मोहब्बत से, दिल लगी से इसकी तरफ तवज्जो ना दे, तब तक इसका हाल इतना अच्छा नहीं लगता है, इम्कानात रोशन नहीं है। हो सकता है आगे हूँ, लेकिन मेरी बात यही है कि सोशल मीडिया की तरफ हम सब लोग ध्यान दें ताकि इसकी बेहतरी हो जाए।
1: डॉक्टर राशिद मकबूल साहब, आप खुद भी एक असर हाजिर के एक नौजवान शायर हैं, और साथ ही आपकी वाबस्तगी ये है कि आप मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं मीडिया। अभी जो मोहम्मद यूसुफ नारंग साहब फरमा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत और दकीक नुकता था कि अब किताबों की दुकानें हुआ करती थी, अब वो भी नहीं दिख रही है, वो कारी के दिख रही रहे। पर ज़िमनन मेरे दिमाग में एक बात आ गई सोशल मीडिया के हवाले से। हम अंग्रेजी अदब को, फ्रांसीसी अदब को, जो भी इंटरनेशनल अदब है, उसको हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर उनकी किताबें मौजूद हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, और आज का जो कारी है वो हार्ड बुक से अब सॉफ्ट कॉपी की तरफ चला गया है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उर्दू अदब के हवाले से खसूसन के जो हमारा लिटरेचर है उर्दू के हवाले से, वो कारी जो आप बेडरूम में पढ़ना पसंद करता है लाइब्रेरी जाने के बजाय, उसके लिए उर्दू में उतने प्लेटफॉर्म्स है नहीं, उतने वसाइल नहीं है, उस पर ज़रा आप गुफ्तगू फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन ज़िमनन जो उस्ताजी रफ़ीक राज साहब ने बात की, ओरल सोसाइटी लार्जली हमारी है, तो चूँकि ओरल सोसाइटी है, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसी वजह से सोशल मीडिया का जो नायरंग साहब फरमा रहे थे वो पावरफुल मीडिया बन गया है, बिकॉज ओरल सोसाइटी है। क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, ये ऑडियो विजुअल मीडिया है, तो लिहाजा ये ज़्यादा यानी सूट करता है हमारी नई ऑडियंस को, क्योंकि इसमें पढ़ने का वो कम है, उसमें सुनने और बोलने का जो है वो ज़्यादा है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है नॉलेज का इसमें। ये जो जनरेशन, अब मैं आपकी बात की तरफ आऊँगा, जो जनरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी हाल की जनरेशन है, ये डिजिटल जनरेशन है। हम सारे ही इधर जो बैठे हुए हैं, हम डिजिटल माइग्रेंट्स हैं, और हम बात उनकी कर रहे हैं जो डिजिटल नेटिव्स हैं। तो जो किताबों का मसला है, ये ग्लोबल मसला एक है, लाइक प्रिंट जो ट्रेडिशन एक था, प्रिंट का मीडियम जो था, वो ग्लोबली काम हो रहा है, और रफ्ता रफ्ता उसकी जगह डिजिटल मीडिया ले रहा है, ऑडियो विजुअल मीडिया ले रहा है। ہاں انگریزی کی صورت حال ہم سے بہتر ہے، یا باقی یوروپی زبانوں کا جو آپ نے ذکر کیا ان کی صورت حال ہم سے بہتر ہے، ہماری صورت حال پہلے ہی پسماندہ تھی، اور بہت سارے ہمارے مسائل جو ہے وہ دراصل اردو

जमाने में जब सोसाइटी मुकम्मल तौर पर ओरल थी तो अच्छे अदब और अहम शोरा को ही अहमियत मिलती थी। मीडियोक्रिटी को कोई पूछता नहीं था। मीडियोक्रिटी और आला अदब तख्लीक करने वाले के दरमियान जो तमीज़ थी वो वाज़ह थी, वो दिखाई देता था। लेकिन आज के डिजिटल दौर ने ये तमीज़ ख़त्म कर दी है। आज मीडियोक्रिटी को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है।

0: लिखने वाले हैं वो पसंद भी नहीं करते हैं कि इस मीडिया क्रिटिक के बाजार में अपनी अच्छी चीज़ों को
1: डाल दें,
0: घूम कराते हैं, वो उस पर डालते ही नहीं, इसलिए वो और भी बैक बर्नर पर या पस पुश डाल दिए जाते हैं। ये एक खराब। दूसरी खराबी हमारी उर्दू की ये है तख्लीकी अदब की, कि सबसे ज़्यादा हिस्सा उर्दू के तख्लीकी अदब जो है वो शायरी का है। शायरी दो तरह की है, एक बहुत ही आला और तख्लीकी सतह की शायरी है और एक अवामी शायरी, यानी वो जो स्टेज पर सुनाई जाती है और अभी एक ही मिसरा पढ़ा जाता है, दूसरा मिसरा पब्लिक पूरा कर देता है, यानी इतनी पार्टिसिपेशन होती है सुनने वाले और बोलने वाले की। और ये मीडिया क्रिटिक की इंतहा, यानी जब एक तख्लीकी मिसरा शायर खुद कहे और सुनने वाले को पता हो कि दूसरा मिसरा क्या होना चाहिए पहले ही, तो वो दूसरा मिसरा पहले ही बता देता है और वो समझता है कि मैं मकबूल हो गया, मैंने मुशायरा लूट लिया। उसको ये समझ नहीं आ रहा या जो लोग ये बता रहे हैं कि उसने मुशायरा लूट लिया, ये अदब की तरक्की नहीं। अदब की तरक्की उन लोगों की वजह से होती है जो लिखते हैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम, जो आज के लिए नहीं लिखते हैं। गालिब ने जब लिखा था उसने अपने पर्सनल ज़ाती तकाजों को पूरे करना, उसको सोसाइटी की कोई ये मजबूरी नहीं थी कि मैं उनके तकाजे पूरे करूं। वो अपने वजूद अपने नफ्स की किसी न किसी तरह तशफी तसली करना चाहता हूँ या अपने आप को सुकून देने के लिए लिख रहा, लेकिन जब वो लिख रहा था तो वो उस वक्त की सोसाइटी को समझ में नहीं आया, पसंद और नापसंद की बात नहीं, क्योंकि वो उनके सरों के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि गालिब अपने अहद से आगे
1: था, आगे का शायर था।
0: तो आगे आने वाले अहद जो आए उन्होंने फैसला किया कि नहीं गालिब ही बड़ा शायर, तो साबित हुआ कि जो शायरी उसने की उसने वो चीप मकबूलियत हासिल करने के लिए नहीं की, जो ज़ौक मोमिन वगैरह शोरा ने दरबार में मकबूलियत हासिल करने के लिए जो शायरी की, यानी ज़ौक ने ख़ास तौर पर ऐसी शायरी की मनसूबा बंद तरीके से कि आज मैं ये शेर पर, उसको पता था कि ऑडियंस क्या पसंद करती है क्या सुनना चाहती है, लिहाजा उसने शायरी के लिए मौजूआत को पहले से तय किया, जबकि तख्लीकी अदब में ऐसा नहीं होता। तख्लीकी जो बड़ा शायर होता है उसको ये पता ही नहीं लगता कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, उसको भी पता लगता है लिखने के बाद जब शेर कागज़ पर उतरता है उसके बाद उसको खुद पता चलता है कि मैंने क्या लिखा है, उसके बाद शऊरी तौर पर वो उसकी नोक पलक दुरुस्त करता है। ऐसा अदब आज भी तख्लीक हो रहा है लेकिन लोग उसकी पजीराई नहीं करते, पजीराई उसी की करते हैं जो लोगों को दिखता है, जो उसको लोग सुनते हैं, और सोशल मीडिया ने ये काम आसान कर दिया।
1: नारंग साहब आप सुन रहे हैं, राज साहब जो फरमा रहे हैं, मयार की बात हो रही है, तख्लीकियत की बात हो रही है और उस क्राइसिस की बात हो रही है जहां वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है, तो हम कहीं तनकीद की तरफ तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर तनकीद ने हक अदा कर दिया होता, उर्दू अदब के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अंग्रेजी अदब में, फ्रांसीसी में, रशियन अदब में, तो अब देखिए जितने बड़े वो तख्लीककार हैं उतने बड़े नकाद मौजूद हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं कि उर्दू में नहीं, उर्दू में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पलटा जो है एक तरफ बहुत नीचे चला गया है।
2: तो मेरे ख्याल में क्या करें, मेरे ख्याल में ये जो उर्दू तनकीद जो बाकायदा तौर पर अल्ताफ हुसैन हाली से शुरू हुई थी, मुकदमा शेर शायरी से जहाँ उन्होंने शुरू किया था, बहुत आगे बढ़ा, बड़े नक्काद पैदा हुए, कुछ ऐसे नक्काद भी थे जो अब्दुलरहमान बिजनूरी जैसे थे जिन्होंने कहा हिंदुस्तान की इलामी किताबें दो हैं, मुकद्दस वेद और दीवाने गालिब, ऐसे भी उनको तासराती तंग

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: विश्वास ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। पनु नाम वेन्यू
1: गुलाम मोहम्मद डार
0: गुलाम मोहम्मद डार
1: बीरो
0: साहब कत पेट्स
1: बीरो मीरपुरा पे कार्य करा जनाब।
0: गुलाम मोहम्मद डार साहब वन तो आज कुछ ही बात छु बोजन तो है।
1: अंधा कानून फिल्म हो? ये अंधा कानून है
0: अंदा
1: जो
0: कानून फिल्म में होंद। हाँ जरूर बोजनाओ पन्न सथियन हूँ नाम वेन्यू।
1: खास मजी पे दोस्
0: बिल्कुल ना वेन्यू युद
1: मुश्ताक अहमद मल्ला, मोहम्मद शफी मल्ला, हमसाय मे कह गुला नबी डार गार वाज महबूबा मात कक अरशद अहमद परे अब्दुल लतीफ डार
0: बिल्कुल
1: अब्दुल मजीद वानी हाजी लापर पे अब्दुल रहीम तांत्रे मंजूर अहमद ऋषि जनाब।
0: बिल्कुल सही। गुलाम मोहम्मद साहब मे वन तो ये जमींदारी खातर तु गो क्या तुवा पमीनस पे रेडियो तत् पकान तो प्रोग्राम तोजान?
1: विकस मोबाइल मेरान सह लक मोबाइल
0: बिल्कुल
1: डायरेक्ट चलान एफ एम वेफ एम विकस रेडियो चलान सी सोरे
0: बिल्कुल
1: बोजान बोजान पे न्यूज व्यूज तवान अहन
0: तो
1: बाकी तुम ठीक पे
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
1: ओके शुक्रिया मेहरबानी
0: अस्सलाम
1: अस्सलाम
0: वालेकुम।
1: वालेकुम
0: वालेकुम सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मुस्तकिल असामीन बात कर रहा हूँ, हिलाल अहमद। तकरीबन 2 साल के बाद आपसे बात हो रहे हैं मैम।
0: हिलाल अहमद कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हरदमलपुरा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी हिलाल, बिल्कुल पहचाना मैंने आपको। आप कैसे हैं?
1: आप रोहित दीदी बात कर रहे हो ना?
0: जी बिल्कुल, रोहित ही बात कर रही हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल रिसीव की मेरी फरमाइश पूरी करने के लिए।
0: भाई देखिए, हम तो है ही इसीलिए कि हम जो है अपने लिसनर्स का भरपूर एंटरटेन करें, उनकी कॉल्स वगैरह ले प्रोग्राम में, या कोई भी प्रोग्राम जो भी यहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए ही होता है। ये बताएं हिलाल जी।
1: यकीन मानोगी दीदी, इतनी खुशी हो रही है कि आपसे 2 साल तकरीबन 4 साल के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी
1: प्रोग्राम
0: एक
1: में कॉल करता रहता हूँ लेकिन आपसे तकरीबन 4 साल के बाद बात हो रही है मैम।
0: बिल्कुल सही हिलाल, एक लंबे अरसे के बाद आज आपकी और मेरी मुलाकात इस प्रोग्राम के वसातत से हुई, बात हुई इस प्रोग्राम के वसातत से, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। हिलाल
1: शुक्रिया मैम।
0: क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है तड़ी पार, बिखरी जुल्फों को सजाने की इजाजत दे दो।
0: बहुत ही अच्छा नगमा, और कौन सुनेगा?
1: मेरी बीवी है तबसुम, बेटा
0: हाँ
1: मेरा है अहमद हिलाल, और मेरी दो बहनें सुनेगी रिजवाना रिफत, छोटी बहन है दीदी तैबा। चलते चलते आप भी सुनोगी मेरे साथ।
0: बिल्कुल, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ ये नगमा एंजॉय करूंगी, और साथ ही हमारे बाकी लिसनर्स भी। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी, ठीक पाठ
0: अल्हम्दुलिल्लाह, कम छू तो कट पट छू पनु नाम वनु
1: मोहम्मद अशरफ डॉ
0: मोहम्मद अशरफ सब तो छू ठीक पट।
1: शुक्र खुदा मुझे करीब
0: वन तो क्या मसरूफियात छू रोजा आजकल।
1: कड़ा
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जमीन
0: माशाल्लाह, सेठा मजा ऐसा लगान ये जन कम तुम करान विकनस तुम विकनस काफी शोर तो दछिन खोवन तो मे बसान काम सू तुम एंजॉय तरह कर बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तिक खुश गसवन मंजर तिक विकनस अगर वुछान गामन गुठन कुन ये नजर इस दिवान हालांकि शहरस मज कुन जाए मगर ज्यादातर यु थाल वाल लगान विकस ये गामन कुन ही लगान तिक तिमन बिचार रोजगारी अथ पे अल्लाह ताला दिनों बरकत इनशाला अत फसलस। वन तो आज कुस ह्यू फिल्म बात बोजुन
1: फिल्म बरसात है।
0: बरसात फिल्म।
1: लता जी सो जिया बेकार आ रहे तेरा इंतजार आज हम बार माँ तेरा इंतजार
0: बिल्कुल तो ऐसी कुछ बोझ बे
1: बोए मंजर अहमद डार
0: हाँ
1: बेचमे दो हमसाय
0: अच्छा अच्छा
1: जनाब
0: जरूर क्या छु यमन नाव यु नाव ते वनी
1: अली मोहम्मद डार
0: अली मोहम्मद डार सब सान तरफ वन जबो सलाम
1: वालेकुम सलाम तो बेचमे लारा पे गुलानी मला
0: हाँ बिल्कुल तुम सारे तम वो बरसात फिल्मी हुन ये खूबसूरत फिल्मी बात करते एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश
1: आपकी फरमाइश
0: जी, कौन बोल रहे?
1: तारिक अहमद खांडे
0: तारिक अहमद खांडे, कहाँ से बोल रहे?
1: शाहपुर गांधरबल से।
0: जी तारिक, क्या करते हैं आप?
1: हम टोकरी बनाते हैं, आधी मार बनाते हैं ना, ये
0: जी, क्या
1: मिठाई वठाई
0: बनाते हैं?
1: ये ना टोकरी बनाते हैं, मिठाई विठाई रखते हैं ना उसमें, वो है
0: माशाल्लाह
1: ना।
0: माशाल्लाह।

0: बहुत ही खूबसूरत काम है आपका। और वैसे अगर
1: हाँ
0: बात करें तो आज सिर्फ टोकरियां ही नहीं बनती है, काफी सारी चीजें बनती है इसमें।
1: हाँ इसमें बहुत बनती है ना।
0: जी। तो कैसा लगता है आपको ये काम करते हुए?
1: अच्छा अच्छी लगती हूँ ना।
0: ये पुश्तैनी काम है या आप ही ने शुरू किया है?
1: सीखा 4-5 साल से।
0: अच्छा, चले बहुत अच्छी बात है। आपकी दुकान है या घर से ही करते हैं?
1: ना हम घर पे पढ़ते हैं, करते हैं ना
0: चले अल्लाह
1: यहाँ
0: ताला
1: कुछ।
0: बरकत दे आपके इस काम में। ये बताए तारिक, क्या सुनेंगे आज?
1: आज सुनेंगे ये त्रिदेव का गाना है ना
0: त्रिदेव
1: वो सिंह,
0: फिल्म से कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: गली गली में है ना वो सिंह गाना।
0: गली गली में आप नगमा सुनना चाहते हैं? गली गली में फिरता हूं मैं आशिक आवारा।
1: हाँ वही है ना,
0: चलिए जरूर आप तक जो है ये नगमा पहुंचाएंगे हम।
1: हमारा साथ उजर मुजीद खांडे, सलमान फरहान।
0: जी, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए अपने।
1: सब सुनेगा, तुम भी सुनेगा ना।
0: जी हम भी सुनेंगे, आप अपने साथियों के साथ और हम सब के साथ ये खूबसूरत सा नगमा एंजॉय करें।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे?
1: मैं जिला से मेराजुद्दीन शाह बोल रहा हूँ।
0: मेहराजुद्दीन शाह जी। मेहराजुद्दीन साहब, कौन सा नगमा सुनेंगे आप?
1: जी, लादा ने गाया हम भूल गए हर बात, मगर
0: बहुत ही सुंदर नगमा है ये। आपके साथ और कौन सुनेगा?
1: जी कुछ दोस्त भी मेरे साथ। पहला मेरा बेटा है मेहरा मेहराज, और मेरा दोस्त जॉन मोहम्मद ऋषि ईदगाह वंगनपुरा से,
0: जी।
1: मोहम्मद अल्ताफ माला, और बीरबा रावतपुरा से नजीर अहमद माला।
0: जी, चलिए, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए
1: आपके साथ पहली बार बात हो रही।
0: जी, बिल्कुल पहली बार आप इस प्रोग्राम में मेरे से बात कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ड्राइवर मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ गाना
0: ड्राइवर
1: सर्कल से।
0: मोहम्मद शफ़ी, आप रोहित से बात कर रहे हैं, रोहित मुश्ताक। नहीं, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक हो। आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। बताएं, आज जो कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: आज पहली बार आपके साथ मुलाकात हुआ है।
0: जी हाँ, एक लंबे अरसे के बाद आज इस प्रोग्राम की वसादत से आपसे बात हो रही है। वक्तन फवक्तन आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कॉल करते थे और इंशाल्लाह आगे भी आपने किए, लेकिन मेरे से आज बात हो रही है इस प्रोग्राम में। जी बताइए।
1: गाने गाने की फरमाइश करनी है। फिल्म
0: जी, शौक से।
1: का नाम है करम युद्ध।
0: करम युद्ध का कौन सा नगमा?
1: कोई भी
0: कोई भी नगमा ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। आपके साथ और कौन है?
1: डॉक्टर नजीर अहमद मला साहब नाजन से, रुबीना साहब लाल,
0: जी
1: और हबीबुल्ला भट्ट, मोहम्मद सुबान, नईम अहमद मलिक,
0: जी
1: हरदमल बोरा, हिलाल अहमद द्रेगम, बरगन से इम्तियाज अहमद, खारकले बिलाल अहमद, शाहिद अशरफ अंदरकोट से, फेरज अहमद खान, सरगाम से
0: चलिए,
1: शेर
0: बहुत
1: अहमद,
0: शुक्रिया।
1: शिविर अहमद गनाई।
0: जी, शुक्रिया।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरी बात रोहित मुश्ताक से हो रही है?
0: जी
1: आप कैसी हो मैम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है। आपकी पूरी टीम जो है वो ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, और तहसील है काजी गांव
0: अपना
1: है मेरा,
0: नाम बताएं।
1: किसीगुंड सांगरन गांव है। मेरा नाम है सयार अहमद।
0: दरअसल आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही है। अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम है सयार अहमद गनाई।
0: सैयार अहमद गनाई।
1: हाँ जी,
0: जी सैयार, क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे एक गाना सुनना है, एक पुराना नगमा है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का।
0: अरे वाह, पगला
1: ये
0: कहीं
1: नाइनटीन
0: का।
1: 1970 में फिल्म आई है।
0: हाँ,
1: इसका जो नगमा है वो है ना, वो तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे।
0: अरे वाह, बहुत ही प्यारा नगमा है।
1: मुझे बहुत पसंद है ये गाना। तो मैं रेडियो कश्मीर का एक रेगुलर लिसनर हूँ,
0: जी
1: आपके
0: जी
1: जितने भी प्रोग्राम हैं बहुत शौक से सुनता हूँ। हाँ
0: कैसे
1: हाँ
0: लगते हैं बाकी सारे प्रोग्राम्स भी हैं आपको?
1: वैसे आपके जितने भी प्रोग्राम है ना वो सारे अच्छे ही होते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है प्रोग्रामों में,
0: बिल्कुल
1: या
0: सही,
1: जो हमारे बाकी लिसनर जो होते हैं उनकी प्यारी प्यारी बातें जब सुनने को मिलती है ना, बहुत कुछ
0: बिल्कुल
1: सीखने को भी मिलता है और बड़ा अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल सही। देखिए सैयार, जब मुख्तलिफ एरिया से हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम में, या ख़त के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, तो यकीनन हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और एक दूसरे के बारे में जानने को भी मिलता है। ये बताएं सैयार, आपके साथ और कौन सुनेगा ये नगमा?
1: मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि वो मुझे बार बार बोलते हैं कि आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन हमारा नाम नहीं बोलते आप।
0: अरे शौक से आप उनके नाम बताएं।
1: यह है सोफी मुख्तार है, हारी पारी गांव अवंतीपुरा से, और जबीर अहमद भट्ट है पोनीमा कुलगाम से, और उजैर है थजीवारा अनंतनाग से। क्या है कि मैम, आपको पता है कि मैंने आपसे इससे पहले मैंने आपके साथ बात की है, लेकिन बहुत अरसा हो गया, तब से तकरीबन 2008-09 की बात है
0: जी
1: जब
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल,
1: भिवानी में काम करती
0: एग्जैक्टली भाई,
1: है ना,
0: आपकी
1: वो
0: याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी।
1: एक प्रोग्राम आप करती है, वो प्रोग्राम था हेलो आपकी पसंद।
0: बिल्कुल सही, और उसमें आप वक्तन फवक्तन कॉल किया करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता ही है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो लाइन गुनगुना के सुनाओ।
0: जी बिल्कुल।
1: तुम मुझे यूं बुला

0: संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। वाह क्या बात है सैयार, सही मानू में आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और मन को मोह देती है। चलिए आपका बहुत
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
1: शुक्रिया आपका, बहुत बहुत
0: आपका
1: शुक्रिया
0: भी
1: आपका।
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का नगमा।

0: रोहित मुश्ताक के साथ आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम। हेलो आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नशर होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने

0: देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External

0: अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल फाइव में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है, कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल फाइव में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है PPP को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली PPP मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें

0: कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर. इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो. बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है. और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है. आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से. तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे.
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का. प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए. आखिर सफलता मिली मोदी जी को. प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है. और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है. तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे. ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी. इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए. सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया. टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है. ये इसका उदाहरण है आपके सामने. देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स. ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया. हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की. 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए.
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं, तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है. विद इन 4 ईयर्स जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स. तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है.
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि एक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला. एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था. अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ. सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई. और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है. ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा. ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था. जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है. तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है. तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई.

0: ये जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं, तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सके आप? तो
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर, तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल, और टेलीकॉम में AI का रोल,

0: वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से

0: कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं।

0: सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेनजी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेनजी से मिल रहे हैं, सब जेनजी से मिल रहे हैं।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
0: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
1: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
0: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
1: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमें आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
0: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं, उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
0: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
1: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा

0: मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

सभी नबी आप आकाशवाणी दिल्ली से ये खसूसी प्रोग्राम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समीन, आज की नशरियात बर्खास्त करने से पहले एक नज़र हमारे कल नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। कल रात 9:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा। सन फनकार मेहमान है मारूफ गुलकार गुलजार अहमद मीर। प्रोग्राम की मेजबान है गुलाम रसूल आखून। गजलों का हफ्तावार फोन इन प्रोग्राम हेलो महफिल गजल पेश होगा शब 10 बजे। मेजबान इरम कुराशी। सुबुगाही पेश होगा सुबह 6:35 पर। लाइव प्रोग्राम पैम सुबह पेश होगा 7:10 पर। मेजबान जहूर अहमद आर सकीना रातर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जोर तो जहां और ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबार की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 बजे शोबई खबर की पेशकश एनडीए सरकार के 12 साल मेहमान है असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स हकीम इरफान रशीद। मेजबान तारिक राठौर। सूफी ख्यालात पर मबनी प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश्र होगा सुबह 10 बजे। प्रोग्राम मारूफ सूफी शायर अब्दुल रहीम आमा बानिहाली से मुतलिक है। तहरीर मरगूब बानिहाली। अली मोहम्मद शेख और साथी शकत रो पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे। बजमिनिस्वार होगी 12:40 पर। मेहमान है डॉक्टर शबीर अहमद मोकरी। मौजू है नशावर चीजों से नुकसान। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश होगा दिन में 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4 बजे और गोजरी प्रोग्राम

उसकी तरह ना शुरू करा शाम 5 बजे। देहाती भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे शाम 6:10 पर। इसमें मामूल की नशरात के अलावा बच्चों की महफिल होगी फॉलोइंग टूर। हालात हाजरा की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज नश्र होगा। रात 8:30 पर जिला नामा नश्र होगा। कल का जिला नामा जिला कुपवारा से मुतलिक है। समीन यह तफसील हमारे कल नश्र होने वाले ही प्रोग्रामों की। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 288 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में इस वक्त शब के 11:48 हुए हैं। अब हमें आज की नशरियात बर्खास्त करने की इजाजत दीजिए। कल सुबह के 6:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया।

और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यूं तो हैं बातें बहुत सी दिल की और दिलदार की, यूं तो हैं बातें बहुत सी दिल की और दिलदार की, आओ सुनाएं हम तुम्हें आज कहानी प्यार की। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर और नई शाम ढलती नई महफिल सजती नई शाम ढलती नई महफिल सजती और ना लफ्ज मिलते ना गजल बनती बेजान सी थी जिंदगी हमारी हम कुछ भी ना होते अगर तुम ना होते।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अगर तुम ना होते से ये गीत सुना। तुम क्या जानो कि कितना प्यार है तुमसे, तुम क्या जानो कि कितना प्यार है तुमसे, लफ्ज कम पड़ जाए वो इकरार है तुमसे, धड़कन बनकर जो सीने में उतरती है बस वही बेपनाह मोहब्बत है तुमसे।

कभी बात बस बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, कभी बस बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, और अब बात इतनी बढ़ गई है कि तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता।

0: तेरे दिल की बातों को मैं कैसे जान पाऊंगी, तूने मुझे समझा नहीं ये मैं कैसे बता पाऊंगी। दिल से प्यार करती हूं तुझे ये कैसे समझा पाऊंगी, पर तेरे दिल में क्या है मैं नहीं जान पाऊंगी। तुम ही बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है।
1: मेरे दिल में आज

तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकती। तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकती। अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत जता नहीं सकती। मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्ही से तो शुरू होता है। तुमसे दूर रह के एक पल भी बिता नहीं सकती।

सब कुछ भूल बैठे हैं तेरे प्यार में हम, अब तो खुद से भी वाकिफ नहीं रहे हम। तूने इस कदर अपना बनाया है हमें कि तेरी धड़कन और अपनी सांसों में फर्क भी भूल गए हम।

होश वालों को मुबारक हो उनकी समझदारी, होश वालों को मुबारक हो उनकी समझदारी। हम तो तेरे इश्क में सब कुछ लुटा बैठे हैं, इस कदर खोए हैं तेरी चाहत के उजाले में, घर का पता भूल बैठे हैं।

लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम मिलेंगे आपसे 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल की बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट

0: में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माही, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 259 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said, that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, JAAC, a prominent civil society alliance that has over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 1:11। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। तो रहिए इस गीतों के सफर में मेरे साथ। पहला गीत लेकर आई हूं फिल्म अभिनेत्री से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

सच पूछे तो इसकी हमें भी खुद खबर नहीं कि मौसम बदल गया या बदलने लगे हैं हम, क्योंकि अभी तो हम धुंध में लिपटे हैं सब मंजर। तुम आओगे तो तुम्हारे आने तक ये मौसम बदल चुका होगा।

जब भी थाम लेते हो तुम बाहों में मुझे, लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया है। दुनिया तो चलती रहती है अपनी रफ्तार से, पर मुझे मेरा पूरा जहां तुझ में सिमट गया लगता है।

लेती हूँ तेरा नाम हर एक नाम से पहले, लेती हूँ तेरा नाम हर एक नाम से पहले, कुछ जिक्र नहीं करती हूँ उस काम से पहले, मेरी हर गजल मेरी हर शायरी बस तेरा ही नाम लेती है हर काम से पहले।

दिन तो ढल चुका है, ये रात भी देखो हम पर हंसे जा रही है। हर पल तन्हाई खामोशियां बहुत सता रही हैं। कहना तो सिर्फ तुमसे इतना है कि तुम्हारी याद बहुत आ

0: तो सभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद तो फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ अंजोर, कार्यक्रम लेकर आई हूं रात सुरमई। आप सब रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कहना तो बहुत कुछ है पर लफ्ज साथ नहीं देते, कहना तो बहुत कुछ है पर लफ्ज साथ नहीं देते। तुम निगाह से समझ लो, हम जुबान से नहीं कहते।

मैं तेरे गम में शामिल हूँ, तू मेरी खुशी में शामिल हो। मैं तेरे गम में शामिल हूँ, तू मेरी खुशी में शामिल हो। मेरी हंसी हो तेरे चेहरे पर, हर दर्द तेरा मुझे हासिल हो।

उसने कहा, तुम इस कदर हसीन हो कि क्या कहें, तुमको ही देखते रहें या खुद को संभाले, जानती हो?

जी भर के देख लूं तुम्हें अगर वक्त ठहर जाए, जी भर के देख लूं तुम्हें अगर वक्त ठहर जाए, बढ़ती हुई दिल की धड़कन भी कहती है कि ये समा बदल जाए। तुमसे बिछड़ने का खौफ इस दिल को सताता है, ये कहता है कि तुम पास रहो और रात का ये पल यहीं ठहर जाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिविधियों की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आईएनएसए ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक एआई का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत एआई विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान

हो गया है जाने का, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. आपके साथ रहेंगे पंकज हमराही लेकर. मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर. अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा. नमस्कार, शुभ रात्रि.

आधी रात के 3:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है हमराही शो मेरे यानी पंकज के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ इन दो गानों के बाद। आप इन दो गानों के मजा लीजिए, फिर मुलाकात होती है।

बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आप गांव में ही हैं। मतलब मुझे तो स्टूडियो में बैठकर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में नदिया के पार मूवी से ये गाना था, रविंद्र जैन के बोल और संगीत था। हमराही शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और बताइए कैसा बीता आज आपका दिन? आई नो जिंदगी की उठा पटक और भाग दौड़ इंसान को मन और शरीर से थका देती है, लेकिन अच्छी बात पता ये भी है कि रात का ये सफर ना हमें सुस्ताने और सुकून के कुछ पल जीने के लिए देता है। तो आप सब कुछ भूलकर मेरे साथ गानों की हसीन दुनिया में चलिए और वहां से आपको जो कुछ भी मिले ना उसे झट से अपनी जेबों में भर लीजिए। यकीन मानिए आज की ये वाली रात फिर नहीं आएगी, कल जो रात आएगी वो और होगी। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। अभी के लिए चांदनी मूवी का ये गाना, बाबला मेहता और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और शिव हरी का म्यूजिक। एंजॉय।

आई एम श्योर आपने ये वाली मूवी तो जरूर देखी होगी और ये सच में इतनी प्यारी फिल्म है कि इस फिल्म को तो कम से कम महीने में दो बार तो देख ही सकते हैं। इतनी अच्छी ये फिल्म है। भूपेंद्र सिंह और लता जी की आवाज में मौसम फिल्म का ये गाना था, मदन मोहन की म्यूजिक कंपोजिशन और गुलजार के बोल थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्यार मोहब्बत के मामले में आपको अपने आप से कोई शिकायत है या नहीं, तो हाँ, और वो ये है कि काश अपने पसंदीदा इंसान को आपने समय रहते अपना बना लिया होता तो शायद जिंदगी और ज्यादा सुंदर होती। इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अपने मन की बात ना सामने वाले को जरूर कह देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हम अपने मन की बातें जो है छुपाते हैं, और वो भी वो बातें जो सामने वाले को खुश कर सकती हैं। अब राम जाने ऐसा है हम ये क्यों करते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं वो हम बहुत जल्दी सामने एक्सप्रेस कर देते हैं कि नहीं भाई हमें आपसे चिढ़ है, ये है वो है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो होनी नहीं चाहिए, प्यार होना चाहिए और प्यार हमेशा जताया जाता है, छुपाया नहीं जाता। इसलिए हिम्मत करके अपने मन की बात कह देनी चाहिए। हम रही है शो का नाम, मैं हूं पंकज आपके साथ FM गोल्ड पर, और दो गाने के बाद आपसे मिलता हूं रत्नादीप मूवी का ये गाना किशोर दा और लता जी की आवाज में।

क्या हसीन जमाना रहा होगा वो जब ऐसी फिल्में बनती होंगी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैं उस टाइम उस मूवी के उस जमाने में सेट पर क्यों नहीं था, ताकि मैं सामने से मीना कुमार जी को देख सकता हूँ। भाई उनके बारे में तो बहुत सुना है कि बला की खूबसूरत थी। आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में बहू बेगम फिल्म से ये गाना था। साहिर लुधियानवी के लिरिक्स थे और रोशन का म्यूजिक था। जब आप किसी से प्यार करें तो इसका ना इंतजार भी जरूर कीजिए, बार बार पलट कर उसे आवाज दे के बुलाइए ताकि उसे आप अपना बना सकें। अब दिक्कत ये है कि लोग ना अपने अहंकार में आके अपने प्यार को आवाज नहीं देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। अरे भाई अपने आप कोई नहीं समझता, समझाना पड़ता है। लेकिन बात जो है वो यहां आकर खत्म हो जाती है कि तुमने कहा नहीं मैंने सुना नहीं। यकीन मानिए एक पसंद का शख्स अगर जिंदगी में आ जाए हर पल बेहद हसीन लगता है और जिंदगी इतनी प्यारी लगती है कि बस जीने का पल ऐसा मन करता है कि हर पल जिंदगी जो है बहुत गुलजार सी लगती है, मन करता है जीने का, जिंदगी अच्छी लगती है।

आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में ना किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, और किस्मत आपको मिलाने के लिए ऐसी सिचुएशंस डिजाइन कर देती है कि एक दूसरे के दिल में प्यार पैदा हो ही जाता है, और मोहब्बत का हसीन परिणाम होता है शादी, और ये दुनिया की सबसे प्यारी रस्म है। बस इतना ध्यान रखें कि पार्टनर आपकी और आप उसकी पसंद हो। अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं मिलूंगा आपसे सुबह 4:10 पर, 4 बजे के हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद। और अब ये वाला गाना जो हमें अलग ही दुनिया में ले जाता है, फ्रॉम द मूवी लम्हे, हरिहरन और लता जी की आवाज। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने बैठक की साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र पर सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आईएनएसए ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक एआई का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत एआई विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं पंकज आपके साथ और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस पूरे घंटे आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक गाने, और इस गाने के साथ मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये दो गाने सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूं।

आपको पता नहीं ये गाना कैसा लगता है मतलब सुनने में, लेकिन अच्छा ही लगता होगा, लेकिन मुझे गाना बहुत इमोशनल लगता है। मतलब मेरी तो आंखें भर आती हैं गाना सुन के। है कुछ इस गाने में ऐसे कुछ इमोशंस अटैच हैं मेरे, लेकिन गाना वाकई बहुत अच्छा है। राजेश रोशन का म्यूजिक, किशोर दा और लता जी की आवाज में, खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना था गुलजार के बोल। और सुबह के 4:20 हो चुके हैं। देखिए भाई, रात कितनी भी काली हो ना, सुबह जरूर आती है और अरुणिमा आ चुकी है। आसमान में अभी बहुत हल्की है, लेकिन हाँ छोटी सी सुबह तो हो गई है। और पता है अभी खिड़की से मैंने चांद को देखा, आधा सा चांद निकला हुआ, इतना सुंदर लग रहा है, मैंने उसे अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, अब दिन में देखूंगा उसे। बाकी बहुत आसमान की तरफ देख सकते हो ना, तो आप देखें आधा चांद निकला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आधे चांद को देखे मैंने थोड़ी सी सैडनेस होती है कि अकेला है बेचारा और आसमान में समय सब लोग सो रहे हैं लेकिन ये जाग रहा है, लेकिन फिर भी यही तो नेचर। मैं पंकज हूँ आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अरुणिमा है शो का नाम। जिंदगी चलती रहेगी और अब इसमें रंग भरने की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी पसंद के रंगों से इसे जैसे चाहे सजा लीजिए।

0: के तले।
1: ऐसी दुनिया तो हम अपने मन के अंदर बनाकर शांति से जी सकते हैं, लेकिन बस इतना करना है कि बाहर घट रही किसी भी परिस्थिति को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यही चीजें जो है हमारे मन की मजबूती को तोड़ती हैं। सुनते रहिए अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अगर मन पर हावी हुई ना कोई भी बात, जो बाहर की बातों को हम अपने अंदर जब ले जाते हैं तो ये सिचुएशन जो है ना हमारा दिमाग खराब कर देती है और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जो अच्छी होती हैं वो भी हमें खराब लगने लगती है। कहते ना कि अगर आपका मन खुश है तो आपके लिए हर सिचुएशन जो है वो अच्छी होती है। और कई बार तो हम मन में उठ रही बातों से ही भागते हैं। हमारा मन बार बार हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवा रहा होता है। वो बताता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। मन खुद हमें बताता है, लेकिन हम मन की उस आवाज़ को दबाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है। लेकिन अपने ही मन से भागना और अपने ही मन की बातों को नज़रअंदाज करने वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मन के साथ और अपने साथ ही। खैर, अभी मैं आपको सुनवा रहा हूँ अब मन की बात। चलिए, और मन पर गाना ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ और शो का नाम है अरुण मैं। जिस दिन हम दूसरों के मूड पर अपनी खुशियों को डिपेंड करना छोड़ देते हैं ना, उस दिन आप सही मायने में जो है विजेता हो जाते हैं। और कहते भी हैं कि मतलब अपने जो है आत्मदीपो भवा, हमें अपने लिए जो है अपनी खुशियों की। और एक चीज ये भी है कि किसी ने अगर आपकी तारीफ की तभी आप अपने आप को सफल माने, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मन आपकी मेहनत और कठिनाइयों को अच्छे से जानता है और बता देता है कि आप कितने सही हैं। इसलिए अपना हर तरह से बेस्ट दीजिए और ऑटोमेटिकली ही आप खुश रहेंगे। बस बदले में आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें कई बार हर्ट कर जाती हैं। लेकिन ये वाला जो गाना है दोस्त मूवी का, मैं आपको गाना प्ले करके सुनाने वाला हूँ। ये गाना वाकई एक बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है और मतलब लिखने वाले ने भी क्या गजब का गाना लिखा है और बहुत ही अच्छा है। तो इस गाने को सुनिए, फील कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।

आशा भोसले जी की आवाज में नरम गरम फिल्म का ये गाना था और सडनली मुझे आशा जी की याद आ गई, तो मैंने सोचा आपके साथ ये गाना शेयर करना चाहिए। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी तो नरम गरम मूवी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप इस मूवी को देखिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब वैसे तो मुझे आशा जी की याद आई थी, लेकिन याद के अपोजिट भी होता है, वो है भूलना। लेकिन भूलने के बारे में मैं बात कहूँगा कि हमारी जो कुछ नेगेटिव सोच होती है, कुछ ऐसी बातें जो हमें हर्ट करती हैं, वो भूलना जो है वो एक अच्छी आदत है। देखिए, भूलिए कड़वी बातों को, यादों को, भूलिए हर उस चीज़ को जो आपको दुख दे। समझ लीजिए कि कोई सपना था जो बीत गया, लेकिन आगे बस इतना प्रयास रखिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी कड़वी सिचुएशन हो उसको आप पहली चीज़ तो आने ना दें, और अगर वो आ जाती है तो फिर उसको ज़्यादा दिमाग पर हावी ना होने दें, ठीक है आई है चली जाएगी। तो इस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। हालांकि कहना बहुत आसान है और जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है तो मुश्किल तो होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातों को ढाल बनाकर जो है अपने आप को बचाया तो जा ही सकता है। और सब ऐसे ही करते हैं, एट द एंड सब ऐसे ही कर रहे हैं। अब मैं पंकज आपसे अगले घंटे सुबह 5:10 पर नेक्स्ट शो भोर सुहानी में आपसे मिलूंगा, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अरुणिमा शो का समय जो है कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ और गाने लाइनअप करता हूँ, बहुत अच्छे गाने, आपको बहुत मजा आएगा गाने सुनने में। तो आप इन गानों को सुनिए और सुबह 5 बजे हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे।

0: 26 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण को डिजिटल बनाने तथा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन ने बैठक में साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has become the longest-serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26 May 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th May 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 dates. From 26th May 2014 to today,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2014

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। मैं हूं पंकज आपके साथ और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी, जिसमें आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक गीत। तो दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं और शुरुआत करते हैं परिचय मूवी के इस गाने से।

सुबह के 5:00 लखन फिल्म से ये गाना था मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। 10 जून 2026 बुधवार की गर्मा गर्म सुबह हो चुकी है, मतलब अभी तो इतनी गर्म नहीं लेकिन हाँ गर्मी तो है। अब भोर सुहानी शो का नाम शुरू हो चुका है और मेरे यानी पंकज के साथ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। अब भाई हम

वाले हैं तेज गर्मी में भी हम लोग सुबह चाय पीकर ही जो है हमारी आंख खुलती है, बाकी तो उससे पहले जब तक हम चाय वगैरह ना पी लें तब तक तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आलस गया ही नहीं है। बाकी आपकी आलस से आंखें भरी जो हैं वो मैं खोल दूंगा इन गानों से, तो बस आप इन गानों का मजा लीजिए और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और ये गाना आप सुनिए त्रिदेव फिल्म से साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज में, मजे लीजिए इस गाने का। मुझे पता है आपको ये गाना पसंद है इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में इस गाने को निकाल के रख लिया था। अब आप सुनिए और झूमते रहिए।